मीडियम वेव 254.45 मीटर और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं, स्वीकारिए अभिवादन। नमस्कार।

मीडिया वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे जिनका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी संशोधन

0: रक्षक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। आईएनएस संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana, and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 in the morning at Garrison Ground in Sadar. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG re-examination, will be conducted this afternoon. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held from 2 p.m. to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all system jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair, transparent conduct of the examination. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, has said that three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. These oil tankers are Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald. In a social media post, Mr. Sonowal said that under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government is working on highest priority to secure India's maritime interests. Prime Minister Narendra Modi will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. Minister for Railways, Information and Broadcasting and Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, will inaugurate and dedicate several key railway infrastructure projects aimed at enhancing passenger amenities and strengthening the rail network in Rajasthan today. He will flag off the Lalgarh Sabarmati Express from Bikaner Railway Station. In FIFA World Cup, Germany defeated Ivory Coast 2-1 in Toronto, Canada and clinched a spot in the knockout phase at the tournament. For Germany, Dennis Undaf scored twice. Earlier, Netherlands secured a commanding 5-1 victory over Sweden in Group F match at NRG Stadium in Houston, United States. Yesterday, in another match, Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। ये समय है प्रातःकालीन भक्ति संगीत के कार्यक्रम सुप्रभातम का। आरंभ समूह स्वर में इस मातृवंदना से रचना कंचन रिछारिया की है।

कार्यक्रम सुप्रभातम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय समारोह के सीधे प्रसारण को सुनवाएंगे। तो आइए चले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

वक्त हुआ है 6:33 और 34 सेकंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

सत्य वो दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ, और झूठ वो कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। अब चुनना आपको है।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चर जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्रीराम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: सुखिनः सर्वे संतो निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय, चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। वहीं INS संशोधक को और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉकड्रिल का अभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पासपोर्ट सत्यापन में तेजी, लोकोन्मुखी सेवा उपलब्धता और सुशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के तौर पर है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 7:30 पर आप सुन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। पर सुना जा सकता है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर सुनेगा लोक संगीत, इसमें आज आप सुनेंगे अनीता यादव की गाए भूतेली लोकगीत। 9:30 पर सुना जा सकता है सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान। 10:00 सामुदायिक गान शिक्षण पाठ सुनेगा 10:05 पर। 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। आइए अब जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आज सुबह 11:00 आप सुनेंगे फोन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 11:40 पर आप सुन सकते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। 12:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भुवन मोहनी का तीसरा भाग। 1:00 महिला कार्यक्रम महिला सभा सुना जा सकता है। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुर की प्रस्तुति रहेंगे। दो बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।

आइए जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा के आकर्षण। शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर। 6:30 पर आप सुन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत। 6:15 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। 6:30 पर आप सुन सकते हैं आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला टी20 का आंखों देखा हाल। 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। विषय होगा वन्य जीव। 8:35 से आप पुनः सुन सकेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला टी20 का आंखों देखा हाल। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर सामूहिक योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं।
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इन पोतों का डिजाइन नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, वहीं INS संशोधक जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए और INS अग्रह पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत के रूप में तैयार किया गया है। नौसेना ने बताया कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप

0: में शामिल होंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
1: सेना की विशेष विमान से शनिवार की शाम संस्कारधानी पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रमों के समापन के बाद महामहिम राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगी। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम के साथ साथ राजधानी भोपाल, पांडुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, धार, पन्ना, बैतूल, बड़वानी, खंडवा और शिवपुरी सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए हैं और प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रों पर मोबाइल फोन, घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।
2: आप बेखौफ अपने अपने स्थान पर अपनी परीक्षा की तैयारी के अनुसार से नीट की एग्जाम दें। नीट के एग्जाम में आपको सब परमात्मा सफल करे। सरकार के सारे प्रबंधन है, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है, जहाँ हमारे पंजीयन कराने से लेके अंदर भी जो हमारे मित्र जाएंगे उनके लिए भी हर एक जिला प्रशासन को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नीट का एग्जाम निर्बाध रूप से आनंद संपन्न होगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसी कार्यक्रम में रेल मंत्री मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो रेलवे रखरखाव कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई सुविधा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान की। इस अवसर पर 38,000 से अधिक परिवारों को उनके नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश भी करवाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली 48.10 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड फोर लेन परियोजना का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है, यह राशि छोटे किसानों के लिए वरदान है।
4: यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण शिविर भी लगाया है और कोशिश है कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान के लिए जनता को भटकना ना पड़े इन जन कल्याण शिविरों में हो जाए। विकास की अनेकों सौगात पहाड़ी को भी मिली है, विशेषकर तहसील भवन का है लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी की स्वीकृति मांगी थी, वो मूंग खरीदी की स्वीकृति हमने दे दी है।
0: उन्होंने कहा कि केंद्र की राशि के साथ प्रदेश सरकार भी इतनी ही राशि जोड़कर किसानों को हर साल 12,000 रुपए की सहायता दे रही है। इसके साथ ही भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई सड़कों की स्वीकृति की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के बरखेड़ी कला स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में प्राकृतिक खेती की कार्यशाला को संबोधित किया। डॉ. यादव ने कहा कि कीटनाशक और रासायनिक खाद के उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, इसलिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि गौपालक किसानों को सरकार हर महीने 1,100 रुपये प्रति गाय की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी, साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास जनता की सक्रिय सहभागिता से ही संभव है।

का लक्ष्य सुर्खी के हर गांव को सुविधा युक्त बनाना है। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये योजना ई मंडी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत डिजिटल ढांचे के अंतर्गत लागू की गई है, जिसके तहत सोयाबीन की खरीदी पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है। इस योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। श्रीलंका में त्रिकोणी क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक देने का अनुमान जताया है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, सागर, उज्जैन और रतलाम समेत कुछ जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पवन चौक में गृह प्रवेश कार्यक्रम में 167 हितग्राहियों को नए घरों की सांकेतिक चाबियां, चेक और प्रमाण पत्र बांटे गए। शिवपुरी के मानस भवन, पांडुना के ग्राम रामाकुना और डिंडोरी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। झाबुआ के ग्राम बिल्डोज में अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कटनी में नीट परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष हेल्प सुविधा केंद्र शुरू किया गया। बड़वानी जिले में नीट परीक्षा के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3,845 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट UG की पुनः परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। और श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपके बीच लेकर आए हैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के थीम आधारित कुछ बातें और कुछ खुशियों भरे गीत। तो सबसे पहले श्रोताओं, आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। योग करें और निरोग रहें। और श्रोताओं, कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। इस साल योग दिवस हमें एक नई राह दिखाता है और इस वर्ष हमारे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बेहद खास और संवेदनशील भी है। इस बार वरिष्ठ नागरिकों को उचित योग की सलाह के साथ ही इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। श्रोताओं, ये थीम हमें याद दिलाती है कि उम्र चाहे जो भी हो, स्वास्थ्य और शांति पर हर किसी का अधिकार है। तो इस बारे में बातें और कुछ करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये खुशियों भरा गीत।

श्रोताओं, जब हम बढ़ती उम्र के पड़ाव पर होते हैं तो शरीर को थोड़ा अतिरिक्त लाड़ प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। हमारे बुजुर्ग जो हमारे समाज की नींव हैं, उनके अनुभव ही हमारी पूंजी हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ये घुटनों के दर्द, पीठ दर्द या कम गतिशीलता, जिसे हम मोबिलिटी भी कहते हैं, इसके कारण वे कठिन योगासन नहीं कर पाते। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये पूरा ध्यान चेयर योग और अनुकूलित योग पर केंद्रित किया गया है। श्रोताओं, चेयर योग यानी कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाला योग, जो उतना ही प्रभावशाली है जितना जमीन पर किए जाने वाला योग है। इसमें हमारे दादा दादी, माता पिता और हर उस व्यक्ति के लिए जो खड़े होने या नीचे बैठने में सहज नहीं है, ये संदेश देता है कि अगर आप सांस ले सकते हैं तो आप योग भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ढलती उम्र का मतलब थमना नहीं है, योग के संग है सेहत का हाथ, और ये हाथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। तो इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आज ये संकल्प लें कि हम अपने घरों और समाज के बुजुर्गों को इस अनुकूलित योग, यानी हम जिसे कहते हैं अडॉप्टेड योगा, से जोड़ेंगे, ताकि उनका जीवन दर्दमुक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर बना रहे। तो आप सभी को एक बार पुनः 12वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयों के साथ आइए चलते चलते सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 7:30 होने वाले हैं और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के सीधे प्रसारण के लिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र।

आकाशवाणी जबलपुर की ओर से उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल कैलानी और कार्यक्रम अधिशासी श्री विपिन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी

संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए हैं। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक और गरिमा में समारोह में मैं चमन सालवार आकाशवाणी जबलपुर की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के कुशल निर्देशन और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी और कार्यक्रम अधिकारी श्री किशन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी की

क्रिएटिव टीम के माध्यम से ये प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, उसमें शामिल है वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री गुरुराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अनुशासी श्री नीला वाजपेयी। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग, इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हैं, पलक पावड़े बिछाए समारोह की मुख्य अतिथि देश के प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आधारें और इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करें। मित्रों, संस्कार और संस्कृति का मरकज है शहर जबलपुर, जिसे भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने जहाँ के लोगों की शालीनता, संयम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर संस्कार धनी के नाम से विकसित किया था, यहाँ से प्रदेश के जीवन रेखा माँ नर्मदा समृद्धि लुटाती हुई गुजरती है, जिसका परिणाम है कि रेवा के हर शंकर को शंकर का प्रतिरूप माना जाता है। पतित पावनी नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर आस्था और भक्ति की नगरी है। ये शहर न सिर्फ पर्व त्योहारों को मनाता है वरन उन्हें जीता भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्व त्योहार को मनाने वाले शहर में कितने हैं, बस ये शहर उस रंग में खुद को रंग लेता है। अमन चैन और इंसानियत हर धर्म का मर्म है, जिसके बिना त्योहार और पर्व सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन शैली को परिष्कृत करने की विधा का नाम है। हजारों वर्षों से योग भारतीय पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थित प्रस्तावों में से एक है। और अब हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे इस पावन गीत के लिए।

0: राष्ट्रगान देश की अस्मिता और गरिमा का पर्याय है और ये पावन ध्वनि हम जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में हैं, अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा और उसके सम्मान का पर्याय है। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो चुका है और समारोह के स्थल के दाहिनी ओर मीडिया को स्थान दिया गया, जिसमें आकाशवाणी की टीम भी है, और मंच के बिल्कुल सामने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित है। मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथ में ट्रैक सूट में तैयार हैं योगाभ्यास के इस समारोह में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में सेहत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और योग एक ऐसा समाधान है जो हर चुनौती का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। योग सिर्फ व्यायाम की पद्धति नहीं वरन पूरी जीवन शैली है, जिसमें मन की शुचिता का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका होती है, और योग के माध्यम से जीवन के बहुत सारे सवाल, जीवन के बहुत सारे तनाव और जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव,
1: आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमद मंगभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से, बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर

210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना, भारत ने अपने ज्ञान विवेक विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्यप्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्या था आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की यह नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, हमें गर्व है। हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सबके लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है जब भारत पुनः विश्व को शांति सौहार्द्रता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पे उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्यप्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है, आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को

0: मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं, इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं, इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें, आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग की इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमामय सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार से हमारे बीच हैं, जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है। ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ओम सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready?

0: योग एक ऐसी जीवन शैली है जो जीना सिखाती है। आप सबने गौर किया होगा कि तेज आंधी तूफान में जो मजबूत पेड़ होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो लचीले पेड़ पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं। और योग शरीर को लचीला बनाने का काम करता है।
1: कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। ओमकार के लिए श्वास भरिए।

धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़े की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटि चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली

आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनकी भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंडासन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्र आसन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए
पुनः वज्रासन।

की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन जिसके घुटने में दर्द है वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए, दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए, ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए हथेली को सीने के पास लाइए। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल ज्वाइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35-45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है।
पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप को में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपाल भाति का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपाल भाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ।

गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारी पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रिल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर

निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए।

यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपने सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए।

0: दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखिए। हथेली के अंदर आंखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्ज्वलमय हो। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य। हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है, हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और सुखी जीवन का संदेश दे रहा है। योग है भारत की पहचान, स्वस्थ जीवन का है वरदान, तन हो निरोग मन हो प्रसन्न, योग बनाए जीवन धन्य। और जहां योग है वहां स्वास्थ्य है, जहां स्वास्थ्य है वहां उत्साह है। योग से जुड़े निरोग रहे यही जीवन का सच्चा प्रवाह है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, हमारे बीच योगाभ्यास के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर पधार रही हैं और आज मध्य प्रदेश के लिए परम सौभाग्य है कि योग दर्शन की प्रणेता महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि के रूप में इस पावन धरा का उल्लेखनीय किया जाता है। महर्षि पतंजलि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और आज जबलपुर की भूमि एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रही है, जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस धरती पर योग साधना कर समूचे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरने वाली जीवन पद्धति है। जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें।
2: सभी को नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीओ, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग

0: केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय बनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की प्रचंड परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। इन सभी अवस्थाओं में हम सुखी खुशहाल रहे, इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते, बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है तथा मन की चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहे, स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वस्थ भारत का पथ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय।
1: धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग के इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
2: 12वीं योग शिविर की इस उपस्थिति में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सामने बैठे हुए, सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले माँ नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता

मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में

से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं और योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ, आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला, मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवी और स्वजन जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्राणी का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

0: राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। श्रोताओं, आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया गया और बहुत जल्द परिणाम हमारे सामने होंगे। आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से आज का ये प्रसारण आप तक पहुंचा, उसमें शामिल हैं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री हुबराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिशासी श्री नीलाभ वाजपेयी के साथ मैं चमन सालवार अब आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुरमई सवेरा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो जिस तरह से योग हमारे तन और मन को स्वस्थ रखता है, उसी तरह से श्रोताओं, संगीत भी हमारे मन और मस्तिष्क को नई ऊर्जा और प्रसन्नता से भर देता है। श्रोताओं, आज विश्व संगीत दिवस भी है। ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसे जो है वो डीले म्यूजिक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संगीत उत्सव। तो क्यों ना हम भी इस उत्सव को मनाएं।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। ये सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का पावन विज्ञान भी है। आज पूरा विश्व एक सूत्र में बंधकर इस भारतीय धरोहर का उत्सव मना रहा है। आइए हम सब भी इस ऊर्जा से जुड़ें और हम सभी अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय इस दीप शिखा को केवल अंधकार का नाश का माध्यम नहीं, बल्कि अपने भीतर आरोग्य और ज्ञान का संचार करने का माध्यम भी बनाएं। तो आइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भी उसी जोश और जुनून को अपने जीवन में रखें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

जी हाँ श्रोताओं, जो भी है बस यही एक पल है, और आज की ये सुबह कोई सामान्य सुबह भी नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की दो सबसे पवित्र और हीलिंग शक्तियों के मिलन का साक्षी पर्व भी है। आज 21 जून है, आप सब जानते हैं, जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनी काया को साध रहा है। ठीक उसी पल प्रकृति विश्व संगीत दिवस के रूप में हमारी आत्मा को सुरों से सराबोर कर रही है, और ये महज एक इत्तेफाक नहीं श्रोताओं, बल्कि चेतना और नाद का एक अत्यंत दुर्लभ और खूबसूरत महासंगम भी है। योग से सत्ती है काया, संगीत से महकती है आत्मा। एक यदि जीवन का संतुलन है तो दूसरा जीवन की सुंदर लय। भारतीय संस्कृति में नाद ब्रह्म की परिकल्पना की गई है। श्रोताओं यानी ध्वनि ही ईश्वर है। संगीत के सुरों में वो सामर्थ्य है जो हमारे चक्रों को जागृत कर सकता है, और योग में वो शक्ति है जो उन चक्रों को संतुलित रख सकती है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि पूर्ण स्वास्थ्य केवल

बीमारियों का न होना नहीं है, पूर्ण स्वास्थ्य तब है जब हमारा शरीर किसी योगासन की तरह लचीला और हमारा मन किसी सुमधुर धुन की तरह शांत और आनंदित हो। तो आइए आनंद की गोते में एक डुबकी लगाएं और सुने ये सुमधुर गीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, जब इस सृष्टि का सृजन हुआ होगा तब पहला संवाद शायद सुरों में ही हुआ होगा। हवाओं का साए साए करना, नदियों का कल कल बहना, बादलों का गरजना और किसी परिंदे का चहचहाना, ये सब प्रकृति का आदि संगीत ही तो है। इंसान ने तो सिर्फ प्रकृति के इस बिखरे हुए संगीत को सात सुरों के धागों में पिरोकर रागों की शक्ल दे दी है। बचपन की लोरी से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव के भजनों तक संगीत के साये की तरह हमारे वजूद को संभाले रखता है। संगीत में वो सामर्थ्य है जो बिखरे हुए मन को समेटकर ध्यान की पराकाष्ठा तक ले जा सकता है, जहां दुनिया की तमाम भाषाएं और दलीलें थककर हार जाती हैं, वहां एक छोटा सा आलाप या साज, उसकी एक हल्की सी छुअन भी इंसान के भीतर जमे हुए दुखों के पहाड़ को आंसुओं के रास्ते पिघला देती हैं। ये एक ऐसी इबादत है श्रोताओं, जिसमें मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर की दीवारें आड़े नहीं आती। सुरों के दरबार में हर कोई सिर्फ एक श्रोता या साधक होता है। तो आइए इस पावन पर्व को भी अपने भीतर के कोलाहल को शांत करते हैं और सुनते हैं, अपने जमाने में याद करिए एक प्यारे से गीत को जो हमें जोड़ता है लोक जीवन से, जहां से लोक की गाथाएं उभरती हैं। तो आइए आप सबको ले चलती हूं एक ऐसे ही गीत की तरफ।
8: काका, हम ये कह रहे हैं
9: मजे में ये चिट्ठी भेजी है।

0: हो जी ने।
1: अच्छा अच्छा, कैसे आए हो?
0: विदाई कराने।
1: विदाई कराने? किसकी?
0: ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं?
1: बक। काहरी बलिहार जाएगी। बलिहार काहे?
2: तेरी जीजी ने बुलाया है।
3: हमने कहा था? हमारी बात तो तुम पतियाती ही नहीं हो।

शहरी चकाचौंध में कहां मिलती है वो राहत जो गांव की पगडंडी और पीपल की छांव देती है, और जब उस छांव को सुरों का साथ मिल जाए तो जिंदगी हर दर्द भूलकर मुस्कुरा देती है। श्रोताओं, विश्व संगीत दिवस के इस पावन उत्सव पर जहां हम संगीत की दुनिया भर की शैलियों को याद कर रहे हैं, वहीं हमारी भारतीय माटी का संगीत आज भी अपनी सादगी से हमें अपनी जड़ों की ओर खींच लाता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे महान और अद्भुत संगीतकार और गायक हुए जिन्होंने न तो कभी पाश्चात्य चकाचौंध की परवाह की और न ही अपनी जड़ों को छोड़ा। जी हां, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं रविन्द्र जैन साहब की। उनकी लेखनी और उनके सुरों में हमारी मिट्टी की सौंधी महक रची बसी थी। आज के इस विशेष संगीत पर्व पर आइए अब हम आपको लिए चलते हैं ऐसे ही शांत, सुंदर और निश्चल गांव की पगडंडी पर, जहां हवाएं भी गुनगुनाती हैं और जहां की सादगी देखकर मन कह उठता है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा।

हजारों चेहरे हैं इस दौड़ते हुए शहर में, मगर अजीब मोड़ है कि कोई किसी को जानता ही नहीं। मकान ऊंचे हैं, सड़कें बड़ी हैं, मकान ऊंचे हैं, सड़कें बड़ी हैं, मगर अफसोस दिलों के रास्तों को यहां कोई पहचानता ही नहीं। श्रोताओं, विश्व संगीत दिवस के इस सफर में अभी कुछ देर पहले हम सब मिट्टी की सौंधी महक और गांव की आत्मीय पगडंडियों पर घूम रहे थे, लेकिन संगीत की खूबी यही है कि सिर्फ खुशियों और उत्सव का साथी नहीं है, ये हमारे एकांत और हमारी तन्हाइयों का भी सबसे वफादार हमसफर है। आइए अब आपको गांव के उस आत्मीय आंगन से निकाल कर ले चलती हूँ, कंक्रीट के एक ऐसे विशाल महानगर में जहां ऊंची ऊंची इमारतें तो हैं पर इंसान के हिस्से का सुकून कहीं खो गया है, जहां लाखों की भीड़ तो है पर हर शख्स भीतर से बिल्कुल अकेला है। जब महानगरीय जीवन की इस उदासी और अजनबीपन को शब्दों में ढालना था तब कलम उठी सदी के उस शायर गुलजार की, और जब इन शब्दों को एक ऐसी धुन की जरूरत थी जो सीधे रूह को छू ले तब उंगलियां घूमे संगीतकार जयदेव साहब की। इन दोनों के मिलन से और भूपिंदर सिंह की उस मखमली भारी आवाज से एक ऐसी अमर कृति का जन्म हुआ जो आज भी हर उस दिल की धड़कन है जो इस भागती हुई दुनिया में खुद को अकेला पाता है। जी हाँ, फिल्म घरौंदा का ये कालजयी गीत हमें याद दिलाता है कि संगीत में वो जादू है जो हमारे अनकहे अशकों और छुपे हुए दर्दों को भी एक खूबसूरत शक्ल दे देता है। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं उसी गीत की तरफ।

श्रोताओं, दिल में कोई राज छुपा हो तो धड़कन बढ़ जाती है, और जब वो राज सुरों की थाप पर उतरे तो महफिल ठहर जाती है। विश्व संगीत दिवस के सुरीले सफर में अभी तक हमने गांव की सादगी को महसूस किया और शहर के अकेलेपन को भी जिया, लेकिन संगीत का कैनवास इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ ठहराव ही नहीं बल्कि एक अद्भुत रोमांच, एक अनकहा रहस्य और पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देने वाली गति भी शामिल है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं भारतीय सिनेमा और संगीत के उस सुनहरे दौर में, जहां संगीत सिर्फ कानों में रस नहीं घोलता था बल्कि आंखों के सामने एक पूरा दृश्य काव्य रच देता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म ज्विल थीफ के उस कालजयी और सदाबहार गीत की, जिसे संगीत सम्राट सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन साहब ने अपने जादुई संगीत से सजाया था। इस गीत को जब लिखने की बारी आई तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने शब्दों का ऐसा ताना बाना बुना जिसने कौतूहल और जिज्ञासा की एक नई परिभाषा लिख दी। और जब बात आई इस गीत में अपनी आवाज के जरिए उस रहस्य और कश्मकश को घोलने की, तो सुर कोकिला लता मंगेशकर जी और भूपिंदर सिंह जी के स्वरों ने इसे अमर बना दिया। ये गीत संगीत के विद्यार्थियों के लिए एक पूरी पाठशाला है। श्रोताओं, इस गीत की शुरुआत में जो ड्रम्स और वायलिन का

सस्पेंस है, बीच में जो ढोलक और तबले की अद्भुत जुगलबंदी है और जिस तरह से सुरों का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ये दिखाता है कि संगीत कैसे बिना कुछ कहे भी दिल की धड़कनों को बढ़ा सकता है। ये गीत गवाह है श्रोताओं कि जब संगीत अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मंच पर उतरता है तो सुनने वाला हर शख्स उस धुन के सम्मोहन में बंध जाता है। तो श्रोताओं, आइए अपनी धड़कनों को थोड़ा सा थाम लीजिए, अपने हाथों में अब इस गीत की रिदम से जोड़ने का प्रयास करिए। आइए हम सभी इसी गीत को सुनते हैं।

श्रोताओं, वक्त का कारवा तो यूं ही चलता रहेगा, मगर इन सुरों का उजाला हर दिल में पलता रहेगा। आज जो यादें समेटी हैं हमने इस महफिल से, उन यादों का चंदन ताउम्र हमारे साथ महकता रहेगा। विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये पावन महासंगम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। समय की अपनी सीमाएं हैं श्रोताओं, और घड़ी की सुइयां हमें अब संकेत दे रही हैं कि हमें अब चलना चाहिए। लेकिन इस समापन बेला को और अधिक यादगार बनाने के लिए हमारे पास एक ऐसा गीत है जो इस पूरी महफिल की भावनाओं को एक खूबसूरत अंत की ओर ले जाएगा। ये गीत एक कलाकार का आप सभी श्रोताओं के प्रति एक रूह और दूसरी रूह के प्रति समर्पण है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म आनंद के इस अमर गीत की, जो अब मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, जिसे गुलजार साहब ने बेहद पावन शब्दों से बुना। संगीतकार सलील चौधरी साहब ने एक अमर धुन दी, और संगीत के शहंशाह मुकेश जी ने अपनी दर्द भरी और मखमली आवाज ने हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। आज ये गीत इस पूरे कार्यक्रम का निचोड़ है, जिस तरफ एक साधक अपने आराध्य के लिए जीवन के सबसे सुंदर रंग चुनता है, ठीक उसी तरह आज हमने ये सात रंगों के रंग आपके लिए चुने। तो आइए इस अंतिम प्रस्तुति को हम सब सुने और अपने दिलों में महफूज करें।

0: जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हांजी दोस्त तव्हांजी होस्ट जानवी भावना ने तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, अॼु असां हिकु अहिड़े विषय ते ॻाल्हाइण लाइ गॾु थिया आहियूं जंहिं जो तालुक इंसान जी सिहत, सुकून ऐं खु़शहालीअ सां आहे। योग। योग भारत जी प्राचीन विरासत आहे जंहिंखे अॼु सॼी दुनिया अपनाए रही आहे। योग जो मतिलब आहे शरीर, मन ऐं आत्मा जो मिलण। ही सिर्फ़ हिकु कसरत कोन्हे पर हिकु मुकमल ज़िंदगीअ जी राह आहे। रोज़ाना योग करण सां शरीर मजबूत थींदो आहे, मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं माण्हूअ जो आत्मविश्वास बि वधंदो आहे। अॼु जी तेज़ रफ़्तार ज़िंदगीअ में तनाव, फ़िक्र ऐं घणियूं बीमारियूं वधियूं रहियूं आहिनि। अहिड़े वक़्त में योग असां खे संतुलित ऐं स्वस्थ ज़िंदगीअ जी राह ॾेखारींदो आहे। योग सां न सिर्फ़ शरीर फिट रहंदो आहे पर मन में सकारात्मक सोच पैदा थींदी आहे। 21 जून ते सॼी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हीअ असां भारतवासियुनि लाइ फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त योग जे महत्व खे अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते मान्यता मिली आहे। ही भारत लाइ घणे गर्व जी ॻाल्हि आहे छो जो असांजी पुराणी परंपरा अॼु विश्व जे हर कोने में सम्मान हासिल करे रही आहे। दोस्तों, योग सिर्फ़ शरीर खे स्वस्थ रखण जी विधि कोन्हे पर हिकु अहिड़ी जीवन शैली आहे जेकी इंसान खे मानसिक, शारीरिक ऐं आध्यात्मिक रूप सां मजबूत बणाईंदी आहे। योग शब्द जो मतिलब आहे जोड़ण, यानी शरीर, मन ऐं आत्मा खे हिकु सूत्र में ॿधण। असां खे इहो संकल्प करणु घुर्जे त असां रोज़ाना कुझु समय कढी योग ज़रूर कंदासीं। जॾहिं हर माण्हू स्वस्थ रहंदो त परिवार स्वस्थ रहंदो ऐं परिवार स्वस्थ त समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ रहंदो त देश मजबूत ऐं प्रगतिशील थींदो। योग सिर्फ़ हिकु व्यायाम कोन्हे पर स्वस्थ ऐं सुखी जीवन जी कुंजी आहे। अचो त योग अपनायूं, निरोगी जीवन पायूं। दोस्तों, योग जे बारे में वधीक जानकारी ॾियण लाइ असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद आहिनि डॉक्टर गुलाब राय टेवानी जी, जेके योग जे बारे में छा फ़ाइदा आहिनि ऐं कीअं योग करणु घुर्जे उन जे बारे में असांखे वधीक जानकारी ॾींदा। त डॉक्टर साहिब, मां तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदमि त योग आहे छा आख़िर?
1: योग आत्मा जो परमात्मा सां मिलनि आहे। इन जे लाइ युजते अनेन इति योग आहे। जेॾी महिल आत्मा जो परमात्मा सां गॾु मिलन थींदो आहे, उहो यूनाइट जेको कंदो आहे, जेको कनेक्ट कंदो आहे, उहो योग आहे। तीअं ई असां योगा कर्मासु कौशलम, भगवत गीता में कर्म योग जे अंदरि योग जी परिभाषा जेकी आहे उहा ॾिनल आहे, योगा कर्मासु कौशलम। असां कहिड़ो बि कमु था कयूं उहो स्किलफुल हुजे, उन में परफेक्शन हुजे ऐं पंहिंजो इनर पीस जे लाइ बि असां योग कंदा आहियूं। त योगा फिज़िकल लेवल ते, मेंटल लेवल ते, इमोशनल लेवल ते, हर लेवल ते असांखे बेनिफिट ॾेई रही आहे। ऐं सभिनीनि खां वधीक त मन शांति रहंदो आहे, असां तंदुरुस्त रहंदा आहियूं, हमेशह फिट रहंदा आहियूं। इन जे लाइ योग जेको आहे तमामु ज़रूरी आहे।
0: असां अॼुकल्ह ॾिसूं पिया त कीअं भागदौड़ वारी ज़िंदगी लॻी पई आहे। ॿार त अॼुकल्ह उन्हनि खे टाइम ई कान्हे, फुर्सत ई कान मिलंदी आहे। अॼु जे आधुनिक जीवन में हिन योग जो छा महत्व आहे?
1: जीअं तव्हां चयो भागदौड़ जी ज़िंदगी, असां ॾिसूं पिया था असांजो फिज़िकल एक्टिविटी ख़तम पियो थो थींदो वञे, केवल स्ट्रेसफुल लाइफ, तनाव सां असां रहंदा पिया था वञूं। ॿार ॾिसूं त मोबाइल में सॼो ॾींहुं आहिनि ऐं वधीक टाइम असां स्क्रीन ते था बितायूं,
0: सभिनी खां वॾी परेशानी,
1: ॾाढी वॾी। ऐं उन जे करे थिए छा थो की असांजो फिज़िकल मूवमेंट थी कान थो सघे।

0: मानसिक विकास जेको थियणो आहे उहो थी कान थो सघे केवल असां हिकु लिमिटेड सोच में रहिजी विया आहियूं जंहिंजे करे असांखे शारीरिक प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं मानसिक प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं त सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जेॾी महिल असां कोई एक्टिविटी नथा कयूं असांजी अस्वस्थ दिनचर्या आहे उन जे करे जेके परेशानियूं थींदियूं आहिनि उहे बीमारियुनि में उत्पन्न थींदियूं आहिनि ऐं पोइ मानसिक रोग थियणु चालू थींदा आहिनि शारीरिक रोग थियणु चालू थींदा आहिनि ऐं उन्हनि में सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट आहे कि योगा जेको आहे उहो हिकु फिज़िकल एक्टिविटी त आहे ई पर हिकु मेंटल बूस्टर जी तरह कमु कंदो आहे माइंड खे रिलैक्स करे एनर्जाइज़ कंदो आहे असां जेॾी महिल प्राणायाम ध्यान आसन जी प्रक्रिया कंदा आहियूं त ओवरऑल बॉडी में रीवाइटलाइजेशन थींदो आहे असांजो वाइटल फोर्स वधंदो आहे त असां जेको आलसी जीवन पिया बितायूं हाणे असां उहो आलसी जीवन छॾे करे व्यायाम करे ऐं पाण खे तंदुरुस्त बणाइण जे रस्ते ते असां हली रहंदासीं त असांजा रोग बि पूरी तरीक़े सां ठीकु थींदा त हिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सभिनीनि खां वधीक ज़रूरी आहे हिकु कलाकु पंहिंजे लाइ कढणु चोवीहनि कलाकनि में जंहिं वटि पंहिंजे लाइ हिकु कलाकु कान्हे पोइ जीअणु बेकार आहे जीअणो आहे तंदुरुस्त जीअणो आहे बिना दवा तंदुरुस्ती हासिलु करणी आहे त योग जे माध्यम सां केवल हिकु कलाकु पंहिंजे शरीर खे ॾेई करे शारीरिक व्यायाम करे तंदुरुस्त रही सघूं था
1: सही आहे इहा ॻाल्हि त अगरि असांजो शरीर स्वस्थ आहे त असांजो जीवन बि स्वस्थ आहे
0: पूर्ण रूप सां स्वस्थ रहंदासीं असां
1: योग ज़रूरी छो आहे
0: योग जे प्रकार सां असांखे खाधो ज़रूरी
1: आहे
0: जंहिं प्रकार सां असांखे सुम्हणु ज़रूरी आहे जंहिं प्रकार सां कमु करणु ज़रूरी आहे जंहिं प्रकार सां आमदनी असांखे हुजणु जुड़े उहो ज़रूरी आहे तंहिं प्रकार सां मन जी शांती ऐं शरीर जी तंदुरुस्तीअ जे लाइ योग ज़रूरी आहे जीअं ध्यानु जेको आहे उहो आत्मा जो भोजन आहे शरीर जो भोजन त असां रोटी था खाऊं पर आत्मा खे अगरि असांखे स्वस्थ बणाइणो आहे त शरीर स्वस्थ थींदो शरीर स्वस्थ थींदो त उन जे लाइ ध्यान जी प्रक्रिया जेकी आहे मन खे शांति कंदी आहे छो की असांजा 90% प्रॉब्लम्स जेके आहिनि माइंड खां दिमाग़ खां चालू थींदा आहिनि ऐं शरीर जे मथां रिफ्लेक्ट कंदा आहिनि कारण वीचारनि में आहे इन जे लाइ जेॾी महिल चवंदा आहियूं की पंहिंजा वीचार नकारात्मक थींदा आहिनि त शरीर में कीअं पंहिंजे मथां शरीर जे मथां बीमारियूं रिज़ल्ट कंदियूं आहिनि त इहो साइकोसोमेटिक डिज़ीज़िस खे ओरिजन कंदो आहे त इन सां छा थींदो आहे न कि कारण त दिमाग़ में हूंदो आहे उन जा रिफ्लेक्शन शरीर ते ॾिसंदा आहिनि कमज़ोरी थियणु त ॾिसंदा आहियूं पाण गुस्से में केतिरो एंज़ाइटी थी वेंदी आहे त कीअं हथ पेर कापंदा आहिनि असां त इहो आहे कि तनाव जो शरीर जे मथां प्रभाव ऐं पोइ शरीर जा अंग जेॾी महिल पंहिंजो कमु करणु छॾंदा आहिनि पोइ शरीर खे बीमारी थींदी रहंदी आहे त असांखे मन खे जेॾी महिल ध्यान जी प्रक्रिया सां शांति कंदा आहियूं ऐं असांजो प्रफुल्लता जेॾी महिल ख़ुशी वधंदी आहे आनंदित रहंदा आहियूं असां त तेॾी महिल शरीर जे अंदरि कोई सूर कोन महसूसु थींदो आहे कोई तकलीफ़ कोन महसूसु थींदी आहे असां पंहिंजे पाण खे पूर्णता तंदुरुस्त महसूसु कंदा आहियूं वधीक कमु करे सघंदा
1: आहियूं
0: एनर्जी अची वेंदी आहे
1: योग सां कहिड़ियूं बीमारियुनि जो इलाजु थी थो सघे
0: योग सां अॼु जी तारीख़ में अगरि ॾिठो वञे एट प्रेज़ेंट जेके माण्हू आधुनिक जीवन में योग अपनाइनि था ॾाढा माण्हू आहिनि जंहिं पंहिंजे जीवन शैलीअ जे संबंधित बीमारियुनि खे पूर्णता ठीकु करे वेंदो आहे डायबिटीज़ आहे हाइपरटेंशन आहे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आहे गोॾनि जी तकलीफ़ आहे एड़नि जी तकलीफ़ आहे शोल्डर जी तकलीफ़ आहे साह खणण में तकलीफ़ आहे या इवन मेंटल प्रॉब्लम्स आहिनि जीअं डिप्रेशन आहे एंज़ाइटी आहे
1: या डिप्रेशन जेको तव्हां चयो एंज़ाइटी अॼुकल्ह ॿारनि में हिकु इहो वर्ड डिप्रेशन स्ट्रेस एंग्ज़ाइटी मतिलबु इहे मां टे वर्ड सम्झां थी कि अॼुकल्ह हर हिकु शायदि नंढो ॿार बि इहा ॻाल्हि ज़रूरु दोहराईंदो आहे मां डिप्रेशन में आहियां इन डिप्रेशन या एंग्ज़ाइटीअ मां बि मतिलबु योग करे असां इन खे ख़तमु करे था
0: सघूं पूरे तरीक़े सां था करे सघूं योग में एतिरी शक्ति आहे छो की असां हींअर छा आहे पंहिंजो स्वाद इंद्रियूं आहिनि असां स्वाद इंद्रिय जे वश में आहियूं जबकि थियणी घुर्जे असांखे स्वाद इंद्रिय खे पंहिंजे वश में करणु घुर्जे त पंज इंद्रियूं जेके आहिनि उन्हनि खे असां पंहिंजे कंट्रोल में कंदासीं त असां डिप्रेशन खां एंज़ाइटी खां ऐं शारीरिक प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ हाइपरटेंशन इन्हनि सभिनीनि सां ठीकु करे था सघूं छो की पंचकोश जे आधार ते असांजो शरीर निर्माण थियो आहे योग में चवंदा आहिनि अन्नमय कोश मनोमय कोश प्राणमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश त मनोमय कोश में कारण आहे

0: त असांजो प्राणमय कोश बि अफेक्ट थींदो ऐं उनजो रिफ्लेक्शन अन्नमय कोश शरीर ते ईंदो असां अगरि माइंड खे ठीकु था कयूं मन खे अगरि ठीकु था कयूं वीचारनि में सही था कयूं त नेगेटिव थॉट्स जेके ॿारनि में अचनि था जंहिंजे करे डिप्रेशन थिए थो अगरि उन्हनि थॉट्स खे असां मेडिटेशन करे ऐं योगा करे असां अगरि उहो पॉज़िटिव करे था विझूं ऐं पॉज़िटिव सकारात्मक सोच रखंदा त ॿारनि जो डिप्रेशन पूरी तरीक़े सां ख़तमु ऐं मनोमय कोश ठीकु थींदो त प्राणमय कोश असां आनंदमय कोश अल्टीमेट सेल्फ रियलाइज़ेशन छा आहे की शरीर जे अंदरि कोई बि पीड़ा न हुजे कोई तकलीफ़ न हुजे मन हमेशह तंदुरुस्त हुजे पीस हुजे शरीर में त असां स्वस्थ आहियूं न त बीमार आहियूं त योग अहिड़ी कला आहे जेको न केवल बीमार माण्हू थो करे सघे पर स्वस्थ माण्हू बि कंदो त बीमारी कान थींदी
1: जी इहा त सही ॻाल्हि आहे मतिलबु पहिरियों खां ई पंहिंजी तयारी करे छॾिजे की अॻियां हली करे असांखे कोई बि बीमारियूं न वेड़े वञनि
0: जी
1: हिकु ॻाल्हि बि मां पुछणु चाहींदमि की अॼुकल्ह ॿार जेके आहिनि ॿाहिरियों खाधो ॾाढो खाईंदा आहिनि असां ॾिसंदा आहियूं की पिज़्ज़ा बर्गर इहे फास्ट फूड त ॾाढो था खाइनि अगरि उहे खाई करे ऐं योग कनि त उहे छा उन्हनि जे मथां इफेक्ट ओतिरो ही रखंदा की उन जो घटि थी वेंदो
0: भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ॾाढो सुठो जेको आहे न भोजन जे मथां वाक्य ॾिनो अथई इन में टे प्रकार जा असांजी प्रकृतिअ जे आधार ते टे प्रकार जा भोजन थींदा आहिनि सत्व गुण रजस गुण ऐं तमस गुण इहे टे गुणनि जे आधार ते असांजी प्रकृति जो निर्माण थींदो आहे शरीर जो निर्माण थींदो आहे असां जैसा खाए अन वैसा होगा मन हाणे मन ओड़ो थींदो जहिड़ो रोटी खाईंदासीं जैसा हो मन वैसा होगा तन त जहिड़ो मन हूंदो तहिड़ो तन थींदो ऐं जैसा हो तन वैसा हो आपका जीवन त असांजो जीवन कहिड़ो थियणो आहे उहो असांजे भोजन ते थो तय करे असांजो मन कीअं थियणो आहे असांजे भोजन ते थो तय करे त सात्विक भोजन खाईंदासीं त ऑटो असां पंहिंजे पाण खे पूर्णता तंदुरुस्त रखूं राजसिक ऐं तामसिक खाईंदासीं त चिड़चिड़ो सुभाउ अहिड़ा व्यवहार पंहिंजो रहंदो जेको शरीर खे बि नुक़सान कंदो रहंदो त ॿारनि खे जेतिरो थी सघे असां जंक फूड खां परे रखूं ऐं प्राकृतिक औषधीय आहार ॾियूं जीअं सात्विक आहार आहे ऐं उन्हनि जा वीचार सात्विक थींदा पोइ न हू कॾहिं चिड़चिड़ कंदा न गुसो कंदा अॼुकल्ह ॿारनि में केतिरो गुसो ऐं चिड़चिड़ो थी पियो आहे त उन्हनि जे लाइ त सभिनीनि खां बेस्ट आहे की उन्हनि खे अगरि असां सात्विक आहार ॾियूं था ऐं उन सां अगरि हू पंहिंजी प्रकृति सात्विक ठाहिनि था त तव्हां उन्हनि जे ॻाल्हाइण में बि नम्र व्यवहार महसूसु कंदव त उहो उन सां फ़र्क़ु पवंदो पर सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट आहे पतंजलि योग जेको आहे अष्ट अंगनि ते आधारित आहे जंहिंमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अल्टीमेट रियलाइजेशन छा आहे असांखे समाधिअ ताईं पहुचणो आहे पर असां ॾाढा माण्हू अट्रैक्ट थी करे केवल आसन ते रुकजी विया आहियूं केवल योगा मतिलबु आसन शारीरिक व्यायाम न इन जा रूल्स ऐं रेगुलेशन जेके आहिनि की असांखे सच ॻाल्हाइणो आहे ब्रह्मचर्या जो पालन करणो आहे भॻवान खे सरेंडर करणो आहे शरीर जी साफ़ सुथरो रखणो आहे आंतरिक शुद्धिकरण करणो आहे इहे रूल्स ऐं रेगुलेशन आहिनि की असां कंहिंखे चोट कान पहुचाईंदासीं पहिरीं इहे नियम में असां परिपक्व थी वेंदासीं असां परफेक्शन अची वेंदो पोइ असां आसन प्राणायाम ऐं प्रत्याहार करे था सघूं तॾहिं त विड्रॉवल थींदो सेंसस जो पर असां शॉर्टकट अपनाए करे थर्ड सिधो अंग ते पहुचंदा आहियूं आसन कयूं प्राणायाम कयूं ऐं थी वियो योग न बेसिक फर्स्ट स्टेप आहे यम ऐं नियम उन खां पोइ आसन पोइ प्राणायाम पोइ प्रत्याहार ऐं धारणा ध्यानु समाधि त उहो तेॾी महिल ई थी सघंदो असांजो आत्मा जो परमात्मा सां मिलनि जेॾी महिल रूल्स ऐं रेगुलेशन इन स्टेप सां हलंदासीं त अॼु जे मॉडर्न जीवन में हिन बिज़ी दौड़ भाग में सभिनीनि खे सभु चवंदा आहिनि असां वटि टाइम कान्हे
1: सभिनी खां वॾी परेशानी
0: टाइम कान्हे ऐं टाइम कान्हे त जंहिं वटि पंहिंजे शरीर जे लाइ टाइम कान्हे अॼु अगरि तकलीफ़ हूंदी शरीर बीमार हूंदो हॉस्पिटल में भर्ती थियासीं पोइ बि त शरीर जे लाइ टाइम कढणो
1: आहे त
0: अॼु अगरि असां टाइम कढियोसीं ऐं अॼु योग करे असां पंहिंजे पाण खे तंदुरुस्त करे वेंदोसीं त असां हॉस्पिटल जो ख़र्च बि बचाईंदासीं ऐं हॉस्पिटल जो टाइम बि बचाईंदासीं जेको वञणो
1: आहे
0: त जीअं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम थींदी आहे अॼुकल्ह एड्स ईंदियूं आहिनि ॾाढियूं हा न 28 रुपया ॾियो करोड़ जो तव्हांजो लाइफ इंश्योरेंस थी वेंदो मां चवंदो आहियां तव्हां कलाकु पंहिंजे शरीर खे रोज़ु ॾियो तव्हांजो 365 ॾींहंनि जो इंश्योरेंस
1: आहे
0: तव्हांखे न इंश्योरेंस जी प्रीमियम ॾियणी पवंदव ऐं न बीमार थींदव
1: ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे
0: त असां पंहिंजो ऐं जंहिं वटि वधीक टाइम आहे जेको रिटायर्ड आहे उहो 2 कलाक ॾिए 3 कलाक ॾिए त शारीरिक व्यायाम छो ज़रूरी आहे छो की

0: शरीर जे अंदर जे की गंदगी है ना वो शरीर का बाहर निकलनी पसीने जे माध्यम सा पेशाब जे माध्यम सा श्वास जे माध्यम सा मल जे माध्यम सा तो ऐसा खाएन में पांजे शरीर जे अंदर गंदगी वेजूं था पर कढ़ण जे टाइम ते ऐसा व्यायाम कान था कयो और व्यायाम पौष्टिक तत्व जे केन शरीर के लगन कचरो शरीर का बाहर निकले इन्हें बैलेंस जे लाए योग प्राणायाम वॉक जॉगिंग करण ये असां के फिजिकल एक्टिविटीज करणी होंदी आहिनि तो जेको माण्हू शारीरिक व्यायाम करे तो न वो कदें बेड ते खान ईंदो मरते दम ताईं वो हमेशा स्वस्थ रहंदो तव्हां ॾिसो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 200 कंट्रीज में हींअर सेलिब्रेट थिए थो 21 जून ते असां इंटरनेशनल योगा डे मल्हाईंदासीं डे ऑफ योगा माननीय प्रधानमंत्री जो इनिशिएटिव हो 10 सालनि खां असां जॻहि जॻहि ते सेलिब्रेट कंदा था अचूं हींअर योगा संगम ऐं योगा समावेश हरित योग इहो कार्यक्रम हिन टाइम ते प्रधानमंत्री जन आयुष मिनिस्ट्री जे माध्यम सां लॉन्च कयो आहे 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते संगम मतलब सभिनी खे कनेक्ट करण जोड़ण
1: जो योग जो मतलब ही हुंदो आहे की जोड़ण
0: हा त सभिनी खे जोड़ण ऐं वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर वन फैमिली
1: केॾी सुठी ॻाल्हि आहे
0: त इहो उद्देश्य सां जेॾीमहिल असां हलूं था त तव्हां ख़ुदि सोचो असांजो फैमिली बि हिकु आहे असांजो अर्थ बि हिकु आहे असांजो फ्यूचर बि हिकु आहे ऐं असांजी हेल्थ बि हिकु आहे त सभिनी जे स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य जे लाइ अगरि योग कंदा रहंदासीं त हमेशह तंदुरुस्त रहंदासीं कॾहिं बीमारी कान थींदी न न रोग मुक्त भारत जो निर्माण योग सां ही थी सघे थो ऐं योग सां 90% बीमारियूं ठीक थी वेंदियूं छो की मन में जेकी बीमारी थी आहे उहा तन ते लथी आहे तन जी बीमारी ठीक करणी आहे त पहिरीं मन खे ठीक
1: करणो पवंदो
0: ऐं मन ठीकु आहे त सभु ठीकु
1: आहे सभु ठीकु
0: आहे मन ठीकु कान्हे
1: त कुझु बि ठीकु कान्हे पाण असां ॾिसंदा आहियूं की खाधे जो बि फ़र्क़ु पवंदो आहे
0: ॾाढो
1: जीअं असांजा बुज़ुर्ग ॾिसूं त उहे अॼु जी जेकी नई टही आहे उन खां वधीक सुठे सां हली सघंदा आहिनि ऐं वधीक कम बि करे सघंदा आहिनि मतलब आलसपन जेको असां ॾिसूं पिया था की अॼुकल्ह जी जनरेशन में अॼुकल्ह जे ॿारनि में उहो त वधीक ई आहे त योग करण सां छा आहे की इहो आलसपन बि वेंदो आहे है न जीअं मानसिक तव्हां चयव त मानसिक और फिजिकल ॿई स्ट्रेंथ थियूं अचनि
0: रोटीअ जो जेको आहे तव्हांजे खाधे जो चयो ॾाढो फ़र्क़ु पवंदो आहे हिकु ॻाल्हि ध्यानु पई अचे पहिरीं असांजा बुज़ुर्ग जेके आहिनि उहे चवंदा हुआ घटि खा गम खा डॉक्टर वटि कॾहिं न वञ
1: अरे वाह
0: हाणे जेको आहे न हाणे चवंदा आहिनि वधीक खाओ स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाओ वधीक खाओ ऐं रोज रोज डॉक्टर जा चक्कर लॻायो
1: ऐं गंभ न
0: गंभ न
1: सही हाणे हलंदे हलंदे असां इहो मां चवंदमि की नई टई ऐं असांजे श्रोताउनि खे तव्हां योग जे बारे में छा मैसेज ॾियणु चाहींदव
0: मां त श्रोताउनि खे हिकु ई मैसेज ॾींदमि की अगरि असां जीवन में बदलाव चाहियूं था परिवर्तन ऐं पंहिंजे पाण खे हमेशह तंदुरुस्त रखणु चाहियूं था त पंहिंजे लाइ टाइम कढूं जेको कंहिं वटि आहे कान पर तव्हां 30 मिंट 30 मिंट बि अगरि तव्हां पंहिंजे लाइ कढंदा कलाक बि पंहिंजे लाइ कढंदा ऐं योग केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जे लाइ न कयूं योग खे पंहिंजे जीवन में शामिलु कयूं पोइ तव्हां ॾिसंदा न डिप्रेशन रहंदो न शरीर जी प्रॉब्लम रहंदी कुझु प्रॉब्लम कान रहंदी इन जे लाइ तव्हां ऑफिस में आयो तॾहिं बि योग करे था सघो प्राणायाम त उते वेठे वेठे बि था करे सघो ईअं त आहे कान कान था करे सघो त इन जे लाइ करण जो मन ठाहिणु इहो मुंहिंजो संदेश आहे की असां करण जो मन ठाहियूं ऐं करणु प्रारंभ कयूं अगरि चालू कंदासीं तॾहिं ई सफलता हासिलु थींदी न त सफलता हासिल कान थींदी
1: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे जीअं माण्हू पंहिंजे लाइ टाइम कढनि था जीअं सिनेमा ॾिसण लाइ टाइम कढनि या कुझु बि कहिड़ी बि एक्टिविटी करण लाइ टाइम कढनि था त उन लाइ बि टाइम कढणु ॾाढो ज़रूरी आहे ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायव योग जे बारे में तव्हांजो घणो घणो महिरबानी आहे की तव्हां असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में आयव ऐं योग जे बारे में असांखे हेॾी सुठी जानकारी ॾिनव
0: धन्यवाद
1: दोस्तों हाणे वधूं था हिकु ॼाण जी तरफ़ वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस ही ॾींहुं असांखे अहिड़े महान वीर नारीअ जी यादि ॾियारींदो आहे जंहिंजे साहस त्याग ऐं देशभक्ति इतिहास जे सुनहरे अखरनि में लिखियल आहे रानी दुर्गावती भारत जी अहिड़ी महान वीरांगनाउनि में शामिल आहे जंहिं पंहिंजे राज्य प्रजा ऐं सम्मान जी रक्षा करण लाइ पंहिंजी जान कुर्बान करे छॾी नंढपण खां ई हुन

में वीरता, आत्मविश्वास ए नेतृत्व जी भावना हुई। वह युद्ध कला, घुड़सवारी ए शस्त्र हलायण में माहिर हुई। राणी जो विवाह गोडवाना जे राजा दलपत शाह से थो। राजा दलपत खां पोए पेंजे पुट वीर नारायण जे संरक्षक जे रूप में राज्य जो शासन संभालो। हुन न केवल कुशलता से राज्य हलायो, गडोगड प्रजा जे कल्याण ए विकास लाए घणे कम भी कया। जडे गोडवाना ते मुगल सेना हमलो कयो, तडे राणी दुर्गावती हिम्मत हारण जे बजाय दुश्मनन जो डटे करे मुकाबलो कयो। हुन पेंजे सैनिकन संगड युद्ध जे मैदान में लई वीरता जो शानदार उदाहरण पेश कयो। युद्ध जे हलंदे घायल थी वनण खां पोब हुन हार न मनी। 24 जून 1564 जे डी राणी दुर्गावती पेंजे स्वाभिमान ए स्वतंत्रता जी रक्षा कंदे वीर गति पाती। हुन आत्मसमर्पण खां बेहतर बलिदान डण के सही समझो। हुनन जो त्याग ए बलिदान अज भी असां के प्रेरणा थो दे। रानी दुर्गावती जो जीवन असां के इयो सिखारिंदो आहे त मुश्किल हालात में भी हिम्मत, आत्मविश्वास ए सच्चाई कदें न छड़न घुर्जे। हुन जो बलिदान खास करे जायफाउन लाए प्रेरणा आहे त नारी शक्ति हर चुनौती जो डटे करे सामनो करे सके थी। अचो त गजी मिली असा सब महान वीरांगना के श्रद्धापूर्वक नमन करूं। और इन सा गड गड बुधू था घनश्याम वासवानी ए दादा दुखायल जो गायल ही सुहणो देशभक्ति गीत।

दोस्तों नशो इंसान जी जिंदगी जो के अड़ो दुश्मन है जेको धीरे धीरे उन जी सेहत परिवार सम्मान ए भविष्य के बर्बाद कर छिंदो है। शराब तंबाकू गुटका सिगरेट ए म्यू भी नशेलू शयू शरीर के तो नुकसान पहुंचाएन ही थियूं पर मानु जी सोच व्यवहार सोचने ए निर्णय जी क्षमता के भी खराब असर पहुंचाएन थियूं। अज घना नौजवान गलत संगत तनाव या फैशन जे हलंदे नशा था कन पर उनन के यो समझन गुर्जे ते केड़ो भी नशो कें भी समस्या जो हल ना है। नशो तो पान ही समस्या वधाइंदो आहे इंसान के पेंजे लक्ष्य ए सफलता खां परे थो करे। नशे जे कारण घणे परिवार तबाह थी वेंदा आहिनि घणियूं बीमारियूं वधंदियूं वेंदियूं आहिनि पैसे जे नुकसान सां गॾु समाज में अपराध खे बि वधाईंदो आहे। नशो करण वारो इंसान पंहिंजी ज़िंदगीअ सां गॾु पंहिंजे परिवार जी ज़िंदगीअ खे बि ख़राब करे छॾींदो आहे। हिकु स्वस्थ ऐं प्रगतिशील समाज तॾहिं ई बणजंदो जॾहिं असांजी नई टई नशे खां पासो करे शिक्षा में खेल कूद में योग ऐं सकारात्मक सोच में अॻियां वधे। इहे संस्कार उन्हनि खे घर मां ही मिलंदा। मुंहिंजी त सभिनी माउ पीउ ऐं वॾनि सां निमाणी वेनती आहे त तव्हां बि पंहिंजे ॿारनि या कंहिंखे बि नशो कंदे ॾिसो त उन्हनि खे रोकणु तव्हांजो फ़र्ज़ु आहे। पंहिंजे समाज में नशे जे नुक़सान खां सभिनी खे जागरूक करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे।

दोस्तों इन्हीं खां पोए हिक मां बी ॾाण ॾियण चाहिंदमि असां जे मोदी सरकार खे 12 साल पूरा थिया आहिनि सरकार जी जॾहिं 12 साल पूरा थिया तंहिं दौरान मुल्क जी तरक़ी खु़शहाली ऐं आवाम जी भलाईअ लाइ घणेई कम कया विया गुज़िरियल 12 सालनि में मुल्क में घणेई अहम तब्दीलियूं आयूं तरक़ीअ जा कम थिया ग़रीब किसाननि जाइफ़ाउनि ऐं नौजवान या समाज जे कमज़ोर वर्गनि जी भलाईअ लाइ घणेई योजनाऊं बि शुरू कयूं वयूं साफ़ सफ़ाई इलाज पाणी बैंकिंग ऐं डिजिटल सहूलियतुनि खे आम माण्हुनि ताईं पहुचाइण जी पूरी कोशिश कई वई कुझु अहिड़ियूं योजनाऊं जिन जो मां ज़िक्र कयां थी 81 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे हर महीने मुफ़्त राशन ॾियणु 10 करोड़ खां वधीक उज्ज्वला गैस कनेक्शन लॻाइण 70+ वारे बुज़ुर्गनि खे 5 लख जो मुफ़्त उपचार ॾियणु 60 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे आयुष्मान भारत जी सुरक्षा 26 शहरनि में मेट्रो जी सुविधा 164 वंदे भारत ट्रेन जी सुविधा अटल सेतु सुदर्शन सेतु चिनाब रेल ब्रिज बोगीबिल ब्रिज पवन समुद्री जेड़ा वडा वडा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो निर्माण देश भर में 2 लख स्टार्टअप MBBS सीटुनि जी संख्या लगभॻि 1.3 करोड़ थी वई आतंकवाद ते कड़ो प्रहार थियो करीब 38,400 करोड़ जा रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट गुलामीअ जी मानसिकता खां मुक्ति 4 करोड़ खां वधीक किसाननि खे 2 लख करोड़ जो फसल बीमा योजना ॾियणु किसाननि लाइ लॻभॻि 4 लख करोड़ खां वधीक PM सम्मान विधि ॾियणु 32 करोड़ खां वधीक जाइफ़ाउनि जो जन धन खातो खोलणु सेना में जाइफ़ाउनि खे स्थायी कमीशन मिलणु ऐं ॿिए बि अहिड़ा घणेई कम जंहिं जो शायदि मां ज़िक्र न कयो आहे लोकतंत्र में हर सरकार जी क़ाबिलियत उहा आहे त हू आवाम जी उमेदुनि ते खरो लहे तरक़ीअ सां गॾु चुनौतियूं बि ईंदियूं आहिनि पर असांखे मिली करे इन्हनि चुनौतियुनि जो मुक़ाबिलो करे मुल्क खे अञा मज़बूत ठाहिणो आहे त दोस्तो असां बि इहो प्रण कयूं कि असां बि पंहिंजे देश खे पंहिंजे मुल्क खे अॻियां वधाइण में को कसर न छॾींदासीं दोस्तों हाणे वक़्तु थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे उमेद आहे त तव्हां खे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा मिलूं था हिकु नई उमेद सां हिकु नई ख़ुशीअ सां हिकु नए कार्यक्रम सां सभ जो भलो

0: ये आकाशवाणी का केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे शहडोल जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योग किया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। जिले के स्कूलों, पंचायतों और संस्थानों में भी एक साथ योगाभ्यास कराया गया। अब बात करते हैं प्रशासनिक बदलाव की। भारत सरकार ब्लॉक, तहसील और जिला पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में IIPA दिल्ली की 2 सदस्यीय टीम शहडोल पहुंची है। टीम नागरिकों और अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है। युवाओं को रोजगार देने में भी शहडोल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। 203 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। इससे कई युवाओं ने अपना कारोबार शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया है। दूसरी तरफ खरीफ सीजन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिले में किसान पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा में खाद खरीद रहे हैं। अब तक करीब 7,000 किसान खाद ले चुके हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है। जिले में 25,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अधिकांश किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी कर दिया गया है। जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत लाखों जल संरचनाओं और सोकपिट का निर्माण कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। महिलाओं ने प्लास्टिक बोतलों से ड्रिप इरीगेशन मॉडल बनाकर पानी बचाने की पहल की है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिले को 11,000 से अधिक ऋण प्रकरणों का लक्ष्य मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नई पहल सामने आई है। कलेक्टर निवास के पास महिला स्वसहायता समूहों के लिए विशेष व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परिसर में 32 दुकानें होंगी। यहां महिलाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगी। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में रियल टाइम ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। शिक्षकों की उपस्थिति अब सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। वहीं साक्षरता के क्षेत्र में भी जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब तक 1,49,000 से अधिक लोग साक्षर हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जा रही है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली यह लैब अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। यहां मरीजों को एक ही स्थान पर 134 प्रकार की जांच सुविधाएं मिलेंगी। समाज सेवा के क्षेत्र में भी शहडोल के युवाओं ने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। श्रीराम रक्तदान समिति के करीब 150 सदस्य पिछले एक दशक से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये टीम अब तक 3,000 यूनिट से अधिक रक्तदान कर चुकी है। जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी सर्वेक्षण इसी प्रकार से किया जाएगा। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें जिले के 30 विद्यालयों के रसायन शास्त्र के शिक्षक शामिल हुए। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग ने नागरिकों से श्रम प्रहरी बनने की अपील की है। जागरूक नागरिक श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी विभाग तक पहुंचा सकेंगे। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पपौंद क्षेत्र में महुआ बीनने गई 2 युवतियों की बिजली गिरने से जान गई, वहीं पर एक अन्य महिला भी घायल हुई। वहीं गोहपारू क्षेत्र में भी एक युवक की बिजली गिरने से

मौत हो गई। और अंत में पुलिस विभाग से जुड़ी खबर। शहडोल जिले में 110 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: सुन रहे थे जिंदगी की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शहडोल से की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: मीडियम वेव 254.45 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रीवा केंद्र। सुबह के 10:05 हुए, ये समय है कार्यक्रम महफिले गजल का। श्रोताओं, आज की इस महफिल में हम कुछ ऐसी बातों को लेकर आए हैं जो रोजमर्रा की भागदौड़ से बिल्कुल अलग हैं। जब जीवन में शब्दों और सुरों का सही तालमेल होता है तो वो एक अनूठा सुकून देता है। आज हम सब यहाँ एक विशेष उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप सबके बीच जो कि गजलों पर आधारित सुगम संगीत का कार्यक्रम है, महफिले गजल। जैसा कि विख्यात रचनाकार दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि गजल के फूल खिलाकर चले हैं हम दोनों, अजीब रब्द जबाने में रख गए हैं हम दोनों, उसी गहरे मानवीय संबंध और आत्मीयता को महसूस करने के लिए आज की ये महफिले गजल हमने सजाई है। तो आइए शुरुआत इसी से करें।

श्रोताओं, गजल केवल कुछ पंक्तियों को गा देना भर नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिल के सुख दुख, प्रेम और दर्शन को गहराई से महसूस करने का माध्यम भी है। आज हम सभी इस कार्यक्रम में अब से लेकर कुछ मिनटों तक अपने तरन्नुम से जो गजलें आपको सुनवाएंगे, वो गजलें अपने दिलों को खिलाने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए इस महफिल में आपको सुनवाते हैं ये गजल।

हजरत मोहब्बत दुनिया का वो वाहिद जज्बा है जिसे समझने के लिए किसी जुबान की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब इसी मोहब्बत की दास्तान को, इसकी कशिश को और इसके सूज को गजल के सांचे में ढाला जाता है तो रूह झूम उठती है। अर्ज किया है कि दास्तान दिल कहूं या रुदाद मोहब्बत कहिए, दास्तान दिल कहूं या रुदाद मोहब्बत कहिए, जो गुजरी है दिल पर उसे जमाने की हकीकत कहिए। लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब जिक्र यार होता है, इसे हुस्न का जादू कहें या वफा की इबादत कहिए। कहते हैं कि मोहब्बत की कोई एक मुकम्मल कहानी नहीं होती, हर दिल की अपनी एक दास्तान होती है, अपनी एक रुदाद होती है। कभी इसमें मिलन की खुशी है तो कभी जुदाई का एक लंबा सन्नाटा। और शायर जब इस जज्बात को कागज पर उतारते हैं तो दिल से एक सदा निकलती है, रुदादी मोहब्बत क्या कहिए, यानी इस मोहब्बत की कहानी का क्या कहना। इसके मायने जितने गहरे हैं, इसकी मौसिकी उतनी ही रूहानी। और अब यही गजल आपको हम सुनवाने जा रहे हैं जिसमें आवाज है आशा भोसले की। इस बेहद खूबसूरत और रूह को छू लेने वाली गजल को जब आशा भोसले ने अपनी आवाज से तरासा तो उनकी आवाज में जो ठहराव, जो सोज, जो इस गजल के एक एक लफ्ज को आपके दिल के पार उतार देती है तो उसमें लोग झूम उठते हैं। तो आइए सुनते हैं यही गजल।

सामयिक वक्त की एक आदत है कि ये हमेशा एक सा नहीं रहता और शायद इंसानी रिश्ते भी वक्त की इसी फितरत से अछूते नहीं हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां जो शख्स कभी हमारी पूरी कायनात हुआ करता था, जिसके होने से हमारी सुबह और शाम मुकम्मल होती थी, वो अचानक एक अनजाना सा मुसाफिर बन जाता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब नहीं होती जब वो दूर चला जाता है, बल्कि तब होती है जब दुनिया के सामने उस रिश्ते को स्वीकार करना या गुजरे हुए कल का जिक्र करना एक बोझ बन जाता है। दिल तड़प उठता है ये सोचकर कि जो कभी सिर्फ मेरा था, आज उसे अपना कहना भी एक अजीब सा एहसास देता है। इसी जज्बात, इसी खामोश दर्द और इसी जमीनी हकीकत को बयां करती भजन सम्राट और गजल गायकी के उस्ताद अनूप जलोटा जी की ये बेहद मशहूर गजल अब आप सबके सामने प्रस्तुत है।

नजर के कद्रदानों, इंसानी दिल भी एक अजीब शय है। ये कभी समझदार नहीं होता, हमेशा अपनी धुन में रहता है। कभी ये उम्मीदों के आसमान पर उड़ता है तो कभी यादों के साए में घिरकर अचानक उदास हो जाता है। जब जिंदगी में कोई खास शख्स दूर चला जाता है तो ये दिल एक ऐसे मुसाफिर की तरह हो जाता है जो अपनी ही राहें भूल चुका हो। तब गुजरी हुई बातें, वो हसीन मुलाकातें और वो मौसम एक खामोश दर्द बनकर जहन में दस्तक देते हैं और दिल एक सुलगता हुआ सवाल बन जाता है। इसी दीवानगी, इसी तन्हाई और दिल के इसी आवारापन को बयान करती उस्ताद गुलाम अली साहब की ये सदाबहार और ऐतिहासिक गजल अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दस लाख की लॉटरी मुझे,
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सामान्य जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि यहां किसी के चले जाने से दुनिया की रफ्तार कभी कम नहीं होती। मौसम अपने वक्त पर बदलते हैं, रात के बाद सुबह होती है और महफिलें यूं ही सजती रहती हैं। जमाना तो अक्सर यही कहता है कि कोई एक शख्स पूरी जिंदगी नहीं होता, उसके न होने से क्या फर्क पड़ेगा। मगर ये दुनिया क्या जाने कि जो इंसान पूरी महफिल के लिए सिर्फ एक शख्स होता है, वो किसी एक दिल के लिए उसकी पूरी कायनात। जब वो दूर जाता है तो भले ही दुनिया में कोई कमी न दिखे, लेकिन उस तन्हा

दिल के भीतर एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जिसे सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें ही भर पाती हैं। इसी खामोश समझौते, इसी दार्शनिक दर्द और जज्बातों की इसी गहराई को बयां करती है कार्यक्रम की अगली गजल।

श्रोताओं, जिंदगी में कई बार हम किसी इंसान को इस कदर चाहने लगते हैं कि हमारी सांसें, हमारी धड़कनें और हमारा पूरा वजूद उसी के नाम हो जाता है। हम उसे अपनी तकदीर, अपनी इबादत और अपनी जिंदगी मान बैठते हैं। मगर वक्त का पहिया जब घूमता है तो कभी कभी ऐसा वक्त भी देखना पड़ता है कि वही इंसान जिसे हमने अपनी जान से बढ़कर चाहा, जब बरसों बाद किसी मोड़ पर मिलता है तो उसकी आंखों में पहचान की वो पुरानी चमक नहीं होती। दिल टूटकर बिखर जाता है जब अपनी पूरी जिंदगी मान चुके इंसान की आंखों में हमें सिर्फ और सिर्फ बेरुखी या एक अजनबीपन दिखाई देता है। मोहब्बत की इसी बेबसी, इसी खामोश तकलीफ और वक्त की इस बेरहमी को लफ्जों में पिरोती है ये बेहद मशहूर और दिल को झकझोर देने वाली गजल, जो अब हम आपको सुनवाएंगे।

श्रोताओं, आज के हर एक गजल का हर एक शेर, बहर का हर एक उतार चढ़ाव सीधे रूह में उतर गया। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन इन लफ्जों ने कुछ लम्हों के लिए वक्त को भी ठहरने पर मजबूर कर दिया। पर जैसा कि दस्तूर है, हर मुकम्मल दास्तान को एक मुकाम पर आकर ठहरना होता है, और आज का ये कार्यक्रम यही ठहरता है। फिर मिलने के वादे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। कार्यक्रम यही संपन्न करते हैं। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि फोन करें गीत सुने कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 075। इस दौरान फोन करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कॉल लगाने से पहले अपने पास कम से कम 2 गीत और उनकी फिल्मों के नाम अवश्य तैयार रखिए। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
2: फोन करेंगी सुने।
1: जी फोन करेंगी सुने, कौन बोल रहे हैं बताइए।
2: जी मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ, सरग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह।
1: तो लक्ष्मण सिंह जी क्या करते हैं आप?
2: सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
1: खेती बाड़ी करते हैं, अभी खेत में क्या बोया है?
2: तो तैयारी चल रही सरसों अभी बो गई की।
1: जी अभी आप खेत तैयार कर रहे हैं ताकि बोया जा सके।
2: गर्मियों में मूंग बोई थी सर, कटाई फटाई हो गए, बखानी वगैरह हो गई है सर।
1: तो अब क्या बोने का इरादा है आपका?
2: अब सर सोयाबीन और उड़द बोएंगे, मक्का भी, तीनों चीजों को बोएंगे।
1: तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
2: आज फिल्म हरियाली और रास्ता को सुनना है सर, मुकेश की आवाज में गीत है सर
1: जी,
2: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ।
1: ये गीत क्यों सुनना चाहते हैं आप?
2: सर बहुत पसंद है उसके बोल अच्छे।
1: जी जी बोल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सेट सॉन्ग है हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
2: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करेगी, सुने।
2: सर नमस्कार, मैं गावली हेदिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
1: बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, दिनेश चौहान जी। क्या करते हैं आप?
2: सर मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, मोटर वायरिंग का।
1: मोटर वायरिंग का काम करते हैं?
2: जो कूलर पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, वो जल जाते हैं ना।
1: बहुत बढ़िया। तो अभी तो आपका बिल्कुल सीजन का टाइम चल रहा होगा, अभी तो बहुत बिजी होंगे आप।
2: हाँ बहुत बिजी है सर, क्योंकि सीजन का टाइम है, वो ज्यादा गर्मी है, तो इस वजह से पंखा मंखा वायरिंग करते हैं।
1: ठीक है,
2: उसके साथ आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ज्यादा, तो हमको सुनने
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम ऐसे हैं या रेडियो एक ऐसा जरिया है कि जिसमें आप काम करते करते ये रेडियो सुन भी सकते हैं, काम भी हर्ज नहीं होता, और इसके अलावा काम में आपका और अधिक मन लगता है रेडियो के।
2: सही बात बोले सर आपने,
1: है ना।
2: गाने वाने सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है, और थोड़ी मतलब ये जो श्रोताओं की बात सुनने के लिए मिलती है, तो इसमें जानकारी मिलती रहती है, तो और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई इन्फॉर्मेटिव जानकारियां अपने को मिलती रहती है, कई श्रोता ऐसे होते हैं, कई जानकारियां देते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियां आपको मिलती है ना। तो आज क्या सुनना चाहेंगे दिनेश जी?
2: सर फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, उसमें गाना है क्या करते थे साजना।
1: तो दिनेश चौहान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो नमस्कार।
1: हेलो हेलो
0: नमस्कार। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा जिला विदिशा।
0: भागचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल सर, कैसे हैं आप?
0: मैं एकदम ठीक हूँ।
1: और सर मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
0: मौसम भी ठीक है, बीच का है, न गर्म है न नरम है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और सर और सब बढ़िया?
0: बढ़िया। आप बताएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है, आप क्या कर रहे हैं?
1: हम सर जी हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे भागचंद जी?
1: आज फिल्म का आज सुनवा देना, लव स्टोरी फिल्म का गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
0: देखिए गाना कोई और बता रहे हैं और पिक्चर का नाम कुछ और बता रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो 1942 है, लव स्टोरी का है।
1: हाँ ये वाला ना हो तो दूसरा बता दें सर।
0: नहीं नहीं, ये पिक्चर का नाम लव स्टोरी नहीं है, 1942 ए लव स्टोरी है। चलिए तो गीत आ रहा है आपके रजिस्टर पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी, सुने।
1: हाँ नमस्कार साहब।
0: नमस्कार,
1: दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल, दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से बोल रहे हो साहब, राजेश अग्रवाल।
0: राजेश अग्रवाल, तो राजेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: ये पिक्चर का गीत है या धर्मेंद्र की पिक्चर है 1980 की
0: जी, गीत के बोल।
1: मैंने थोड़ी सी चढ़ाई तो दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा गीत है। वो, हाँ रफी साहब और आशा जी की आवाज
0: बड़े ही मतलब अलग से टाइप की पसंद है आपकी, यही गीत सुनने की कोई खास वजह?
1: नहीं वो तो सर अच्छा लगता, आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों की तो जोड़ी ही अपने आप में एक गीत की श्रेष्ठता की पहचान हुआ करती। तो चलिए गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।
1: धन्यवाद सर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, बहुत प्रयास के बाद लगाया सर, करीब 175 बार लगा चुकी हूँ कॉल।
0: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं नवकाल से मीना दसौंधी बोल रही
0: हूँ। मीना दसौंधी खरगोन मध्य प्रदेश से।
1: जी सर।
0: जी मीना दसौंधी जी, मेरे से शायद आपकी पहली बार बात हो रही है।
1: जी सर पहली बार हो रही है। सर आपका शुभ नाम?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। आप क्या करती हैं मीना जी?
1: सर मैं हाउस वाइफ हूँ सर।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: किचन का काम छोड़ के कॉल कर रही थी 10:30 बजे से।
0: जी जी जी जी।
1: घर जाके अब लगा।
0: जी जी, क्या सुनना चाहेंगी मीना जी आज आप?
1: सर मुझे कल फादर्स डे है तो मुझे बॉस पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए। मेरे पिताजी को डेडिकेट करूंगी सर, वो इस दुनिया में तो नहीं है अभी, उनका मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं, तो उन्हीं के लिए बॉस पिक्चर का सुनवा दीजिए। ईश्वर अल्लाह दोनों रब है।

0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा लगता है जबकि हम लोग माता पिता को इतना मान देते हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं केवल उनकी वजह से होते हैं, है
1: जी
0: ना।
1: सर, हम
0: और
1: पूरी
0: हमारा
1: दुनिया देख रहे हैं, सब माता
0: जी
1: पिता की वजह से ही, उन्हीं की देन है।
0: जी जी जी आज हम जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो केवल उनके संस्कार हैं, और है
1: सबसे
0: ना
1: पहले वो, फिर अपन।
0: वही। जी जी जी और जो लोग इस बात को मानते हैं वो निश्चित ही मेरी नज़र में तो बहुत बढ़िया होते
1: जी
0: हैं,
1: सर,
0: है ना।
1: वैसे तो
0: और
1: सर हर रोज फादर्स डे, मदर्स डे होता है, हर दिन उन्हीं का है, लेकिन ये स्पेशल डे रहे तो स्पेशल रूप से मनाना पड़ता है।
0: जी, देखिए हमारे जन्मदाताओं को मान दिए बगैर हम कुछ है ही नहीं, है ना।
1: जी सर, उनको
0: और
1: तो
0: उनको
1: मेरा
0: मान
1: बहुत
0: देंगे
1: बहुत
0: तो हमारे
1: धन्यवाद
0: रास्ते
1: है।
0: अपने आप सारे खुलते चले जाएंगे, और
1: जी
0: रास्ते कितनी भी परेशानियां आएँ वो मिनटों में आपकी शायद गायब हो
1: जी
0: जाएगी, है ना।
1: माता
0: या
1: पिता, गुरु, शिक्षक और एक भगवान, ये चार पांच तो बिल्कुल आदरणीय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही यही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम
1: नमस्कार।
0: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी किससे
1: हेलो।
0: बात हो रही है, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हम ग्राम कानासिला, तहसील कालपी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से राजेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं।
0: राजेश जी, क्या करते हैं आप?
1: हम ब्लेंड हैं तो दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान रखे हैं, दुकान चलाते हैं और संगीत से प्रेम है तो
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: नाल
0: बढ़िया।
1: बजाते हैं और गायकी भी करते हैं।
0: क्या बजाते हैं?
1: नाल नाल
0: नाल? हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है।
1: ये मतलब ढोलक।
0: ढोलक बजाते हैं? अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, ये गीत हो संगीत हो, है ना, ये तो बड़े हमारा जो समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा साधन हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप ब्लाइंड हैं और उसके बाद में किराने की दुकान भी चलाते हैं, ये बहुत बढ़िया है कि मतलब आप अपनी आजीविका खुद अर्जित करते हैं, है ना, ये बहुत ज़रूरी है।
1: और
0: तो
1: रेडियो बहुत दिन से सुनते हैं, मुझे रेडियो से बहुत प्रेम है। कम से कम मुझे 30 साल हो गया रेडियो सुनते थे। अब रेडियो का शुरू से बहुत बड़ा फैन, मुझे रेडियो बिना तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी।
0: रेडियो है ही ऐसी चीज़ भाई, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तब भी रेडियो सुनते सुनते पढ़ा करते थे। और किसी ने हमको बताया, रेडियो सुनते सुनते जब हम पढ़ते हैं तो उससे दो तरफ दिमाग रहता है, तो दिमाग बढ़ता है। पता नहीं वो
1: हाँ, अब
0: बात
1: तो
0: कितनी
1: अगर
0: सही थी कितनी गलत, लेकिन उसमें ही बड़ा मजा आता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए रेडियो से बड़ा अच्छा, जबकि मेरे यहाँ डेग रखा हुआ है दुकान सबको, लेकिन मैं बजाता नहीं, रेडियो बजता है मेरा बस।
0: जी जी जी जी
1: बहुत
0: तो
1: दिन में आपके यहाँ मेरा फोन लगवाया, कम से कम 6 महीने से मेरी आज बात हो रही है।
0: ये बताइए कि आज क्या सुनना चाहेंगे राजेश जी?
1: मुझे आज
0: देखिए
1: काफी
0: राजेश जी, हम पहले ही बोलते हैं कि दो गीत आप तैयार रखिए और दो फिल्मों के नाम, है ना।
1: हाँ, सही कहा आपने।
0: हाँ, बताइए
1: उसका सुना दीजिए, खिलौना फिल्म है, खिलौना।
0: जी।
1: अगर वो गाना है लता जी ने गाया हुआ है, तू सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, वो एक खिलौना लता जी की आवाज में है, बहुत सुंदर गीत है। और मुझे पुराने गीत ही सुनने का शौक है।
0: बहुत अच्छा, पुराने गीतों में एक रस आनंद तो होता ही है, कुछ
1: हाँ
0: यादें भी हम लोगों की जुड़ी होती है पुराने गीतों से, क्योंकि हम भी तो पुराने हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है और गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत
1: जी
0: का
1: जी जी
0: आनंद।

0: अभी आपने सुना खिलौना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अब संपन्न होता है। अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोनिंग कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देना इनको
1: वो खिलर देंगे फिर।
2: हाँ तो कॉल आ गया।
3: साइलेंट में रखो पहले नीरज,
1: ये दरवाजा लटकवा देना भैया, दरवाजा थोड़ा सा रहिएगा।

नमस्कार। श्रोताओ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इस भव्य और ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह में आपका स्वागत है। पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह का पूरा माहौल इस समय उत्साह, ऊर्जा, शैक्षणिक गरिमा से सराबोर है। श्रोताओं, हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज का दिन इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। लगभग दो दशकों यानी 20 साल के एक लंबे अंतराल के बाद देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परिसर में कदम रखेंगी। हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले साल 2006 में मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए थे। आज विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। समारोह में प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों का भव्य सम्मान होगा। 66 गोल्ड मेडल और 160 उपाधियां दी जाएंगी। हया नज़र में दामन पाक ज़रूरी है, हया नज़र में दामन पाक ज़रूरी है, जो भी है बात साफ साफ ज़रूरी है। हम सब बुलंदी पर पहुँचे, मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। माँ नर्मदे को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी सुनने वालों का फिर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और ये कहते हैं कि सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, ज़िंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत प्यारे मिल जाते हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यानी RDU के 36वें ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की आयोजना है। हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंद्र सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं, खास बात यह है कि इस बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भारत शब्द का व्यापक उपयोग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह से जुड़ी डिग्रियों, स्वर्ण पदकों, प्रमाण पत्रों, आमंत्रण पत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्रमुखता दी गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का इस संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ भी भारत जोड़ा गया है, जिससे समारोह की पहचान भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर वर्मा हमें ये भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी में तैयार दस्तावेजों में भी भारत का उल्लेख किया गया है। यह पहल देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। श्रोताओं, हम आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर 1983 में इसका नाम रखा गया है। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने

युद्ध जीते। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। श्रोताओं, हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 7वीं बार हमारी संस्कार धानी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इससे पहले 6 बार माननीय राष्ट्रपति जी हमारे जबलपुर आ चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 अक्टूबर 1948 को शहर आए थे। उन्होंने शहीद स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी। हालांकि जब वे जबलपुर आए थे तब राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, लेकिन उनका नाम पहले राष्ट्रपति के लिए तय हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार शहर आए। पहली बार 1 मार्च 1958 को आए थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 फरवरी 1965 को वे जब नागपुर जा रहे थे उस दौरान कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। हमारे देश के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1997 में शहर आए थे। वे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम यहाँ ये भी बतलाना चाहेंगे कि देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 27 जून 2014 को जबलपुर आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया था। वे मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, हम यहां ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20 साल बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय मौजूदगी में ये हॉल दमक उठेगा। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3री बार जबलपुर आई हैं। इससे पहले वे 27 सितंबर 2023 को एक दिवसीय दौरे पर आई थीं। तब उन्होंने ट्रिपल ITDM परिसर से डिजिटली हाईकोर्ट की नई बहुमल्या इमारत का शिलान्यास किया था। वे पहली बार 30 अप्रैल 2017 को जबलपुर आई थीं। तब वे झारखंड की राज्यपाल थीं। इस दौरान आपने भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पंचवटी से बंदरकूनी तक के बीच नौका विहार किया था। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल। विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार। विश्वविद्यालय का पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनेगा। इस समारोह में 20 चयनित विजेताओं को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शेष पदक विजेताओं उपाधि धारकों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार द्वारा स्वर्ण पदक और उपाधियां बाद में प्रदान की जाएंगी। वाकई पदक विजेता प्रतिभावान छात्र छात्राएं आतुर हैं जिन्हें आज पदक और उपलब्धियां मिलेंगी। माना कि ये शहर पत्थरों का है, माना कि ये शहर पत्थरों का है, मगर बाशिंदों के दिल तो धड़कते होंगे। कलकल करती माँ नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जावाली की नगरी, आचार्य विनोबा की संस्कार धानी जबलपुर, जिसने कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और धार्मिक क्षेत्र के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान, मनीषी, आचार्य, कवि, साहित्यकार, संगीतकार दुनिया को प्रदान किए हैं।
इसी संस्कार धानी में आज रानी दुर्गवती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत

समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाना वाकई गौरव की बात है। जीवन में अद्भुत संसार के लिए त्याग श्रम की उड़ान बहुत आवश्यक होती है। शेष वक्त की पाबंदी, लगन और शौक कामयाबी दिलाते हैं। वाकई स्वर्ण पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत की उड़ान पर सफलता प्राप्त की है, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ, पीछे मत देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में, बात बनती है गर दिल में हो इरादे अटल। कुछ ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलते ये पदक विजेता और अपने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कुछ नया कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख NAAC ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान और भिन्न भिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ से तालीम लेने वाले छात्र छात्राएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने शुरू में श्रोताओं बात की कि भारत शब्द जोड़ा गया, और जब भारत की बात आती है तो हमें हमारा मन ये कहने को अग्रसर होता है, प्रफुल्लित होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक आह्लाददायक अनुभूति और अपनेपन से भरा एक एहसास है। इसके वनों के पत्तों की मर्मर ध्वनि, पक्षियों का

0: है, नदियों का जल जैसे अमृत है, ऐसी अतुलित संपदा से परिपूर्ण अपने भारत को हम शत शत नमन करते हैं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि 36वें दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने वाले हैं।

ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। तब तक सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: जी हां श्रोताओं, 36वां दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने जा रहे हैं।
1: ऑनलाइन डिस्कनेक्ट है।

0: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जी हाँ, हम ये बतलाना चाहेंगे कि जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। आरडीवीवी की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। श्रोताओ, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। 1924 पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1964 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आरसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है।
1: अपन को भी एक माइक मिलना चाहिए।

आप हैं विविध भारती भोपाल के साथ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण।

बड़ा हर्ष का विषय है कि दीक्षांत यात्रा प्रेक्षागृह में दाखिल हो चुकी है, आ चुकी है। प्रेक्षागृह हॉल चमक रहा है, दमक रहा है। दीर्घा पंक्ति में मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर सारे बैठे हुए हैं ड्रेस कोड के साथ। वे छात्र छात्राएं आतुर हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और देखिए करतल ध्वनि से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया जा रहा है और ये हाल इस गौरवमयी उनकी उपस्थिति का बन रहा है साक्षी।

आदरणीय राष्ट्रपति जी, कुलाधिपति जी, मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।

0: देवी की आराधना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
1: माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
2: अनुमति है।
1: माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
3: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट

0: अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायक गण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपतिगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी का जो दुर्गा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर संचालित है, 24 जून को 462वां बलिदान दिवस है। मैं रानी दुर्गावती जी के अद्भुत शौर्य पराक्रम का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। 27 जुलाई 2024 का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास का एक स्वर्ण दिन लिखा गया, जिस दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार नेक द्वारा विश्वविद्यालय को एक ग्रेड प्रदान किया गया, जो कि A+ से केवल 0.04 दूर रहा, अन्यथा A+ ग्रेड प्राप्त होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें प्रमुख रूप से बांस से विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, हस्तशिल्प, शिल्पकला, इंटीरियर डिजाइन, मूर्ति निर्माण, सिलाई प्रशिक्षण, फैब्रिक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग की कार्यशालाएं, रोजगार मेला आदि आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्रालय राज्य भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित डिजाइन इनोवेशन सेंटर को अब तक 10 करोड़ की ग्रांट मिल चुकी है व 6 पेटेंट प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर के से भी प्रदान किया गया, जिसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान का नोडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसकी कार्यशालाएं आयोजित करना और पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालय के टीम के हाथ में है। वैदिक गणित के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं अन्य संस्थान सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों से विश्वविद्यालय द्वारा MOU किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में 2024-25 से लगातार आरंभ किए गए। BTech, कंप्यूटर, BSc, BCom के अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किए गए और इन पाठ्यक्रमों के कारण 2024-25 में विश्वविद्यालय में प्रवेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इन दो वर्षों में 2023 की तुलना में लगभग 100% बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी हो गई विद्यार्थियों की संख्या। विश्वविद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ विश्वास विश्वविद्यालय का बढ़ता हुआ गौरव है। हमें विश्वास है कि 2026-27 के प्रवेश में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। 2024 में हमने कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इसमें हमने कुछ परिणाम जिस दिन सुबह परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे कुछ परिणाम 2025 में परीक्षा समाप्ति के दिन शाम को 3 दिन में और 5 दिन में घोषित कर दिए और आने वाले वर्षों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 28 विषय की परीक्षा में 11 विषय के परिणाम परीक्षा के दिन शाम को हमने घोषित कर दिए और 17 विषय के परिणाम दूसरे दिन जारी कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 28 घंटे में विश्वविद्यालय ने 28 परिणाम जारी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है विश्वविद्यालय के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रवेश फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, फीस जमा करना, परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में हम उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑनलाइन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान भारती द्वारा महाकौशल मेले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टॉल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि का विषय है। युवा कार्यरत अतिथि विद्वानों की सक्रियता से आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियां, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अध्ययन अध्यापन के अनुरूप वातावरण निर्माण के द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय अतिथियों की उपस्थिति में हम यह घोषणा करते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के 142 छात्र छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 179 PhD धारकों को और 3 डीलिट शोधार्थियों को 1 DSc और 1 मानद उपाधि आज दी जा रही है। विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में एक विशेष बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है, जो 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। समारोह से जुड़ी लगभग सभी आधिकारिक सामग्री इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। डिजिटल डिग्रियां, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में सब में भारत का शब्द का उपयोग किया गया, इंडिया शब्द का उपयोग हटाया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के नाम के साथ भी भारत शब्द जोड़ा गया है, जिससे समारोह की समग्र पहचान भारतीयता, राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ाई देती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और आप सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और उपस्थित छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: माननीय कुलगुरु जी से सादर अनुरोध है कि माननीय भारत के राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।

0: प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतीक चिन्ह लेते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है राज्यपाल कुलाधिपति माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को।
1: गौरव की प्रतीक जी की अनुमति से मैं डॉक्टर रविशंकर सोनवाल, कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूँ। माननीय कुलगुरु जी, कृपया कला संकाय के अंतर्गत श्री विजय दत्त श्रीधर को डीएड उपाधि एवं वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को उपाधि, शोधार्थियों को शोध उपाधि एवं वर्ष 2021 एवं 21-22 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।
2: माननीय कुलाधिपति जी, कृपया अनुमति प्रदान करें।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न संकायों में एक से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वर्ण पदक वर्ष 2021, दीपांशु मिश्रा MA हिंदी साहित्य परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। कल्याणी त्रिपाठी MA संस्कृत महिला परीक्षार्थी। तालियां बजती रहे। कल्याणी त्रिपाठी MA संस्कृत महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। ऋषिका तिवारी MA दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। शिवानी साहू BA हिंदी परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। नितिन तिवारी MA इतिहास 2 स्वर्ण पदक।

पलक सोनी एमएससी भौतिक शास्त्र महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

श्री शिवेंद्र सिंह एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। देवेंद्र मिश्रा बीए दर्शन शास्त्र परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

मुक्ता मिश्रा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। सैजली नायक एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

0: प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हमको आशीर्वचन प्रदान करें।
1: रानी दुर्गावती की नगरी माँ नर्मदा की, जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसके कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है, इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है हमारे बीच। दुनिया के सबसे बड़े लोग

लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका

सुदामा की ये प्रदेश की एक विशेष भांति रही है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कुलपति गुरु आश्रम को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे में हमने देश के अंदर मध्यप्रदेश के सभी कुलपतियों के नाम कुलगुरु पर रखने का निर्णय किया, इसलिए इस रानी दुर्गावती के कुलगुरु माननीय राजेश जी सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज़्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा, ये आज सौभाग्य की बात। दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आज़ादी के लिए हमारी इस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता बुद्धि योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का गौरवशाली अतीत लेके चलती और उससे आगे बढ़ करके एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सिंह सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती, एक तीर आता तो उनकी आंखें निकाल के ले जाता, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता, ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूँ, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया उसको आज्ञा का पालन करो और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्यप्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही और हमारे अपने सरकार के माध्यम से भी हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉपआउट भी 0 की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। कई प्रकार से शासन की व्यवस्थाओं में ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया।

0: इसके माध्यम से एग्रीकल्चर के अलग अलग संकायों के बलबूते पर हमारे विश्वविद्यालयों में भी, चूंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, ऐसे में कृषि से रुचि बढ़े लोगों की, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब सेक्टर में बढ़ाते हुए तमाम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का उपक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सामने बैठी हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री हमारी बनर्जी मैडम को भी आपको भी प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें।
2: सभी को नमस्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद श्री विधायक गण, कुलगुरु राजेश वर्मा जी, अन्य कुलगुरु भी यहाँ उपस्थित है, सभी माता जयश्री बनर्जी, जो यह मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी रहे उनकी सास है, कई बार उनको मिलना हुआ, आज यहाँ उपस्थित है, उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माँ नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं संग मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष, सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूं। इस पावन अवसर पर गौड़बाना की सौरवशाली धरा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी की दुर्गावती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनका जीवन जनजातीय अस्मिता, प्रजा कल्याण, नारी शक्ति के त्याग, पराक्रम, नेतृत्व क्षमता और आत्मगौरव का अमर गान है, जो आज भी जनजातीय समुदाय सहित देश की प्रत्येक बेटी और युवा पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र है। कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि देश की सर्वोच्च और सर्वाधिक जिम्मेदारी का पालन कर रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जनजातीय समाज की उस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है, जिसका उज्जवल प्रतीक रानी दुर्गावती है। इसी प्रेरणादायी परंपरा से साक्षी दीक्षांत समारोह में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आपकी डिग्री भारत के भविष्य के निर्माण, नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति है। आज जब आप जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती के शौर्य और लोक कल्याण के आदर्शों और जीवन संघर्ष में प्रेरणा प्राप्त करें। मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत से ट्राइबल बच्चे हैं, जब भी हम आए अंदर तो कई जनजातीय जननायकों का फोटो भी हमने देखा। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य

0: किए और जनजाति समाज के लिए गौरवान है। मैं ये समझना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे, आज दीक्षांत समारोह आपका हुआ, कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर जनजाति समाज के कई ऐसे काम है जो हमको करना है। हर एक यूनिवर्सिटी, जब मैं राज्यपाल पद पे आया तभी हर एक यूनिवर्सिटी को मैंने बोला कि आपको पांच पांच गांव गोद लेना है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सीधे गांव में जाए और परिस्थिति देखे कि जनजाति समाज का क्या क्या करना जरूरी है और उसमें आदत बन जाए कि समाज को हमको कुछ करना है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजना है, मगर पीएम जनमन योजना अति पछात के लिए, बेगा, भारिया और सहारिया, करीब करीब मध्य प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा है, उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 रुपये का प्रावधान किया था। 9 जितने डिपार्टमेंट का काम उसमें हो रहा था। कई ऐसे सहारिया, बेगा, भारिया के स्थान पे मैं खुद गया हूं कि सरकार की जो कामगिरी चल रही है वो ठीक से चल रही है कि नहीं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी खुद की यह योजना है, क्योंकि आज तक अति पछात के लिए कोई योजना नहीं बनी। बहुत सालों से मैं ये राजनीतिक जीवन में हूं, मगर पहली बार मैंने ऐसे अति गरीब जो है, अति गरीब आदिवासी है, उनके लिए भी एक योजना बनी और 3 साल चली, बहुत अच्छे काम हुए हैं। धरती आबा ग्राम विकास योजना, केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ आप पढ़े लिखे हैं, आपके गांव में, मैंने सरकार को भी बोला कि हर तहसील का ऐसा मैप बनाओ कि कौन से तहसील में जीवन जरियत कौन सी चीज करना अभी भी बाकी है। वो मैप बनाएंगे तो हर एक तहसील को और हर एक गरीब आदिवासी को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को आग्रह करूंगा कि आपने अच्छी तरह, आपका माँ बाप ने संस्कार दिया, पालन पोषण किया, ये यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छी तरह पढ़ाकर आज डिग्री भी दिए, अच्छी प्लेसमेंट भी मिले, मगर समाज को कभी नहीं भूले, राष्ट्र को कभी नहीं भूले, इतना ध्यान रखते मेरे को अपेक्षा है कि आप उसमें सफल होंगे। आज जब जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती ने जो हमको प्रेरणा दी है उसी तरह जीने का प्रयत्न करें। आइए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों, नारी सशक्तिकरण, विकसित भारत के संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।
1: मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें।

इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थी, यहाँ जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। पिछले वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरंगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से दो दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां

बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजनों, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला माँ नर्मदा के जल से संप्रसित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा, हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जब सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं, 76 इयर्स हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे, इसीलिए। लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत, बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से, अच्छी बात। लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद, क्योंकि उसी समाज से हम यहाँ तक आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। जो भी बेटियाँ, जो भी बेटाएं कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा, समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मानते, नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजाति होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन करे। और उनको भी, जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज को बार बार दोहराती हूं, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे। वो कहते थे, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जगता राष्ट्र। मैं समझती हूँ एक राष्ट्रपति पुरुष का, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, ये सभी प्रदेश का, सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में, उसी प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना, शायद सर्वांगीण विकास होगा। और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम।
इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीणों एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रमों चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातियों युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बनी रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज है, क्योंकि असरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातीय समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए। जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गर्व के भाव को संचारित करें। ये हम लोग का भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं और बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहाँ पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 65% युवा है, जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग है। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बोल देना होगा जो देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है।

0: हम सबकी ऐसे सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के सभी विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारी भाषा, रहन सहन, जीवन शैली सब तेज गति से बदल रही, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ मूल्य शाश्वत है जो हमें सदैव शक्ति प्रदान करते। मेरा मानना है कि आप जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्य हर युगों की मूल चेतना का हिस्सा रहे। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से सामना कर सकते हैं, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप केवल अपने परिवार या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माता है। आपके कंधों पे देश का भविष्य निर्भर कर रहे हैं। आपके ज्ञान, ऊर्जा और संकल्प से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने आसपास के वंचित और ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करें, उन्हें सशक्त बनाएं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। अपने कर्तव्य के साथ यहाँ से जाने के बाद आप एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य को अवहेला करके समाज सेवा नहीं, कर्तव्य के साथ समाज सेवा, दोनों काम को निभाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो सामर्थ्य आप में है, वो जोश आप में है। देश के लिए काम करना आपका कर्तव्य में है, आपका शरीर में है, आपका धमनी में। आज देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाएंगे, नवाचार कीजिए, शोध कीजिए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। परंतु इस प्रगति के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जैव विविधता की रक्षा तथा सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता अपनी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आज जिस गर्मी, जिस तरह के वृष्टि बहुल, अनावृष्टि के हम झेल रहे हैं, उसका कारण पर्यावरण शायद इतना सुरक्षित नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी संस्थान, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: राष्ट्रगीत के लिए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।

0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक उद्बोधन, कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल के शुभाशीष और राष्ट्रगान के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का यह ऐतिहासिक 36वां दीक्षांत समारोह अब संपन्न हो चुका है। दीक्षांत यात्रा उसी गरिमा के साथ हॉल से वापस लौट रही है। चलते चलते हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि हमारी क्रिएटिव टीम में थे कार्यक्रम अधिशासी श्री प्रशांत परमार, सहायक अभियंता श्री सुनील पंडित, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नीरज श्रीवास्तव, रोहित कुमार कोड़ोपे, वरिष्ठ तकनीशियन श्री सूरज मेश्राम और मार्गदर्शन रहा आकाशवाणी के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वलीउल्लाह खां सर का, कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी का, कार्यक्रम अधिशासी श्री विपम कुमार यादव का। अब मैं रविन्द्र दुबे आपको ले चलता हूँ अपने स्टूडियो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं आ अब लौट चलें फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और जसविंदर नरूला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत जब वी मेट फिल्म से है। उस्ताद राशिद खान ने इस गीत को गाया है, लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का।

केसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इसे गाया था अरिजीत सिंह और असीस कौर ने। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अरिजीत सिंह की है आवाज में, फिल्म का नाम है

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं विनोद कुमार सेन और साथियों को गाया विकास गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाय लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी शिवपुरी से ही लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं अरुण दाते। पहले सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अरुण दाते के गाए भजन। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: चली नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

कार्यक्रम का पहला गीत आंधी फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुजर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

0: सुनाना जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुमारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं, वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दुर्गागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा,
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनः परीक्षा में देश भर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्राम पंचायत खोड में खाद्यान्न वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर, POS मशीन के संचालन और खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग

0: विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: to www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है NTA के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि लेबनान में

0: सारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कलीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 बजे प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों आज है जून माह का तीसरा रविवार और आज हम सभी फादर्स डे यानी पितृ दिवस मना रहे हैं। ये पिताओं के सम्मान में मनाया जाने वाला एक पर्व है। बल्कि पितृ दिवस की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में पिता धर्म तथा पुरुषों द्वारा परवरिश का सम्मान करने के लिए हुई। सबसे पहले पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमोंट में 5 जुलाई वर्ष 1908 में इसे मनाया गया था। ग्रेस गोल्डन क्लिंटन द्वारा प्रथम फादर्स डे चर्च आज भी सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के नाम से फेयरमोंट में मौजूद है। बल्कि पिता एक ऐसा शब्द

जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले अपने पिता की उंगली थामता है और एक नन्हा सा बच्चा पिता की उंगली थामे सुकून पाता है। बल साथियों, पिता घर का वो हिस्सा होते हैं।

मेरे साथ हों और पिता ही दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी अधिक तरक्की करे, उनसे भी अधिक नाम कमाए। बल्कि तो जीवन को दिशा देने वाले पिता के लिए एक खास दिन मनाना हमारे जीवन में दिए गए उनके योगदान के समतुल्य तो नहीं हो सकता, पर फादर्स डे के रूप में हमें वो मौका जरूर दिया है जब हम उनके प्यार, मदद और अपनेपन को महसूस कर उनसे ये कह सकें कि मैं आज जो भी हूँ या आगे जो भी बनूंगा वो आपके बिना संभव नहीं था। तो चलिए बाल साथियों, देर किस बात की, जाइए अपने पिता के पास और पैर छूकर अपने आप को धन्य कीजिए और जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। और बाल साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन है तो आप यही कह उठे।

साथियों, अभी आपने सुना मैं ऐसा ही हूँ फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बेबी अपर्णा की। समीर के गीत को संगीत से सवारा था हिमेश रेशमिया ने। और बन मित्रों, आज हम सभी योग दिवस भी मना रहे हैं। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम सब अपने आप से ही अलग से हो गए हैं और योग हमें पुनः अपने आप से जोड़ने में मदद करता है। बस साथियों, योग मन शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है और ये दिवस इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए ही मनाया जाता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने सितंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान ये सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाना चाहिए क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन है। बल्कि तो 21 जून वर्ष 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे सभी ने उत्साह के साथ मनाया। न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया। हम आपको बता दें बाल मित्रों कि योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। बल्कि तो हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक वीरांगना ऐसी भी है जिन्हें उनके पराक्रम के लिए याद किया जाता है और वे हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बाल साथियों हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपनी

0: राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति प्राप्त की थी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध भी किए। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी। बंधु, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर वर्ष 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही आपका नाम दुर्गावती रखा गया। ललितो, रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का शौक था। वर्ष 1542 में आपका विवाह दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठा कर खुद राज्य की शासिका बन गयी। 50 से भी अधिक युद्ध उन्होंने लड़े। इतना ही नहीं बलमित्रो, रानी ने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके। अकबर रानी के राज्य को हड़पना चाहता था। उसने योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करने की ठानी और वर्ष 1564 में दोबारा रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार हो लड़ाई के लिए आई। लड़ते लड़ते रानी घायल हो गई और 24 जून को लड़ाई के दौरान ही अपने आप को सुरक्षित न देख उन्होंने अपनी ही तलवार अपने पेट में घुसा ली और वीर गति प्राप्त की। और इस तरह इस वीरांगना ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बाल साथियों, ऐसी थी महान वीरांगना रानी दुर्गावती। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों, अब आपको लिए चलते हैं नन्हे अंकुर क्रम की ओर। बाल मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारी सी बालिका आई हुई है जिसके हाथ में हम देख रहे हैं एक गिटार है। चलिए जानते हैं कि ये गिटार बजाती हैं तो क्या साथ में गाती भी हैं। चलिए करते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम आर्या खरे है।
0: आर्या खरे। आर्या, हम आपके हाथ में गिटार देख रहे हैं, तो आप गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आपको गिटार बजाने का शौक कैसे हुआ?
1: जी, मैं एक मूवी देख रही थी कि उसमें मैंने देखा, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो मेरे घर में एक गिटार रखा हुआ था जो कि 2 साल से पैक था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे निकाल के यूज करूं। फिर मैंने यूट्यूब से निकाला, उसके डिटेल्स निकाले, मैंने बेसिक मैंने यूट्यूब से सीखा, उसके बाद आज मैं यहाँ तक आई हूँ।
0: मतलब आपने, आपको इंस्पिरेशन मिली, यूट्यूब से आपने निकाला और वहीं से आपका ये सफर शुरू हुआ।
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल। तो आज आप हमारे बाल साथियों को क्या सुनाएंगी?
1: जी, मैं एक भजन सुनाऊंगी गिटार पे, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
0: चलिए सुनाइए।

0: बहुत ही प्यारा भजन आपने हमारे बाल साथियों को सुनाया। अच्छा आर्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: जी मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: आप 8th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, आपको और किस किस चीज का शौक है, गाने के अलावा या गिटार बजाने के अलावा और कौन कौन से शौक आप रखती हैं?
1: जी मुझे डांस का भी शौक है और मैं पेंटिंग भी करती हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आर्या, ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी?
1: जी मैं बड़े होकर पहले UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आगे सोचूंगी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि आप खूब आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। अच्छा आर्या, आप हमारे बाल साथियों को कुछ और सुनाना चाहेंगी?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: क्या सुनाएंगी?
1: जी मैं एक भजन और सुनाना चाहूंगी।
0: चलिए सुनाइए।
1: अक्षुता

0: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत ही प्यारा भजन आपने आर्या सुनाया। अच्छा आर्या, ये बताइए आपके परिवार में क्या और कोई भी गिटार बजाता है?
1: जी नहीं, मैंने सिर्फ फोन से एक इंस्पिरेशन मुझे मिला था उसके बाद।
0: अच्छा, मतलब आप स्वयं से ही आपने शुरुआत की और आप स्वयं ही गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आर्या, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपने हमको इतने प्यारे भजन सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
1: जी शुक्रिया।
0: बने तो हम सभी आगामी 26 जून को मुहर्रम पर्व मनाएंगे। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है जिसमें युद्ध और हिंसा पूरी तरह से वर्जित है। ये पर्व शांति, संयम और न्याय की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है। ये दिन बने तो सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की शहादत के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि इस दिन हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर की कुर्बानी को भी याद किया जाता है जो मात्र 6 महीने के थे। मैंने तो करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार ने सच और इंसाफ के लिए अपनी जान इसी दिन कुर्बान की थी। करबला में शहादत पाने वाले 6 महीने के अली असगर की कहानी भी कुछ ऐसी जो आंखों में आंसू ला दे। इस्लामी वलसाथी मुहर्रम को उत्सव की तरह न मनाकर शोक और मातम के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, दान करते हैं और धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं। लोग इमाम हुसैन की याद में काले कपड़े पहनते हैं और ताजिए निकालते हैं।

0: भारत जैसे सांप्रदायिक देश में बने के मुहर्रम को शांति और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है।
1: और बाल साथियों, अब बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर। बने तो कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा बचपन होता है। न कोई जिम्मेदारी का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता, सिर्फ खुद से मतलब। ऐसा मस्त समय जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आता और इन सब मस्ती के पल का साक्षी होता है हमारा विद्यालय। हमारे व्यक्तित्व को बनाने और निखारने में स्कूल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और बाल साथियों, विद्यालय की परंपरा कोई नई नहीं है, सदियों से हमारा देश ज्ञान का स्रोत रहा है। हमारे यहाँ तो आदिकाल से ही गुरुकुल परंपरा रही है। राजा महाराजा भी अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाते थे। यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे, ये हम सब भी जानते हैं। बने तो नए शिक्षण सत्र का मतलब है सब कुछ नया नया। अब आप भी अपना नया बैग, नई यूनिफॉर्म मंगा कर तैयार करवा लें, अपनी किताबें और कॉपियां भी मंगाकर उन्हें अच्छे से कवर करके अपना नाम भी लिखकर तैयार कर लें। अपने जूते, टाई, बेल्ट और लंच बॉक्स भी निकाल कर रख लें, क्योंकि वो भी तो गर्मी की छुट्टियों में काफी समय से अलमारी में बंद होंगे, उन्हें भी धोकर पोंछकर तैयार कर लें। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण आपके जागने और सोने का रूटीन भी बदल गया होगा, तो अब से रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। इसी चर्चा के साथ बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपने मधुर

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनः परीक्षा में 21,00,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थियों के लिए 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। और 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज सम्पन्न हो रहा है। यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 और 6:15 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6:00। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:35 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। लोक संगीत में सुनवा रहे हैं विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत। पहले सुनते हैं विकास गीत।

अभी आप सुन रहे थे मूक संगीत, विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए, आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत, कलाकार अरुण दाते। पहले सुनते हैं ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे अरुण दाते। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण।

जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज़।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: द्युमत्सेन से चलाई थी।
1: हाँ हाँ, राजकुमार विजय श्रवा के लिए ना।
0: हाँ, और राजकुमारी के चित्र भी भेजे थे ना।
1: हाँ हाँ, याद है।
0: प्रत्युत्तर में सम्राट ने कहलवाया था कि यद्यपि राजकुमार विजय श्रवा की राजलक्ष्मी बनने के लिए भारत की अनेक राजकुमारियां प्रयत्नशील हैं, किंतु राजकुमारी चंद्रहासिनी की रूप राशि पर स्वयं सम्राट द्युमत्सेन और साम्राज्ञी दोनों ही प्रसन्न हैं।
1: संतोष हुआ सुनकर।
0: और दोनों ने गुप्त रूप से चंद्रहासिनी को अपनी पुत्रवधु बना लेना स्वीकार भी कर लिया था, किंतु
1: किंतु क्या महाराज?
0: उसके पश्चात जो दूसरा पत्र सम्राट ने भेजा है अपने विशेष दूत के द्वारा, उसमें राजकुमार विजय शर्मा के एकाएक कहीं चले जाने की चर्चा है।
1: अरे,
0: रूट कर किसी अज्ञात स्थान को।
1: इस संबंध को लेकर अप्रसन्नता के कारण तो नहीं?
0: जो भी हो, परंतु अब आगे सुनो। यमुना किनारे हमारे राजोद्यान में एक महान दुतिवान युवक आकर निवास कर रहा है।
1: कब से?
0: अभी कुछ ही दिनों से। वो अपने आप को धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र बताता है, परंतु मेरा अनुमान है कि ये वही राजकुमार विजय श्रवा ही हैं।
1: अच्छा,
0: इसीलिए मैंने उसे राजोद्यान में रहने की अनुमति भी दे दी है। महारानी, मैंने स्वयं उस युवक को विशेष रथ पर घूमते हुए देखा तो लगा निश्चित ही उसका रूप, उसके लक्षण चक्रवर्ती सम्राट जैसे हैं।
1: तब तो निश्चय ही वही होंगे।
0: मेरा भी यही विचार है। महामाते ओंकार देव ने उस युवक को राजोद्यान में ठहराए जाने पर आपत्ति की थी।
1: अच्छा, क्यों भला?
0: एक बार उनके पुत्र को राजोद्यान में जाने से वंचित कर दिया था ना, संभवतः इसी की टीस होगी। अभी भी वो मेरे निर्णय को दबे छुपे स्वरों में अनुचित ही कह रहे हैं।
1: महाराज, ओंकार देव के लक्षण अच्छे नहीं हैं। वे निरंतर प्रयास करते आए हैं कि राजकुमारी चंद्रहासिनी के रूप गुण के अनुकूल कोई राजकुमार ना मिले तो उन्हें उसको अपने पुत्र वधु बनाने का अवसर मिल जाए। ठीक है कि उनका इकलौता पुत्र मृत्युंजय रूप गुण चरित्र और योग्यता में राजवंशियों से कम नहीं है। छोटे मोटे राजवंश वाले उसके साथ संबंध भी कर सकते हैं, किंतु हमारी चंद्रहासिनी, जिसे सम्राट ने अपनी पुत्रवधु के लिए पसंद किया हो, उसका विवाह मैं अमात के पुत्र से कर दूं? कभी नहीं।
0: मैंने तो ये भी पता लगा लिया है कि राजकुमारी किसी भी मूल्य पर अपने भृत्य के बेटे के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने में असमर्थ है, भले ही उसे आजीवन कुंवारी रहना पड़े।
1: और क्या, कल तक राजकुमारी को देखकर अभिवादन करने के लिए खड़ा रहने वाला कोई उसका पति बनेगा तो भला चंद्रहासिनी कैसे संतुष्ट होगी? महाराज, कहां सम्राट का पुत्र विजयश्रवा और कहां महामात्र का पुत्र मृत्युंजय? भगवान करे वो परदेशी युवक धारा नगरी के सम्राट का पुत्र सिद्ध हो और चंद्रहासिनी भारत की राज राजेश्वरी बने। कौन है वहां? ओ चंद्रहासिनी, चुप कर हमारी बातें सुन रही थी, भाग गई।
2: तो श्रीमान, आप हमारी ही नगरी में हैं और हमें पता ही नहीं। कितनी बड़ी भूल की मैंने, जो दोबारा राजोद्यान नहीं गई। राजकुमार विजय श्रवा, आपकी तस्वीर से यूं कब तक बातें करती रहूंगी? अब तो मुझ पर कृपा करिए। जानते हैं सबसे पहले हमें आपके बारे में किसने बताया था? भुवन मोहिनी ने। हाँ, पिता महाराज के दरबार में जब भुवन मोहिनी आई तो उन्होंने उसे मुझे संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया। तब से जब भी वो आपका वर्णन करती, आपसे मिलने के लिए मन बेचैन हो उठता।

0: एक दिन मैंने उससे कह दिया किस बेपीर पुरुष की तुम बातें करती हो सखी, भला तुम्हारा देव दुर्लभ स्वरूप जब उस पत्थर हृदय को नहीं पिघला सका तब मैं कैसे समझूं कि वो मुझे अपनी गले का हार बनाएगा।
1: तो क्या मैं एक क्षुद्र नर्तकी राजकुमारी चंद्रहासिनी से अधिक सुंदर हूँ?
0: अवश्य ही, विधिना ने अपने हाथों तुम्हारे अंग अंग को कुशल कलाकार की भांति गढ़कर बनाया है। किंतु सच कहो सखी, क्या वो तुम जैसी सुंदरी को भी प्यार नहीं करते थे?
1: राजकुमारी, कहीं भारत का भावी सम्राट एक नर्तकी की रूप वारुणी पर विस्मय विमुग्ध हो सकता है?
0: तुम झूठ बोलती हो। तुम्हारे अंग सौष्ठव में जो मादकता भरा आकर्षण है उसने अवश्य ही राजकुमार विजयश्रवा को चूर चूर कर डाला होगा। वास्तव में तुम मुझसे अपने प्रेम रहस्य को छिपा रही हो।
1: छिपा नहीं रही हूँ राजकुमारी, उन्हें भला राजकुमारियों की सौंदर्य शिखा पर अपना सर्वस्व भस्म करने के आगे मेरे रूप को देखने का अवकाश था? छी, मेरा अपवित्र दूषित और धन की लिप्सा पर बिकने वाला रूप भला राजराजेश्वर के बेटे को कैसे आकर्षित कर सकता था?
0: भुवन मोहिनी चाहे जितना कहती राजकुमार, परंतु मेरा मन स्वीकार ना करता कि वो आपके हृदय में किंचित मात्र भी स्थान न बना पाई होगी। फिर भी अब आप हमारे पास आ गए हैं तो हम तो यही मानेंगे कि आप हमारे लिए आए हैं, भुवन मोहिनी चाहे जो सोचे।
1: हे प्रभु, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। मैं तो राजकुमार विजयश्रवा के मार्ग से हट गई थी, बला थी सही, तो फिर क्यों उन्हें यहां मेरे पास आपने ला दिया? परंतु राजकुमार यहां छिपकर आए हैं, हो सकता है वो अपनी भावी पत्नी राजकुमारी चंद्रहासिनी को देखने आए हों। हे प्रभु, क्या इतना ही दुख मेरे लिए पर्याप्त नहीं था कि ये और दे दिया? मैं कैसे देख पाऊंगी अपने राजकुमार को किसी दूसरे के प्रति आसक्त?
2: राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय।
0: सखी भुवन मोहिनी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
1: क्यों?
0: देखो, राजोद्यान के मार्ग में प्रजा हमारी जय जयकार कर रही है, जिसकी तुम भी भागीदार हो। मैं तुम्हारी हृदय से आभारी हूँ सखी, तुमने मुझे संगीत कला में निपुण कर दिया। बस आज माँ सरस्वती की कृपा से दीपक रागनी सिद्ध हो जाए।
1: अवश्य होगा राजकुमारी, आपने कई दिवसों से एक उपासिका की भांति कठिन अभ्यास जो किया है, गंभीर साधना, आपका श्रम व्यर्थ कदापि नहीं जाएगा।
0: मैं रोमांचित हो सके इसलिए भी क्योंकि इसी राजोद्यान में संभवतः मेरे राजकुमार भी हैं। आज उन्हें साक्षात देख पाने की प्रतीक्षित अभिलाषा भी पूर्ण होगी।
1: मेरी सखी राजकुमारी, दो दो सुखों का वर्णन करने वाली है, दीपक रागिनी सिद्ध करने का और अपने भावी पति के दर्शन पाने का, और मैं न जाने कितनी शंकाओं कुशंकाओं से आच्छादित मन डूबा जा रहा है। क्या वो राजकुमार ही होंगे? यदि वो राजकुमार ही होंगे तो वो यहां क्यों आए हैं, मेरे लिए? या मेरी सखी राजकुमारी के लिए? दोनों ही परिस्थितियों में तो मुझे घुटना ही होगा। रे मन, नियति के थपेड़ों को सहने के लिए तैयार रहे।

0: जब जब भी उद्यान में हलचल होती है मन धड़क उठता है कि कहीं वो नर्तकी न प्रकट हो जाए।
1: अरण्यक।
0: हाँ राजकुमार।
2: राज्योद्यान में आज इतनी हलचल क्यों है?
0: अब क्या बताऊं मित्र, शांति रूपी हमारी खीर में निब्बू निचोड़ने का काम पता चला है कि राजकुमारी कर रही है।
2: राजकुमारी?
0: हाँ मित्र, चंद्रहासिनी देवी यहाँ दीपक रागनी सिद्ध करने आ रही हैं।
2: दीपक रागनी सिद्ध करने आ रही हैं?
0: अब सुना तो यही है।
2: इसका तात्पर्य ये कि भुवन मोहिनी भी इसमें हो सकती है।
0: कदापि नहीं मित्र, कदापि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भला यहां कैसे हो सकती हैं? अरे वो देखिए, राजकुमारी का रथ उद्यान में प्रवेश कर रहा है।
3: ओ मेरे हृदय, संयमित रह। राजकुमार विजय श्रवा पर राजकुमारी का अधिकार है, तेरा नहीं। देखना राजकुमारी कितनी व्याकुलता से पूरे परिसर में अपने राजकुमार को ढूंढ रही है।
4: ओ सखी, सखी।
5: हाँ राजकुमारी।
4: वो देखो, वो कौन है?
5: कहाँ?
4: ओ सखी, वो देखो, वो उधर लता मंडप के पास किसी के साथ खड़े हुए, वो कौन है? क्या तुम उन्हें जानती हो?
5: वो
3: मैं कैसे बताऊं सखी से कि वो मेरे स्वामी ही है। कितने दिनों बाद दर्शन हुए हैं तुम्हारे प्रियवर।
4: निश्चित ही ये वही है। तस्वीर से कितने गुणा अधिक मोहक है आप मेरे राजकुमार। मैं कृतार्थ हुई आपके दर्शन पाकर। आज तक मैं जिसके चित्र की पूजा करते हुए अघाते नहीं थी, जन्म जन्मांतर से मेरी प्रेम पूजा को ग्रहण करने वाले वही वरदायक देवता, मानो मेरी दृष्टि के सामने खड़े होकर पुष्प चयन कर रहे हो।
3: अरे वो रहा स्वामी का रथ जिस पर बिठाकर उन्होंने मुझे विदा करते हुए कहा था,
6: जाओ प्रेत में प्रतीक्षा करना, एक दिन तुम्हारा राजकुमार यही रथ लेकर तुम्हें बुलाने अवश्य आएगा।
3: तो क्या वो दिन आ चुका है? क्या इसीलिए राजकुमार वही रथ लेकर आ उपस्थित हुए हैं? क्या सचमुच विजय श्रवा मुझे नहीं भुला सके? या कहीं मुझे भूलकर अपनी भावी जीवन संगनी का दर्शन करने आए हैं? ओह, इस भेद का पता कैसे चले? यदि मैं उनके दृष्टिपथ पर जा खड़ी हूं और वो अपनी महानता भूलकर अनुराग रंजित होठों से प्रियतमी बोलते हुए मेरी ओर बढ़ चले तो तब तो सिद्धि हो जाएगा। परंतु तब सम्राट के राज सिंहासन का महत्व भी खो जाएगा, दूर देश में अब कीर्ति होगी। आह, तुम यहां क्यों आ गए मेरे प्रियतम? तुम्हारा ये काम देव सा अनुपम लावण्य स्वरूप क्या छिपाने पर भी छिप सकेगा? क्या ये विशाल महान रथ स्वयं न सिद्ध कर देगा कि सम्राट के अतिरिक्त इतना मूल्यवान रथ किसी और के पास नहीं है? स्वयं आदित्य सेन महाराज ने आपका चित्र देखा है, उन्हें कैसे बुलावे में डाला जा सकेगा? आज तो आपके दर्शन की प्यासी राजकुमारी स्वयं अपनी चर्म चक्षुओं से विकल होकर आपको देख रही है। क्या वो महारानी कुमुद वल्लभा से आपकी चर्चा नहीं करेंगी? और जैसे ही महाराज को ज्ञात होगा कि आप कोई श्रेष्ठ पुत्र नहीं, सम्राट के उत्तराधिकारी राजकुमार विजय श्रवा हैं, वैसे ही आपकी विराट राजकीय सम्मानों की श्रृंखला आरंभ हो जाएगी। संपूर्ण गोपनीयता प्रकट हो जाएगी प्रिय। तब आप क्या बताएंगे किसी को कि क्यों आप गोपनीय वेश में छिपे?

0: पे हुए थे। राजकुमार, यदि कहीं सम्राट के पास महाराज ने संदेशा भेजा और उन्होंने मेरे निर्वासन की बात बता दी, तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। आपसे यदि अभी मिलूं तो?
1: कितना सुखद है आज का दिवस। चिर दिनों की उपासना के फलस्वरूप मेरे जीवन का देवता स्वयं मेरी द्वार देहरे पर खड़ा होकर अलभ्य दर्शन का वरदान प्रदान कर चुका है। कितनी पावन है आज की पुण्यमय घड़ियां। बस बस माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आज आज वो मेरी गायन में दिव्यत्व भर दे, दिव्यत्व जिसे सुनकर मेरे राजकुमार आह्लादित हों, प्रसन्न।

0: राजकुमारी के गायन में कितनी एकाग्रता है, मानो प्राणों की अनहद रागिनी बिखेर रही है। कितना दिव्य है राजकुमारी का स्वर, और कितना दिव्य है गायन करते हुए उनका ये स्वरूप। मानो समाधिस्थ हो गए हैं उनके गायन से, मानो ज्योति की लक्ष लक्ष किरणें बिखर गई हों, सहस्त्रों दीप सासा जल उठे हों। सारे उद्यान में, नगर में, राजभवन में एक साथ ही प्रकाश की लौ जागृत हो उठी हो।
1: अद्भुत, दिव्य, मानो एक क्षण में अगणित दीप जल उठे हों। संपूर्ण परिसर झिलमिल प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है।

अरे, गायन समाप्त होते ही सारे दीप बुझ गए? तो क्या ये इस गायन का जादू था?

0: निश्चित ही ऐसा चमत्कार भुवन मोहिनी ही कर सकती है। उसके अतिरिक्त और कौन ये विस्मय प्रकट कर सकता है? तो क्या रथारूढ़ होकर वही राज्योद्यान में आई है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि भारत सम्राट का एकाकी पुत्र अपना सर्वस्व समर्पण किए हुए उससे मिलने के लिए यहां आया है? प्रतीत होता है कि रथ वापस जाने को है। अवश्य ही भुवन मोहिनी रथ में पुनः सवार हो गई होगी। जो भी परिणाम हो, मैं रथारूढ़ मूर्ति को देखे बिना रथ को आगे बढ़ने नहीं दूंगा।
1: सारथी, रथ रोको।
2: ओ दिव्य पुरुष, कौन है आप? अरे अरे, आप रथ के ऊपर कैसे चढ़ाए?
1: मैं जानना चाहता हूँ कि इस रथ के यात्री कौन है।
2: आप ऐसा नहीं कर सकते, ये राज परिवार के सदस्य हैं।
1: यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर्दे के पीछे हैं कौन।

0: पहले ही राजकीय आदेश प्राप्त रहते हैं।
1: चलिए आपको क्षमा किया जाता है, मैंने ठीक कहा ना राजकुमारी?
0: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
2: आपने सचमुच ठीक कहा राजकुमारी।
0: सचमुच। सारथी रथ बढ़ाओ।
1: जो आज्ञा राजकुमारी।

संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना भुवन मोहिनी धारावाहिक का तीसरा भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर

वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

पेशी इस घंटे की खास खबरें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयं संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघ संचालक डॉ केशव हेडगेवार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए समर्पित डॉ हेडगेवार का अनुशासित जीवन युवाओं के अनंत काल तक के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मौसम विभाग ने आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर। साथियों, क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। और साथियों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग स्वस्थ और सुखी जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। दोस्तों, योग के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के

वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथियों, योग मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर स्वस्थ, लचीला और ऊर्जावान बनता है। यह अनेक बीमारियों, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी अनेक रोगों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए योग विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, महाविद्यालय, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कराया जाता है। योग विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न आसनों और उनके लाभों की जानकारी देते हैं। इस दिन योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसी परिस्थिति में योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है। इसे किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रूप से कुछ समय योग को देने से व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का संदेश है। योग मानवता को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। हमें भी योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वास्तविक उद्देश्य और महत्व है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है पर चर्चा करने का। साथियों, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आज के आधुनिक युग में बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। उद्योगों, कृषि, परिवहन, शिक्षा और घरेलू कार्यों सहित लगभग हर क्षेत्र में ऊर्जा पर निर्भरता है। बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी विकास के कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए कहा जाता है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। साथियों, ऊर्जा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है। बिजली से घरों में प्रकाश होता है, मशीनें चलती हैं और उद्योगों का संचालन होता है। यदि ऊर्जा उपलब्ध ना हो तो विकास की गति रुक सकती है। इसलिए ऊर्जा का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। साथियों, ऊर्जा का उत्पादन करने में भारी लागत और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नए बिजली संयंत्र स्थापित करना, ईंधन जुटाना और वितरण व्यवस्था विकसित करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। यदि हम ऊर्जा की अनावश्यक खपत को कम करें तो उतनी ही ऊर्जा

0: बचाई जा सकती है जितनी नई ऊर्जा के उत्पादन से प्राप्त होती है। इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा भी उत्पादन के समान ही महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा संरक्षण से आर्थिक बचत होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होता है। साथियों, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे कम बिजली खर्च देते हैं। दिन में प्राकृतिक प्रकाश का अधिक उपयोग करना चाहिए। वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करके सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई काम करके हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। विद्यालय और समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो बड़े स्तर पर ऊर्जा की बचत संभव है। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती ऊर्जा मांग और सीमित संसाधनों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऊर्जा की बचत करके हम न केवल धन और संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऊर्जा का सोच समझकर उपयोग करे और संरक्षण के उपाय अपनाए। वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, एक सार्थक और दूरदर्शी विचार है जो हमें उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय योग का जीवन में महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर।
1: योग विज्ञान का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल, योग कहलाता है। योग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत की युज धातु के धज प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। श्री मद्भागवत गीता में कहा है, योग है कर्म सुकौशलम, अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। योग केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों का आधार स्तंभ रहा है। यह एक प्राचीन विद्या है जिसका उद्देश्य शरीर, मन व आत्मा की शक्तियों का यथोचित समन्वय कर उत्तम चरित्र का निर्माण और आदर्श समाज की रचना करना है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न एवं बुद्धि स्थिर रहती है। सारांश में कहें तो योग का अर्थ शरीर और मन की संतुलित अवस्था के साथ सात्विक आहार का सेवन है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर एवं मन के साथ ही चेतना भी शुद्ध और सबल होती है। योग अभ्यास से शरीर के सभी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर का आधार मेरुदंड और मस्तिष्क की कार्य क्षमता का विकास होता है। शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। योग शिक्षा के अंतर्गत जिस सर्वांगीण विकास की चर्चा है, ये योग द्वारा ही संभव है। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद योग विद्या का विकास करके मानवता के समक्ष इस विषय में बहुत ही सरल व सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ लेते हुए मनुष्य जीवन के चरम व परम लक्ष्य को सहजी प्राप्त कर सकता है। योग तो कल्प वृक्ष की भांति है, यह जीवन जीने का एक प्रभावी व्यवहारिक विज्ञान है। योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, स्मरण शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास, संवेगों पर नियंत्रण, नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास, सुगठित शरीर एवं कांतिमय चेहरे का निर्माण। योग जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान, जीवन जीने की कला, अर्थात मानव जीवन का लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य में निहित सृजनात्मक शक्तियों का जागरण एवं रूपांतरण ही योग है। मन को शांत एवं नियंत्रित करने की कुशल विद्या एवं दिव्यता को प्राप्त करना ही योग कहलाता है। परम सत्य को जानना एवं परम सत्य में रमण करना ही योग है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना ही योग है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के शब्दों में योग उस साधन प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा

की एकाग्रता का अनुभव होता है और जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग होता है। योग का लक्ष्य एक ही है, नर से नारायण बनाना। मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह जितना भी एकाग्र होता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। ये सभी वैज्ञानिक खोजों का रहस्य है जो सिर्फ योग द्वारा ही संभव है। जीवन में योगी की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में योग उच्च जीवन प्राप्त करने की विद्या है जो व्यवहारिक जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाती है। सर्वोच्च स्तर पर जाकर यही मोक्ष का कारण बनती है। इसका आरंभ मन के नियंत्रण से होता है। जीवन में सभी स्थूल कर्म शरीर से ही होते हैं, किंतु उन कर्मों का कर्ता मन है। जैसे मन में विचार होते हैं वैसे ही कर्म शरीर द्वारा होते हैं, इसलिए शरीर द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कर्मों के लिए मन ही जिम्मेदार है। इसलिए योग साधना का आरंभ मन के नियंत्रण से ही किया जाता है। योग के कई मार्ग हैं, जिनमें राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, नाद योग, तंत्र योग आदि। इनमें से किसी की भी साधना की जाए, सभी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इनके लिए विभिन्न ग्रंथ उपलब्ध हैं तथा कई योगी इनकी साधना भी करवाते हैं। ज्ञान साधना के लिए योग वशिष्ठ पूर्ण योग ग्रंथ है तथा शंकराचार्य इसके पूर्ण उपासक थे। व्यवहारिक जीवन में गीता का योग सर्वाधिक उपयोगी है। इसके 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। कोई भी साधक अपनी रुचि के अनुसार किसी की भी उपासना कर ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। शरीर में आत्मा एक कारण तत्व है जो सभी क्रियाओं का कारण है, किंतु इसकी सभी क्रियाएं मन से ही होती हैं। इसलिए ये मन ही करता है। संसार की अनुभूति भी मन को होती है। सुख दुख का अनुभव, राग द्वेष, ईर्ष्या आदि जितने भी दुर्गुण हैं, सभी मन की ही उपज है। इसी प्रकार प्रेम, दया, करुणा, सेवा आदि जितने भी भाव हैं, वे भी सभी मन की ही उपज है। अतः मन पर नियंत्रण की आवश्यकता रहती है, वरना समाज व्यवस्था रह ही नहीं सकती। ये मन ही संसार है। संसार के सभी बंधन मन के ही कारण हैं तथा मन से ही मुक्त होना मुक्ति है। आत्मा को जानने वाला भी मन ही है, जो आत्मा से भिन्न ही है। आत्मा ज्ञेय है तथा मन ही उसका ज्ञाता है। जिसे ज्ञान होता है, यदि मन ना रहे तो इसकी अनुभूति भी संभव नहीं है। अनुभूति के बाद भी उसकी व्याख्या मन के द्वारा ही की जा सकती है। अतः मन की ही सर्वाधिक भूमिका है। यदि मन आत्मा में विलीन हो जाए तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? जो मन सांसारिक विषयों से ही भरा है, वह उस चैतन्य को जान ही नहीं सकता। मन को सबसे पहले सांसारिक विषयों से मुक्त करना पड़ेगा, तभी वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। मन को इन विषयों से खाली करना प्रथम चरण है। योग द्वारा सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तर पर विकास। एक ही समय में इन सभी स्तरों पर उन्नति केवल योगिक क्रियाओं के माध्यम से संभव है। शारीरिक विकास, योगिक क्रियाएं जैसे सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि जो जीवन के एक एक अंग पर क्रिया कर उन्हें उन्नत करती है। मानसिक विकास, मन को एकाग्र कर सोई हुई शक्तियों को जागृत किया जाता है, जिससे आत्म विकास, साहस, धैर्य, उत्साह, संयम आदि गुण विकसित होते हैं। ध्यान व प्राणायाम की क्रियाएं इस उद्देश्य की प्राप्ति में परम सहायक हैं। भावनात्मक दृष्टि से भी भक्ति योग भावनाओं को परिपक्व बनाने में सबसे सशक्त माध्यम है। बौद्धिक विकास के लिए मन की एकाग्रता अपरिहार्य है। जब मन शांत होता है तो मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स शिथिल होकर स्वतः ही उन्नत हो जाते हैं। अतः बुद्धि तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। सामाजिक विकास भी योग के माध्यम से होता है। मन की शांत व एकाग्र अवस्था व स्वतः ही समाज सेवा की ओर प्रेरित करती है। ईश्वर में अटूट श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण आध्यात्मिक विकास की नींव है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा मन को शांत व शून्यता के प्रति अग्रसर करता है। आध्यात्मिक विकास जीवन की सार्थकता के लिए परम आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को रोगों के होने का कारण माना जाता है, और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारना अर्थात जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक के उपचार कर रोगों को ठीक किया जाता है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, त्रिदोष और सप्त धातु का असंतुलित होना रोग उत्पत्ति का कारण माना जाता है।

0: औषधियों के द्वारा वात पित्त कफ को संतुलित कर रोग निवृत्ति की जाती है। परंतु योग चिकित्सा के अनुसार विजातीय द्रव्य का शरीर में रुक जाना अर्थात किसी भी अंग को प्रभावित करना रोग का कारण बनता है। विजातीय द्रव्य के वातावरण में जीवाणु के उत्पन्न होने से रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यही रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। योग में विजातीय द्रव्य द्वारा बना वह वातावरण है जिससे हानिकारक जीवाणु पनपते हैं और लक्षणों के रूप में रोग उत्पन्न होते हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि रोगों का कारण जीवाणु नहीं बल्कि वह दूषित पदार्थ है जो शरीर में रुक जाते हैं। योग चिकित्सा द्वारा शरीर के इन विजातीय द्रव्यों टॉक्सिन को शरीर से दूर कर दिया जाता है जिससे जीवाणु पनपने का वातावरण ही समाप्त ही कर दिया जाता है जिससे रोग का मूल कारण समाप्त हो जाता है। योग चिकित्सा द्वारा रोग शरीर के हर स्तर पर शारीरिक प्राणिक मानसिक बौद्धिक और भावनात्मक स्तर से दूर कर संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति की जाती है तथा सभी स्तरों की पूर्ण क्षमता को उभार कर संतुलित विकास के लिए अग्रसर किया जाता है। स्वास्थ्य ही शरीर की धरोहर है। ये जो शरीर ईश्वर ने दिया है ये बड़े पुण्य और अपने अच्छे कर्मों का वरदान है कि आप अपने आनंद में जीवन को तनाव व रोग युक्त न बनाएं। इसलिए लय प्रतिज्ञा हम करेंगे योग रहेंगे निरोग रहेंगे निरोग।
1: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार थे रघुवीर पाराशर। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है परचर्चा करने का। साथियों मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने योग्य बनाती है। विद्यालयी शिक्षा के बाद महाविद्यालय का जीवन प्रारंभ होता है जो विद्यार्थियों के भविष्य और करियर की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं है बल्कि यह वह मंच है जहां विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल और व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। दोस्तों महाविद्यालय शिक्षा का वह स्तर है जहां विद्यार्थी अपने रुचि और लक्ष्य के अनुसार विषयों का चयन करते हैं। यहां उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक और व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। महाविद्यालय विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की सामान्य शिक्षा दी जाती है जबकि महाविद्यालय में उन्हें विशेष विषयों का गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है। यही अध्ययन आगे चलकर उनके कैरियर की नींव बनाता है। साथियों महाविद्यालय विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है और अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर भी प्राप्त होता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं संगोष्ठियों कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को नेतृत्व समय प्रबंधन टीम वर्क संचार कौशल और समस्या समाधान जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित करने का अवसर भी मिलता है। ये गुण किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त कई महाविद्यालय विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। साथियों महाविद्यालय केवल शैक्षणिक विकास तक सीमित नहीं होता, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का भी केंद्र है। खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम वाद विवाद प्रतियोगिताएं और सामाजिक गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। साथियों महाविद्यालय जीवन का सही उपयोग करना विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। उन्हें समय का सदुपयोग करते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि नई नई जानकारियां प्राप्त करना और अपने कौशल को विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों विद्यार्थियों को महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए

अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के माध्यम से वे अपने करियर को सफल बना सकते हैं। महाविद्यालय विद्यार्थियों के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह उन्हें करियर की मजबूत नींव तैयार कर देता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाता है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।
1: Hey girls, hey, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गीत फिल्म हीरो।

0: First. India has won the toss and elected to bat. Munish, बिल्कुल नॉकआउट मुकाबलों वाली फीलिंग आ रही है आज. दोनों ही ग्रुप्स में निर्णायक मुकाबलों का दिन है. वैशाली, इंडिया ने बैट करना पसंद किया है आज के इस मैच में. आज का जो मैच है वो साउथ अफ्रीका के लिए इट्स अ मस्ट विन मैच. और हम जो अभी मैं बात कर रही हूँ कि नॉकआउट मुकाबलों जैसी एक फीलिंग आ रही है, क्वार्टर फाइनल जैसा एक लग रहा है. वहीं भारत के लिए ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी मजबूत करना भी जरूरी है.
1: बिल्कुल. एंड आज का अगर इंडिया टीम मैच जीतती है तो वो फाइनल में, सेमीफाइनल में अपनी जगह भी बना लेती है. और उसके साथ ये क्लैरिटी मिल जाएगी इस ग्रुप में कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दोनों ही सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन उसके लिए पहला पड़ाव बहुत जरूरी है कि ये मैच जीतना बहुत जरूरी है. और अभी हमारे कैप्टन ने दो चेंजेस की भी बात करी है, तो वहां पर प्रेमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि प्रेमा 2025 के वर्ल्ड कप में, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, उसमें वो स्टैंड बाय लिस्ट में भी थी एंड आज वो डेब्यू भी कर रही है. और सबसे अच्छी बात है वो इंडिया ए टीम के लिए ऑलरेडी इंग्लैंड में थी एंड वहाँ पे उनको इंडिया कॉल आया, आज वो डेब्यू भी कर रही हैं. और सबसे बड़ी खास बात ये भी है उनकी, वो यहाँ पे लेग स्पिन डालती हैं. और सबसे खास बात यह है कि वो रिस्ट बॉलर है. रिस्ट बॉलर को जज करना उतना इजी नहीं होता है और आज उनको अपना ये चांस ग्रैब भी करना चाहिए. एंड बैटिंग लाइनअप की अगर बात करूँ तो हमारे बैटर्स को कम से कम उतनी उनको फोकस करना चाहिए कि वो सिक्स पावर प्ले के अंदर, सिक्स ओवर के पावर प्ले के अंदर जितने रन्स बटोर सकते उतने बटोरे और जितनी कम विकेट हम फॉल करेंगे उतना बेटर हमारे लिए होगा.
2: राइट देन, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20. मेरा नाम मुनीष जौली. अगला सवाल मैं रविंदर सिंह आपसे पूछना चाहूंगा. यहाँ पे श्रेयंका पाटिल के बारे में बहुत अनफॉर्चुनेट इंजरी थी, आपको लगता है एक बहुत बड़ा ब्लो है भारतीय टीम के लिए?
3: डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर थी प्लस वो पावर प्ले में जो उनका जो एडवांटेज था बॉल डालने का, वो अब जरूर इंडिया मिस कर रही होगी. और मुझे श्रेयंका पाटिल के जो इस समय जो बैलेंस है टीम का, वो अब प्रेमा रावत से कितना बैलेंस हो पाता है ये तो आज वक्त बताएगा, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा ब्लो है इनसे.
0: उत्तरा, अभी बात की वैशाली ने पावर प्ले की. पावर प्ले में सुफारा ओपनर्स आर डूइंग वेल, लेकिन अब पावर प्ले में सामना करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के लीथल बॉलिंग अटैक का. एक एन से मरजन कार्प, दूसरे एन से शबनम स्माइल और फिर इनके अलावा आयाबुंगा खाका. आज इंडिया पावर प्ले में कैसा परफॉर्म करता है, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आज के मैच का? और इज इट गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ पावर प्ले, इंडियन टॉप ऑर्डर वर्सेस साउथ अफ्रीकन पेसर्स?
4: आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ हु इज मोर हंग्री एंड डेस्परेट टू विन. इंडिया के पास एडवांटेज ये है कि दो मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं वो अपने, और साउथ अफ्रीका एक ही जीती है, एक हारी है अभी, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये मैच जीतना अपने चांसेस बनाए रखने के लिए. इंडिया के पास जो बाकी के दो मैच हैं उसमें भी एक टीम बांग्लादेश है, वेर वी एक्सपेक्ट इंडिया टू डू रियली वेल, तो प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा होगा. बट अगेन जैसा कि पावर प्ले की बात है, तो T20 में पावर प्ले में मैचेस हैव बीन वन एंड हैव बीन लॉस्ट. शबनम इस्माइल के वापस आने से ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग हुई है. हमारी बैटिंग में ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जो टॉप के तीन चार हमारे बैटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बट अगर वहाँ से सामने की तरफ से जिस तरह से बॉलिंग आएगी, अगर पावर प्ले में हम नहीं कर पाए तो थोड़ा सा मामला टाइट हो सकता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऋचा घोष हमारी मिडिल ऑर्डर उस तरह से नहीं फायर की है, ना उस तरह से टेस्ट हुई है इससे पहले के दोनों मैचेस में जो नेदरलैंड्स था और पाकिस्तान दोनों के ही साथ. तो प्रेशर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है जो हमारे टॉप के चार बैटर्स हैं, हरमन, शेफाली, स्मृति और जमीमा. एक्सपीरियंस है, फॉर्म है, रन्स हैं उनके पास, तो उन चारों का परफॉर्मेंस जो है वो एक तरह से आपका टेम्पलेट सेट करेगा कि टीम किस तरफ जाएगी. आपने पावर प्ले की बात की, मुझे लगता है कि इन चारों को पावर प्ले से बहुत आगे और खेलने की जरूरत है, क्योंकि अगर पावर प्ले में ये करते भी हैं और उसके बाद नहीं उस स्टार्ट को भुना पाते हैं तो भी जो बाकी के बैटर्स आएंगे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा.
2: राइट देन, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं वैशाली इस बात?
1: बिल्कुल, जैसे मैम ने बोला अभी कि मिडल ऑर्डर के बारे में उन्होंने बात करी, तो वहां पर ये चेंज जरूर होना चाहिए कि यास्तिका भाटिया की जगह पे अगर दीप्ति शर्मा और ऋचा

0: कोच अगर मिडल ऑर्डर पे आते तो बैटिंग लाइनअप थोड़ा बेटर इम्प्रूव दिखाई देगा. तो ये एक कप्तान को सोचना जरूरी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल मैच है इंडियन टीम के लिए, और यहाँ से अगर जीतते तो आप हम सब जानते हैं कि आगे पहुंच सकते हैं.
1: और एक बहुत बड़ा दिन कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी, 200वां T20 इंटरनेशनल जो है वो खेल रही हैं, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वहाँ पे. हम अपने श्रोताओं को यहाँ पे इनवाइट करें. मुदिता क्या कहती हैं, फोन नंबर्स अनाउंस कर देते हैं? तो दोस्तों हमारे जो स्पोर्ट्स स्पेशल फोन नंबर्स हैं जिसके वजह से आप हमारे इन एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो नंबर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2342-1083, 2342-1085. इससे पहले आपको दिल्ली का कोड लगाना पड़ेगा 011, और उसके बाद 2342-1083 और 2342-1085. हमारे साथ फोन कॉलर्स अगर अभी जुड़ रहे हैं तो देखते हैं मुझे तो कौन है फोन लाइन पर.
2: जी अपना परिचय दे, कहां से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
3: जी नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश बोल रहा हूं, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी मीटिंग में आप कैसे खिलाया जा रहा है. मुझे लगता है कि उनको इससे पहले वाला मैच में अगर मौका दिया जाता तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता, क्योंकि जगह पे इतने बड़े मैच में
1: सर वो अभी टीम में आए हैं क्योंकि श्रेयंका पाटिल इंजर्ड हो गई हैं, तो उनको स्क्वाड के अंदर अभी डाला गया है, तो वो कोई चांस नहीं था कि वो पहले खेल पाती. जी रविंदर जी, रेणुका सिंह
4: देखिए, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है. जो श्रेयंका पहले, जो आज अरुण जेटली को लिया है, इन्होंने पहले मैच में नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो कल 2 ओवर 20 रन के आसपास थे, लेकिन उनको उनको पता है कि ये जो यहाँ पे सीम होगा, बॉल सीम होता है, और इसलिए शायद उन्होंने अरुण जेटली को लिया है. रेणुका सिंह का भी नंबर जब उनको लगेगा मैनेजमेंट को तो भी उनका आएगा. लेकिन आपने सही बोला कि प्रेमा को इसलिए एक लेग स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, आपको पता है कि जब खेलता है तो मैच को या तो मैच को बिल्कुल साइड कर देता है. और 4 ओवर में साउथ अफ्रीका के लिए एक लेग स्पिनर जो कि शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा इस प्रेमा रावत को पहले, तो एक अच्छा रीजन हो सकता है.
2: वैशाली, खिलाड़ी होने के नाते आपसे एक सवाल है कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर राधा यादव हैं स्क्वाड में हमारे पास, लेकिन मैनेजमेंट ने एक बड़ा दांव खेला है एक अनकैप्ड प्लेयर को टीम में शामिल करके, जो अभी हमारे श्रोता सवाल कर रहे थे, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर और इतने इंपॉर्टेंट मैच में. स्किल है उनके पास, नंबर्स भी हैं, इंडिया ए के लिए 8 मैचेस में 15 विकेट लिए हैं उन्होंने. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट T20 सीरीज में शी वॉज द ज्वाइंट हाइएस्ट विकेट टेकर, लेकिन सीधे इतने बड़े मंच पर आने से विल शी बी एबल टू हैंडल अ हाई प्रेशर गेम?
0: ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड है कि आज क्या वो अपना पूरा 100% किस तरीके से देती हैं. एंड सेकेंडली अगर हम प्रेमा की बात करें तो वहाँ पे वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है इंडिया ए में, जो आपने उनके विकेट्स के बारे में बताया है, तो उस हिसाब से वो इस मैच के लिए बिल्कुल फिक्स्ड है. एंड वहाँ पर जिस तरीके से अभी सर ने बोला कि वो एज अ लेग स्पिनर भी खेल रही हैं, तो उनको अभी तक किसी ने देखा नहीं है, और उनको खेलना भी इजी नहीं होगा. पहले उनको देखा जाएगा, उनकी बॉलिंग को जज किया जाएगा, देन उसके अकॉर्डिंगली खेला जाएगा. तो वहाँ पर जज करने में और कुछ ओवर्स वहाँ पर हमें बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि न्यू बॉलर को जज करना इतना ईजी नहीं होता है इतने बड़े लेवल पर.
1: वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्रेमा रावत की बात करी, वो पावर प्ले में बॉल डालती हैं लेग स्पिन अगर मौका दिया जाए तो?
0: मुझे लगता है कि पावर प्ले का अगर फायदा उठाना है तो हमें एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ उठाना चाहिए, जो है दीप्ति शर्मा. एंड उसके साथ वो एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको ये भी पता होता है कि वो कहाँ पर किस बैटर को कहाँ पर बॉल डाल सकती हैं और कहाँ उनका स्पॉट है बॉलिंग का. इस बैटर की डेब्यू प्लेयर से ना करा के हम उनको वहाँ यूज करें जहाँ विकेट्स की जरूरत है.
1: वेरी क्विकली उतरा, आई वांट टू आस्क, सिंस इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट एंड you know it's a big day today, yoga day, we'll talk about that a bit later, but then Shefali Verma, you think the way I think that she's a bit inconsistent whether she's going to score today or no, you have a same thought about her?
5: I think Shefali has, I think a lot of people have been very unfair to Shefali, kyunki jab unhone shuru kiya tha to jis tarah se shuru kiya tha unhone wahan pe, to people expected her to go bang bang every game, every innings, and then go and score those big runs. But we have to remember, people evolve, players evolve, she's becoming mature, and she has also learned how to handle herself. It took her some time, but yes, आई थिंक द इनकंसिस्टेंसी वॉज मोर अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर ऑफ वॉट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम हर एवरी टाइम शी गोज आउट एंड वॉट द टीम

0: situation is and what she actually needed to do as a player out there. But I think she's grown, she's become more evolved and mature, she now understands the game better. So wo consistency ab dheere dheere aayegi uske game mein aur wo aapko uske game mein nazar bhi aata hai. She's not going to go jaisa aajkal hum Vaibhav Suryavanshi ke liye bol rahe hain. She's not going to go bang bang from the first ball.
1: Wow.
0: She's become a mature player, and that's why the consistency has improved in the last few years.
2: And humne yahi Shefali Verma ka
1: ji
2: ha humne yahi Shefali Verma ka last match mein dekha tha ki unhone air shot nahi khele the, groundy shots khele the. Ye improvement hai.
1: Wow. मैं आपके साथ हूँ. लेकिन मेरे को कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट होता है ना, मैं मेडिटेटिव मोड में चले जाता हूँ, कुछ ना कुछ अपने आप को शांत रखता हूँ आंख बंद करके. और आज एक बहुत बड़ा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस. तो रविंद्र भाजी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में योग ने आके कुछ चेंज किया. आप योग फॉलो करते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कोलकाता जो राजधानी है वेस्ट बंगाल की, वहां रेड रोड एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे जाके उन्होंने आज बहुत लोगों के साथ योग दिवस मनाया. आप योग को कैसे लेते हैं अपनी जिंदगी में?
3: देखिए, अभी आपने बोला कि जब भी मैं किसी तरह उसमें रहता हूं तो मैं वापस योगा मूड में आ जाता हूं. यही सबसे बड़ी बात है. ये प्रेशर गेम है, ये प्रेशर, इतना प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर, इतना होता है इनके लिए. तो योगा मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में योगा टीचर्स भी, बड़ी बात नहीं कि योगा टीचर्स भी टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि इनको जो अपना फोकस रखना है अपना. कई बार तो मैंने देखा कई प्लेयर्स को मेडिटेशन करते हुए देखा, अपना फोकस, अपना दिमाग को स्टेबलाइज करने के लिए, कुछ कंसंट्रेशन करने के लिए. ये योगा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हुआ है और क्रिकेट का, और इवन कई सारे स्पोर्ट्स का, और हर लोग, मुझे लगता है कि हर प्लेयर उसको जरूर ना कुछ कहीं ना कहीं कितने रूप में फॉलो करता है.
1: वैशाली, आपको कैसे इवॉल्व किया योग ने, एंड हाउ डू यू थिंक दैट इट्स बेनिफिटिंग द मॉडर्न स्पोर्ट्स एरा नाउ?
2: योगा का, मुझे लगता है कि योगा का ना बहुत पॉजिटिव रोल है, सिर्फ एथलीट्स पे ही नहीं बाकी लोगों पे भी. एंड अगर एथलीट्स की बात करें, क्रिकेटर की बात करें, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो टाइट मसल्स होती है ना, वो हमारे हिप्स, शोल्डर, हैमस्ट्रिंग को खोल देती हैं. एंड ये हमारे ना बैटिंग के बैकलिफ्ट, बॉलिंग का फॉलो थ्रू एंड फील्डिंग के ड्राइव पे बहुत स्मूथ असर देता है और बहुत स्मूथ फोकस चलता है. और अगर मैं बैलेंस की बात करूँ तो योगा हमारी बैटिंग के लिए बैलेंस हमें देता है एंड आपको मूवमेंट डायरेक्शन करने में हेल्प करता है. और उसके साथ इसको मेंटल फोकस, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत लॉन्ग टर्म का, बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला गेम है, तो उसमें मेंटल फोकस और प्रेशर हैंडलिंग गेम बहुत ज़रूरी है, तो वो योग से ही हमें मिलता है.
4: जी बिल्कुल. उत्तरा, आपका कोई अनुभव योग को लेकर?
0: मुझे लगता है योग इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो जिस तरह से होता है, शायद योग से ज़्यादा एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल कुछ नहीं है, बिकॉज उसके इतने वेरिएंट्स हैं. एंड ऑनेस्टली हर किसी के बस का नहीं है वो बैठ के एक घंटा पूरे तरह से ध्यान लगाए. और लोगों के लिए फोकस करना या मेडिटेट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं. बहुत से प्लेयर्स हैं जो गाना सुनते हैं और अपने आप के साथ रहना पसंद करते हैं 5 मिनट के लिए. तो म्यूजिक इनकॉर्पोरेट करना, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पे डांस योगा और स्टीम योगा और बहुत सारी चीजें होती हैं. तो योग से ज्यादा मुझे लगता है हर किसी को सूट करने के हिसाब से कोई और ऐसी एक्सरसाइज मॉड्यूल अगर हम देखें तो कुछ और है नहीं जिसमें आप अपने हिसाब से योग को ढाल सकते हैं और योग के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अडेप्टेबल, मैलिएबल या फ्लेक्सिबल कोई भी एक्सरसाइज का तरीका है. तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और को किसी और चीज की जरूरत पड़ती है योग के बाद.
1: Well, I think it's a great day, Mudita, because माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव था, एंड ऑफ कोर्स यूएन में जाके अंतर्राष्ट्रीय योग डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को. और आज माननीय राष्ट्रपति जी भी जबलपुर मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में वहां पहुंची थी. बट वील कम बैक टू द गेम वेयर ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस रिमेन्स यू नो एट द पीक फॉर द टॉप प्लेयर्स.
4: बिल्कुल रविंदर, फील्डिंग की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका इज अ वेरी शार्प फील्डिंग साइड एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट वंस इनटू टूज अगेंस्ट देम. वन ऑफ द बेस्ट बाउंड्री सेविंग टीम्स भी है वो, तो क्या ये मुकाबला आज रन बनाने से ज्यादा रन बचाने का साबित हो सकता है?
3: देखिए, फील्डिंग हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, बैटिंग बॉलिंग तो होता ही है, फील्डिंग में आप जितने रन बना सकते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. और वो ही कई बार 20 ओवर के मैच में मार्जिन बहुत ही कम लेवल, बीच में जो उनका डिफरेंस होता है मार्जिन तो बहुत कम होता है, वही 2-4 रन लास्ट में वो मैटर करते हैं. लेकिन अब वो इंडियन टीम ने भी काफी

0: इंप्रूव किया है बीच में, काफी पहले तो इंडियन टीम की बैटिंग फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब काफी इंप्रूव किया है। लेकिन साउथ अफ्रीकन शुरू से ही मेंस लीजिए या वुमेन दोनों लीजिए, कमाल के रहे हैं। और अभी तक आपको अगर कोई किसी से भी अगर जो ना भी स्पोर्ट्स जानता हो उससे पूछेंगे कि किसी फील्डर का नाम बताओ साउथ अफ्रीका का, तो सबसे पहले उठ के बोल देगा जॉन्टी रूट्स।
1: एब्सोल्युटली। और जॉन्टी बनने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है मेन क्रिकेट में, बट ऑफ कोर्स फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स के साथ हम बैटिंग के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। स्मृति मानधना के बारे में बात करना चाहूंगा, 142 रन बना के शी इज द टॉप रन गेटर एट द मोमेंट। वैशाली, टू कंसेक्यूटिव 50s, यू थिंक दैट बिल्ड्स अप अ प्रेशर? किसी प्लेयर पे एक प्रेशर होता है कि मैंने 250 बना दिया, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई।
2: प्रेशर तो हर गेम में होता है, हर प्लेयर का होता है, और उसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि साउथ अफ्रीका टीम जो खेल रही है उनके अगेंस्ट, उन पे ज़्यादा प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू स्मृति, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी में है और उनको आउट करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप, शफाली की और स्मृति की पार्टनरशिप के बारे में हमेशा बात होती है और वो वहाँ पे स्टे भी करते हैं। उनको ये पार्टनरशिप बहुत 3000 कुछ समथिंग रन्स की भी है, एंड वो पार्टनरशिप तोड़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और शफाली वर्मा को जिस वे में स्मृति मंदना लास्ट मैच में खिला रही थी, उनको बोल बोल के कि आपको किस वे में रुकना है और कहाँ पे आपको स्टे करना है और कौन सी बॉल को आपको किस वे में करना है, तो वो एक है ना एक्सपीरियंस प्लेयर कहलाता है, दिखता भी है अंदर से।
3: जी वैशाली, टॉप ऑर्डर की आपने बात करी, लेकिन इंडिया हैव शफल्ड देयर बैटिंग ऑर्डर इन द मिडिल ऑर्डर इन बोथ द मैचेस, क्या इससे प्लेयर्स का रिदम बिगड़ता है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर शुड हैव क्लियर रोल्स, स्टेबलाइजर हो, एक्सेलरेटर हो एंड देन फिनिशर, आर दोज रोल्स ओवरलैपिंग, और क्या इससे प्रेशर सिचुएशंस में बैटिंग कोलैप्स कर सकती है?
2: प्रेशर तब आता है जब अगर पार्टनरशिप नहीं, आप नहीं तोड़ पाते, तो वो सामने वाली बैटिंग, सामने वाली टीम पे प्रेशर आता है। लेकिन जहाँ पर हमारी पार्टनरशिप टूट गई तो दूसरा जो बैटर अंदर जाएगा उस पे प्रेशर ज़्यादा आता है। और मिडल ऑर्डर की बात करूँ तो वहाँ पे यास्तिका भाटिया की जगह पे मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर हम दीप्ति शर्मा को ऊपर लेके आते तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि लास्ट मैचेस में उन्होंने काफ़ी बेटर स्कोर किया है यास्तिका भाटिया को, अगर हम कंपैरिजन करें तो।
1: राइट देन, दो चेंजेस जो हुए हैं, तस्मीन ब्रिट्स और दानी वैन निकर्क अंदर हैं, और सुने लूज और काला रहने के मिस आउट कर रही हैं साउथ अफ्रीका के लिए। और ताज़ा खबर ये है कि दोनों ही देशों का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो मैदान के बीचों बीच आया है, और आईसीसी का ध्वज और उसकी दाई तरफ भारत और बाई तरफ साउथ अफ्रीका का फ्लैग, और प्लेयर्स वहां पे तैयार हो रहे हैं नेशनल एंथम के लिए। बहुत जल्दी से हम यहां पे रविंदर जी आपसे मैं बड़ी जल्दी जानना चाहूंगा कि इंडिया का रन रेट बहुत अच्छा है 3.98, साउथ अफ्रीका इज -1.10, ये कांटे की टक्कर है, स्पेशली जब हम 50 ओवर के फॉर्मेट में वो जो फाइनल हमने देखा था, साउथ अफ्रीका जानते हैं कि हमारे को एनआरआर भी मेंटेन करके रखना है।
0: देखिए, एनआरआर का तो डिफरेंस रहेगा ही, और इंडिया अभी जो जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा हो चुका है। लेकिन ये देखिए कि इस ये जो आज इंडिया को उस रन रेट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे मैंने देखा है जो चेस करने वाले ज्यादातर जीते हैं, काफी जीते, और जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है, लॉरा देख लिए, डर्कसन देख लिए, इवन क्लर्क जो कि काफी फॉर्म में चल रही है दोनों मैचेस में, तो इंडिया को एक अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट कम, और उसी को क्योंकि जानते हैं कि ये 20 ओवर्स के मैच में दो प्लेयर्स ही खड़े हो जाते हैं तो मैच को बराबर कर देते हैं।
3: जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछे।
1: हेलो जी, मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं?
4: अरे आप क्या आवाज सुन सुन के बड़ा हो रहा हूँ यार।
1: ये कॉम्प्लीमेंट था क्या? जी बताएं।
4: एक क्वेश्चन था।
1: जी जी।
4: तो रवि सर, मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छा जवाब दे पाए सर। देखिए, देखो जो बाकी कैप्टन थे
1: बात कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस से थोड़ा सा उतना खुश नहीं है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, होता है ना, टेंटेटिव होता है।
0: हरमनप्रीत देखिए, हरमनप्रीत एक इससे बड़ा क्या होगा, 200 का मैच खेल रही हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, और अब उनको पता है कि किस मैच में क्या, किस मैच में अपने गेम को किस लेवल पे लेके जाना है, तो उन, उन, उन, उन,

0: ये जो अचीवमेंट है वो अभी तक कोई मेंस भी नहीं पूरा कर पाया जो उन्होंने पूरा करके दिखाया। आप चिंता मत कीजिए, जो जरूरत पड़ेगी तो हरमनप्रीत आपको समय मैच को जिताते हुए मिलेंगे।
1: उथरा वेरी क्विकली बिकॉज वी विल हेड टुवर्ड्स ओल्ड ट्रैफर्ड, द रिकॉर्ड से दैट पीपल द टीम्स हु हैव चेज्ड हैव अ मच मोर परसेंटेज इन विनिंग द गेम्स। यू थिंक दैट्स अ फेयरिंग फैक्टर फॉर इंडिया, दे चोज टू बैट आफ्टर विनिंग द टॉस, एनीथिंग टू कंसर्न?
2: I think the kind of players we have, if they do the way, if they play their normal game, records don't really matter much for India, and we have the capacity and the capability to win whether we chase or we set the total. And if they set a high enough total, we have the bowling to restrict the opponent at any level that we want.
3: चलते चलते एक सवाल है रविंदर, हरमन को हम लंबे टाइम से कप्तानी करते देख रहे हैं, बट डू यू थिंक शी लुक्स मोर कॉन्फिडेंट एज अ कैप्टन देन एवर बिफोर? जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट कर रही है, खासकर शेफाली वर्मा को जिस तरह से पावर प्ले में यूज किया उन्होंने पिछले मैच में, इसके अलावा DRS को लेकर ODI वर्ल्ड कप में कई बार सवाल उठे थे उन पर, लेकिन अब उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस, वो अश्योरेंस दिख रहा है ऑन द फील्ड।
0: बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके पास जो कॉन्फिडेंस आया है उनके पास, वो वाकई देखने लायक बिल्कुल है। और अब वो मैच्योर क्रिकेटर हैं, पुराने मैं कहता हूं काफी इतने सालों से खेल रही हैं, अब इस समय मेरी इससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं हो सकता। और इस समय इंडिया के पास जो हरमनप्रीत है वो एक एसेट है, इस समय वो कितना आगे इस समय चला पाएंगी और वो देखने वाली बात है। लेकिन हरमनप्रीत का जो वाकई आप सही कह रहे हो, जो उनका डिसीजन ले जो टेकिंग जो एलिबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है। DRS को पहले नहीं ले पाती थी, लेकिन अब वो जो DRS जो लेती है उसकी वाकई बहुत ही बड़ा रीजन है
3: जी। और चलते चलते प्रेडिक्शंस, उत्तरा आपसे शुरू करते हैं, कितना स्कोर है?
2: जीत का या स्कोर का?
3: बिल्कुल दोनों बताइए।
2: ये चाहते हैं कि इंडिया जीते, नॉट सरप्राइजिंग, बट आसान नहीं होगा बिकॉज साउथ अफ्रीका इजी बिल्कुल नहीं आपको जीतने देगी। और टोटल आई थिंक क्लोज टू 200 जाना चाहिए
3: जी। वैशाली
4: 180 अराउंड।
3: रविंदर
0: 180 के आसपास सही है
3: जी। बिल्कुल, तो अब देखते हैं हमारी कमेंट्री टीम आपके साथ जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: फर्स्ट बॉल 20।
6: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
7: नमस्कार, मैं संजय सरीन अपने साथी कमेंटेटर। किशन कुमार के साथ आज भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ICC वर्ल्ड कप का यह बहुत एक अहम मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर। कुछ देर पहले टॉस हुई और टॉस भारत ने जीती और भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम आज इस प्रकार रहेगी, कप्तान हरमनप्रीत कौर, जमेमा रेड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, स्मृति मैदाना, यशिका भाटिया, अरुणादिति रेड्डी। आज एक नया नाम जो इस टीम के साथ जुड़ा है वो है प्रेमा रावत, श्रीचरणी और नंदनी शर्मा। ये होंगे भारत के आज प्लेइंग 11। प्रेमा रावत को स्थान मिला है श्रियंका पाटिल की जगह जो चोटग्रस्त होकर बाहर गई हैं, और आज प्रेमा रावत अपना मैच खेलेंगी, पहला मैच ICC वर्ल्ड कप का ये इस 2026 का। और साउथ अफ्रीका की टीम अपने कप्तान लॉरा वॉल्वर्डाट के साथ टीम में उतरेंगी, मजीना कैप, टूमी शेखुखुने, शिनालो राफ्टा, क्लो टायसन, नानकुले मलाबा, नंदनी डक्लाक, हेनरी डॉक्सन, डैनवेन निकक और आयोबोंगा खाका जो उनकी बॉलर हैं, तेज गेंदबाज, ये टीम में शामिल रहेंगी। और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में दोनों टीमें अब बिल्कुल सेट हैं। भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी और साउथ अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी करेगी। टॉस भारत ने जीता जैसे मैंने आपको बताया। स्मृति मांदना और क्रीज पर मौजूद ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप 2

0: गया और इस चौके के साथ इस मैच का पहला चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकला और भारत ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बनाए हैं और अच्छी शुरुआत। हालांकि जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी और ये आखिरी गेंद सिर्फ लेग स्टंप को छोड़ती हुई और उसे हल्का सा दिशा भर दी शेफाली वर्मा ने और गेंद सीमा रेखा को छोड़कर बाहर जाती हुई। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में भारत का स्कोर रहा 9 रन बिना किसी नुकसान पर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये जो वुमेन्स टूर्नामेंट हो रहा है इसमें जो पॉइंट टेबल है ए ग्रुप में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक 3 मैच खेल चुका है और तीन मैचों से 6 अंक अर्जित कर चुका है। भारत ने 2 मैच खेले, आज भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैच, तीसरा मैच वो खेल रहे हैं। बांग्लादेश ने 3 मैच खेले हैं, 4 अंक उन्होंने अर्जित किए। साउथ अफ्रीका का ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा मैच और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स भी 3-3 मैच खेल चुके हैं। इस्माइल अपने नए ओवर के साथ सामना करती हुई स्मृति मांदना, अच्छी गेंद थी, कवर्स पर उसे पुश किया, फील्ड किया गया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन पे। 1.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 9 रन। स्मृति मांदना खेल रही है 3 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 5 गेंदे उन्होंने अभी तक खेली हैं और शेफाली वर्मा 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। अभी तक 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और भारतीय बल्लेबाजी की जो नींव है वो बननी शुरू होती हुई और बहुत जरूरत है कि इस ओपनिंग साझेदारी से एक बड़ा स्कोर भारत को मिले। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे पुश किया मिड ऑफ पर, जब तक फेन को फील्ड किया जाता तेजी से अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने और इस स्कोर के साथ स्मृति पहुंची 4 के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत 10 रन बिना किसी नुकसान पर 1.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: यस इट बी नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट दैट वी लव टू सी शबनम इस्माइल to Shefali Verma, because compared to Marizan Cup, Shabnam Ismail is giving more pace on the ball and that's what Shefali Verma likes. Very first over for Shabnam Ismail also. She's also got all the experience behind her. Remember, brought out of retirement for this World Cup. Outside the off jump and that's been driven, square driven, that's gone down to the square cover boundary for 4.
2: Ye laga, abha ka choka.
0: और ये शानदार चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे पुश भर किया, टाइमिंग इसमें अच्छी थी। हालांकि फील्डर के पास से ये गेंद निकलती हुई और ये 4 रन उनके बल्ले से निकलते हुए और इन 4 रनों के साथ शेफाली का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 10 के 10 पर। 3 गेंदे अभी उन्होंने खेली है और भारत 1.3 ओवर्स के बाद 14 के अपने स्कोर पर। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स लेग स्टंप के बाहर थी, हल्का सा उसे पुश किया और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने का और स्कोर पहुंचा इसके साथ 15 रन भारत का बिना किसी नुकसान पर। 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ। निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दूसरी इनिंग्स में जो पिच एक्सपर्ट्स की थी उनकी राय थी कि गेंद स्पिन लेगी और भारत ने अपने इस खेमे में 3 स्पिनर्स को चुना हुआ है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप के बाहर और से पुश भर किया और गेंद सीमा रेखे के बाहर 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मृति मांदना के बल्ले से ये कवर बाउंड्री के बाहर खूबसूरत शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को सिर्फ पुश भर किया एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से, अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट और उनके बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका। स्मृति मांदना पहुंची 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 7 गेंदे अभी तक उन्होंने खेली है और 1.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 19 पर। एक अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों को।
3: इस क्रिकेट मैच का आगे का कौथी का हाल अब हम आपको सुनवाएंगे 7:21 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस

0: पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: TLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजमी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। नीट यूजी प्रमुख परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून तक प्रदेश में प्रवेश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच के विकास के प्रमुख केंद्र होते हैं। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति आज जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा,
1: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रति, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी, जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विभिन्न संकायों में से एक से अधिक स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले 20 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए और उपाधियों का वितरण किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 141 विद्यार्थियों को 240 स्वर्ण पदकों का वितरण किया गया। साथ ही 182 शोधार्थियों को पीएचडी सहित विभिन्न उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि
2: रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है, जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12 वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य हुआ है।
0: कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर विमानतल पर स्वागत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल पटेल कुछ देर रुकने के पश्चात हेलीकॉप्टर से श्योपुर जिले के क्रूनो के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इंदौर शहर में सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान हजारों प्रतिभागियों ने 3 मिनट से अधिक समय तक लगातार ब्राह्मणी प्राणायाम किया। आयोजकों ने इसे सामूहिक सहभागिता और योग के बढ़ते जन आंदोलन का प्रतीक बताया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई थी। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी

0: मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जहाज रखरखाव, मरम्मत एवं संचालन को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पोतों का नौसेना में शामिल होना भारत के भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र विकसित भारत के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और आने वाले वर्षों में लाखों नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे।
1: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहनों के साथ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था शामिल थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की गई। यह अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषाओं में सम्पन्न हुई। परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित और पारदर्शी संचालन के लिए 2 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। इनमें पर्यवेक्षक, समन्वयक, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने भ्रामक सूचनाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर भी लगातार निगरानी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज FIH महिला हॉकी कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में टूर्नामेंट टीम के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करेगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह कल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर ऑडियो मासिक पत्रिका रचना का विमोचन किया जाएगा। ये प्रकाशन अकादमी की शैक्षणिक, साहित्यिक एवं ज्ञान विस्तार संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय भोपाल की ओर से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज आसरा वृद्धाश्रम में बड़े उत्साह के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किया गया। नीमच में योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के पावन तट पर सेठानी घाट पर आयोजित योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। प्रधान जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के संरक्षण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमार डावर के निर्देशन में जिला जेल झाबुआ में साप्ताहिक योग अभियान का आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समापन हुआ। मंदसौर के नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश जनजाति संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केन्द्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज श्री कृष्णा मालीवाड़ एवं साथी मांडू द्वारा भील जनजातीय भगोरी

जिया नृत्य एवं घुमन प्रसाद पटेल एवं साथी दमोह द्वारा कांवर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत मारूरा अहिर में प्रशासनिक टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्यवाही की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा संस्थान केवल डिग्री देने वाले ही नहीं बल्कि नवाचार के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

चौपाल के सबे सुनैया भैया बहनिन का उर्मिला बहनी के राम राम। भैया बहनी ये समय बदरी बूंदी करत है, कहूँ कहूँ पानी थोड़ थाड़ बरसत है, पर बिल्कुल देखिए अभी गर्मी बिल्कुल कम नहीं भया है। इतनी उमस सी कि कहबे का करी, कूलर पंखा सब फेल है, मैं रहा ही नहीं पड़े। भैया बहनी अब सबके सुख सुविधा में रहें के आदत हो गई, कोहू के काम करें का मने नहीं पड़े, जबकि सबका मेहनत खूब करें का चाही, जौने बेरामी से बचाव हो सके। हमार दाई नानी हरे बतावत रही हैं कि हम पंचे चुहचुहिया बोलें के पहले दसन कुरई धान चकरा मा खड़ी दरत रहन हैं, फिर ओखा बगरी जौन हो तो ही काड़ी मूसर से काड़त रहन हैं, खड़ा गोहूँ जितबा में पीसत रहन है। एक ही बाद गैया गोरुआरी गोबर करी घर चिंत कई के फिर कहो खाना बनावत रहन है। भैया बहनी सबके घर में संयुक्त तो परिवार अधिक से अधिक होबा करत रही, एक परिवार में कम से कम 10 से 12 जन रहबा करत रही, सब मिलजुल के काम करत रही, बड़ा आपस में प्रेम रहबा करत रहा है। भैया बहनी अब सबके सुख सुविधा में जिए के आदत हो गई, को मेहनत नहीं करें चाहता है, यहीं से मेर मेर रोग और बेरामी हो रही हैं। भैया बहनी स्वस्थ रहें के नीता योग करब बहुत जरूरी है, यहीं से कहा थे योग भगावे रोग, यहीं से हर वरिष 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावा जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में बरिस के सबसे लंबा दिन होवा करत है और योग मनुष्य का दीर्घायु बनावत है। 11 दिसंबर 2014 का संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्य कैद से 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाने के प्रस्ताव के मंजूरी मिली रही है। भारत के यह प्रस्ताव का 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया जा रहा है, जौन कौनो प्रस्ताव दिवस का संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करें के खातिर सबसे कम समय आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के थीम यह आए, योग से स्वास्थ्य निकाह रहत है और उम्र बढ़ा थी। यह योजना यह बात का जोर दे थी कि योग केवल युवा भर के खातिर न हो, बल्कि बढ़त उम्र में घलाए निरोग और आत्मनिर्भर जीवन जिए के एक ठे प्रभावी माध्यम आए। यह योग शारीरिक स्वास्थ्य यह बढ़ावत है, उम्र में जोर के जोड़न के दर्द जकड़न और संतुलन सुधारे में बहुत मदद करत है, मानसिक संतुलन मानसिक तनाव का कम करत है और भावनात्मक मजबूती दे में सहायता करत है। सक्रिय जीवन शैली यह अभ्यास सब आयु वर्ग के लोगन के जीवन के हर चरण में ऊर्जावान और

स्वस्थ राखै के खातिर प्रोत्साहित करत है। 2026 के थीम यही कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आधिकारिक थीम यानी स्वस्थ उम्र बढ़ावे के खातिर योग बहुत जरूरी है। यह थीम यह बतावत है कि जोर देत है कि योग केवल फिटनेस के माध्यम न होए बल्कि बढ़त उम्र कमा शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य राखे के प्रभावी तरीका है। भैया बहनी, भारत के प्राचीन योग परंपरा का वैश्विक पहचान दिवामे वाला यह दिन अब दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान में से एक बन चुका है। करोड़न जन यह अवसर माँ योग अभ्यास करत हैं, साथ ही साथ योग से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभन का अपनामे के संकल्प ले थी। साल 2015 में पहल बेर योग दिवस मनावा गा रहा है जौन आज एक विश्व आंदोलन के रूप लैली सी। साल 2026 के योग दिवस के मायनन मा खास माना जात है। बदलाव जीवन शैली, बढ़त उम्र के साथ होने वाली स्वास्थ्य समस्या और मानसिक तनाव जैसन चुनौतियों के बीच यह मेर के थीम सबका स्वस्थ और सक्रिय जीवन के दिशा में प्रेरित करें के संदेश देते हैं। विशेष के माना हो यह कि योग भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में योग अभ्यास के आयोजन करत ही। जौन उत्तर में ले के उच्च पहाड़ से लेके दक्षिण में कार्क निकोबर के समुद्र तट तक और पूर्वी सीमांत तनाव के से लेके पश्चिम में पवित्र शहर द्वारिका तक के विविध भूभाग शामिल हैं। मैं वायु सैनिकन और उनके परिवार के अलावा स्कूली लड़का बिटियन और एनसीसी कैंडेट घलाए देश के विभिन्न वायुसेना स्टेशन में आयोजित योग अभ्यास में भाग ले थे। योगा दिवस के विषय यह आए स्वास्थ्य वृद्धावस्था के खातिर योग आए जौन जीवन के सब चरण में शारीरिक शक्ति मानसिक अनुकूलता और समग्र कल्याण का बढ़ावा देत है। योग के भूमिका के उल्लेख करत हैं। योग व्यक्ति का स्वस्थ और अधिक संतुलित जीवन जिए के खातिर प्रेरणा करत है, साथ ही साथ अंदर की से के शक्ति और जागरूकता का घलाए बढ़ावत है। भैया, योग से हमार पंचे के स्वास्थ्य निखार हाथ है। योग के माध्यम से हम पंचे कुछ शरीर के ऐसन बिरामी हैं कि जैसन हम पंचे योग से योग कहके ओखा दूर कर सके थे। अब जैसे हमें पंचे के जब ये वजन जौन बढ़ जाते हैं, वजन के कारण हमार पंचे के हर शरीर में मेर मेर के बिरामी हो जाती है। जैसे रेंगे में गोड़न में पीरा हो लागत ही, घुटनन में दर्द हो लागत है, शरीर जकड़ जाते, कौनो काम मने फुर्ती से नहीं कर पावता है। तो अगर हम पंचे योग करी थे तो हम अपने शरीर के वजन का घटा सकी थे। और भैया बहनी, कौनो जरूरी नहीं आए कि हम दौड़ब तबहिन हमा वजन घटी। हम पंचे बैठे बैठे योग के बहुत मेर के प्रकार आवत है। योगा जौन है तो कैयक मेर से कीन जात है। जौन अधिक वजन वाले भैया बहनी अरे ऊ बैठे बैठे बहुत सारे योगा कह के अपने शरीर का स्वस्थ रख सका थे। भैया बहनी, योग से हम पंचे रोग का भगा सकी थे और अपने शरीर का स्वस्थ रख सकी थी। जब हमारा शरीर स्वस्थ रही तब ही चारों का खुशहाली आई और सब कुछ नीको लागी।

0: अब है मुकुल सोनी के गाई है नच नहाई सुनन।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: सुनना,
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ाऊं।
4: तो रोका किसने है, हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में जाओ विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी

0: से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: RDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: भैया बहनी आ जाए रविवार, आज की दिना हम बच्चे अपने सुनैया भैया बहनी का भेंट बत कहाँ सुनावा करी थी, तले ही सुनिए भेंट बत कहाँ।
3: आज है इतवार, आज हमारे कार्यक्रम में हम पंचे जनवहन से भेंट बत कहाँ करवा करी थी, अपने सुनैया भैया बहनी का कुछ विशेष बातन की जम रही देवानों की खाती। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ गोविंद प्रसाद द्विवेदी जी आए हैं। पेशा से तो शिक्षक हैं, पर एक कुशल किसान हैं। इनका खेती बहुत सराहनीय रहा थी। तो आज हमारे गोविंद भाई हमारे सुनैया भैया बहन का कुछ खेती किसानी के बारे में विशेष बात बताई। तो सबसे पहले तो गोविंद भाई, अपना के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जो हम आज अपना हमारे कार्यक्रम में आए।
4: उर्मिला बहनी, अपना का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना अपने कार्यक्रम में हमका आज आमंत्रित करण है।
3: गोविंद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ये जो चौमासी के खेती के पाव तोड़ा है, कौन से करने का चाहिए, यह बात की जनवही हमारे सुनैया भैया बहनी अपना बताई।
4: खेती के पाव तोड़ा बहुत बढ़िया अपना प्रसंग छेड़न है। सबसे पहला काम होते खेत के गाड़ी जोताई, तो उसमें कहा खेत

0: जुताई, माटी का परीक्षण और फसल का चयन और खाद बीज खाद का चयन, मतलब खाद की व्यवस्था,
1: मतलब ये तीन चीज खेती के सबसे प्रमुख अंग
0: ही मुख्य अंग ही। सबसे पहला तो चीजन में का हो चाहिए किसान का जानकारी हो चाहिए। तो पहला काम का है कि जैसे सियारी के फसल निकले के बाद किसानन के चाहिए कि अपने खेत के झाड़ी का करवा दें, जोताई करवा दें। वो जोताई करवाए से किसानन के कई एक चीज के का होता है फायदा हो जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ ऐसा कीटाणु पनपा था जो फसलन का क्या करा था नुकसान पहुँचा रहा था, वो नष्ट हो जाता था। और जेठ बैसाख के तेज धूप में मिट्टी बढ़िया से का हो जाती जल जाती एकदम खरा जाती, वह मिट्टी में उन्हा सियारी के फसल बहुत अच्छी होती।
1: अच्छा ये बताइए गोविंद भाई कि ये तो ये माटी के रख रखाव
0: जी जी
1: तो खेती करे खेती हम बच्चे फसलन के कि कौने में के खेत में कौन फसल बोना चाहिए, यह बात के जल नहीं गई हमारे घर में।
0: हाँ का होगा करा था कुछ जमीनें जैसे अपना यहाँ के जमीन कुछ आई जहाँ पानी कम लगा था, तो मैं जैसे अपना के अरहर है मूंग है उड़द है इनका फसल का करे चाहिए
1: तिलहन फसल
0: का वो भाई चाहिए। और के बाद कुछ जमीनें ऐसा होती जहाँ पानी लगा था रुका था तो मैं धान के फसल वो भाई चाहिए।
1: और गोविंद भाई जैसे मैंने की ये तो ठीक है तो जैसे कुछ फसल का होती है कम दिन में
0: जी जी जी
1: उपजती है
0: जी,
1: और कुछ दलहन होती है
0: जी, हाँ जी।
1: तो कौन दिन वाली खेतन में कैसे बच्चे का कौन उपयोग करना चाहिए धान के की
0: मेरा बहनी यह ध्यान दे चाहिए किसान का कि ओ माँ जैसे पानी के व्यवस्था का है, तो जहाँ पानी यह है कि हमका पर्याप्त मिल जाता है और पानी जमीन में रुका है पानी की अच्छी व्यवस्था है वहाँ वो जो है धान की फसल लग सका था, और जहाँ पानी कम लागत है पानी की व्यवस्था ज्यादा नहीं है वहाँ वो लगना चाहिए हाँ हल्की फसल बोलना चाहिए। तो माँ जैसे उड़द है मूंग है उनका फसल आसानी से लग सकता है।
1: गोविंद भाई जैसे खाद
0: जी जी जी
1: हमारे पंचे के जो फसलन के जान या खाद
0: जी जी
1: और उन्नत किस्म के बीज
0: जी जी
1: तो इनका क्या करे के चाहिए
0: उनका खातिर यह है कि आजकल अपने किसान भैया बहनी का करत हम रासायनिक खाद के उपयोग ज्यादा करे लागे हैं, तो यह रासायनिक खाद जो है तो हमारे मिट्टी के उर्वरा शक्ति का क्या करा थी नष्ट कर दे। तो भैया बहनी को चाहिए कि जो ना गैया भैंसी सब के पास है तो घरे में गोबरा हो जाता है और अगल बगल जो ना पेड़ पौधन के अति पत्ती रहती है तो क्या करें तो बनिया गड्ढा बना लें और गड्ढा में कहा है कि पेड़ पौधन के पत्ती डाल दें और गाय भैंस के गोबर डाल दें और वहाँ से बहुत बढ़िया जैविक का बना थी खाद बना थी। तो खाद के ज्यादा से ज्यादा क्या करा अपने फसल न खेत में वो डाल ताकि अच्छी फसल लग सके और यह उर्वरक खाद के प्रयोग से क्या करा बचे की कोशिश।
1: और देखिए क्या है कि जो रासायनिक खाद है तो हमारे स्वास्थ्य का प्रभाव करती नहीं,
0: स्वास्थ्य का प्रभाव करती है और जो ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति का नष्ट करती
1: है। और ये बताइए गोविंद भाई कि जैसे जो हम बच्चे ये खेती किसानी करी थे
0: जी जी।
1: तो जो उन्नत किस्म के बीज है तो वही तो हम बच्चे बोलते हैं अगर उन्नत किस्म के बीज में बहुत अच्छी फसल न ले पाओ तो जैसे जो खेत हमारे हैं और कुछ जैसे फसल ऐसा है कि जैसे धान है धानों में बहुत मेर की किस्म बोली जाती है तो कुछ जैसे क्या होता है कि कम जगह में अधिक अन्न उगी आवत है मतलब कहा चाहिए कि पैदावार बहुत अच्छी हो तो ओखर जानकारी कैसे बच्चे का मिला थी
0: जी। हम ऐसा है कि जैसे कुछ किसान परंपरागत खेती कर रहे थे पुरान जमाने से जब हम खेती कर पाए तो जमीन का जोत दिन और धान जैसे छिटुआ तब बो दी तो ओम हमका ज्यादा उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। तो एक खातिर किसान भैया बहनी यह करें कि आजकल जो ना तो रिसर्च के धान होती है तो रिसर्च वाली जो धान होती है तो उपयोग करें या तो आजकल रोपा लागे लागे हैं धान के तो रोपा डाले के समय हो थी 15 जून से 20 जून या 25 जून तक रोपा डाल दें का हो तो रोपा में का हुआ करत है कि कुछ ज्यादा समय तक में पकड़ वाली धान होती है किस्म होती है और कुछ धान की किस्म जो होती है कम समय

0: तैयार हो जाती हैं। तोते हिसाब से किसान भैया बहनी जब रोपा डाला तोता सही उचित का कर सकें चयन कैला कम तक देर से पकड़ वाली धान डाल बोगल खैर लगावल खाए तो जो है 15 से 20 जून तक रोपा डाल दें और जब कम समय पकड़ वाली होगा 20 से 25 तक डाल दें। एक अच्छा रोपा सब मैंने न डाला तो कष्ठा डाल दें कहा से क्लियर देखा गया है कि रोपा डाले से 25 दिन के बाद धान लग जाएगा 25 से 30 दिन। यदि ज्यादा समय हम लगाए तो हमको ऊपर भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाएगा।
1: मतलब रोपो के एक समय हो जी, है जी, ना? जी, जी, कि बहुत बड़ा पौधा न हो पाएगा
0: 25 से 30 दिन के अंदर रोपा लगा दीजिए। यदि ज्यादा हो तो हमको मैंने धान के उतना ज्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है तो हम विशेष का कारण ध्यान दें। अब कुछ किसान भैया बहनी क्या करा था कुछ रोपा डाले में लेट कर दिए था तो जब लेट कर दिए तो कई धान की फसल जब लेट हुई तो कई जो है तो गेहूँ के फसल खाती रंग कर लेट हो गई ऐसे गेहूँ को अच्छी फसल जो है लोग नहीं लग पा रहे
1: मतलब अगर ऊँधा कई की खेती हमारा लेट हुई
0: जी जी
1: तो हमने फिर ऊँधा कई की फसल बोने में
0: हाँ और कई फसल बोने में लेट हुई
1: तो फसल
0: हाँ तो हमका हाँ ओकर जो है सही उत्पादन नहीं मिल पा रहा था तो चीज का का रखा विशेष ध्यान रखा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह करा कि हम जो है तो जैविक खाद के उपयोग करें और जैविक खाद किसान भैया बहन अपने घर में बना लें। और आजकल सरकारों कई से विभिन्न प्रकार की स्कीम चलाई जाती है जैसे माटी परीक्षण है तो किसान भैया बहन अपने माटी के परीक्षण करा लें अपने जो है नजदीकी शहर में होकर कार्यालय ऑफिस बने हैं तो वहाँ जाके प्रशिक्षण परीक्षण करा लें उसे क्या होता है कि मिट्टी में जो पता चल जाती है हमका कितनी उर्वरक चाहिए
1: हाँ।
0: तो मतलब मिट्टी की क्षमता कितनी है एम कौन फसल उगाई जाए सका थी उसके हिसाब से किसान भैया अच्छा उत्पादन लग सका था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई जो अपना हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे सुनैया भैया बहन का जन रही की हैं अपना के बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद उर्मिला बहन।
2: अब यह गोविंद प्रसाद द्विवेदी से चौमासे के खेती के तैयारी के बारे में जनबही ली हैं।

अब सरिता साकेत और उनके साथी से ये अजूरी सुनत रहन। भैया बहनी, वन पेड़ पौधा जीव जंतु ये सब हमार पंचे हमारे पंचे के यहाँ के अनमोल धरोहर आही। यह समय जो ने सस्य श्यामला धरती सुंदर, जहाँ सुंदर सुंदर वन और वन्य जीव जंतु रहा थी। वन पेड़ पौधा हम ही पंचे का पर्यावरण प्रदूषण से बचावा थी और शुद्ध हवा हम ही पंचे का दे थी। कहा चाहिए कि जो ये प्राण वायु हुई ये सब हमें पंचे का प्रेरण से मिला थी। भैया बहनी, पेड़ पौधन के सुरक्षा करब हमार पंचे के बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर पेड़ पौधा न रही तो हमारे पंचे के जीवन संकट में आ जाई। हमारे पंचिन के नहीं बल्कि जीव जंतुअन के घला जीवन संकट में आ जाई। काहे कि देखिए कुछ जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं और कुछ विलुप्त हो के कगार माए गए हैं। यही के खातिर सरकार 12 बरिस के केंद्र सरकार वन्य पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण खातिर हरित परिवर्तन का प्राथमिकता दी नहीं। यह प्रयास के तहत देश का वन्य और वृक्ष आवरण बढ़ के 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर हो गए हैं। बाघन की संख्या 3.682 तक पहुंच गई है और रामसर अर्धभूमि 26 से बढ़ के 99 हो गई। भैया बहनी, बाघ और हाथी देश में प्रमुख प्रजाति के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासन का सुरक्षित करें के खातिर यह अधिनियम का तेजी से आगे बढ़ावा गया है। बाघ के आबादी में वृद्धि की गई और प्रयासन के परिणाम स्वरूप देश में बाघन के संख्या 3.682 हो गई। भैया बहनी, केंद्र सरकार 12 वर्ष में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की नहीं। विलुप्त हो चुके जीव जो चीता के हैं देश में वापसी भई और अपना पंजी से यह बताई वन्य क्षेत्र के विस्तार भाए। पीछे

एक दशक से अधिक समय में भारत के वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में कई एक बड़े और निर्णय कदम उठाए गए। भारत में बाघ के संख्या बहुत बढ़ोतरी भई। ये जब जीव जंतु हैं तो इनकर संख्या धीरे धीरे घटत जात रही, लेकिन सरकार के प्रयास से ये बहुत आगे बढ़ गई, 3.882 हो गई। एक ही अलावा शेरन के आबादी घलाए बहुत वृद्ध भई। विश्व के पहल अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत भारत में चीता का फिर से वापस ले आवा गया है, जिनका पहल देश में विलुप्त घोषित पहले देश में विलुप्त घोषित कई दिन का रहा है। भैया बहनी, हमारे यहाँ कई एक मेर के जीव जंतु वन पेड़ पौधा पाए जाते जो उन विलुप्त हो के कगार में आए गए रहे हैं, उनकर बचाव की जा रहा है। जैसे गिद्ध गौरैया अब बहुत कम देखने का मिलती है। पहले अगर कौनो घरेलू जानवर मर जाए और वो खा ले जाए के गांव से बाहर एकांत रख देते रहे तो इतनी अपनी आप गिद्ध गौरैया उधराए परत रही हैं कि जाने मिल जाता रहा कि कहूँ माल मवेशी मारा पड़ा लागे है, गिद्ध खाद उमड़ाए लागी। तो भैया बहनी, ये जो जीव जंतु हैं ये एक चक्र होबा करत है। अपना पंचे देखी जैसे हद चौमास के महीना लग गए तो किरबा फतिरबा पने नाप पहले चिड्डा उधई ही, फिर पखियारी उधई ही, एक बात फिर काले काले तेलिया किरबा उधई, तो एक चक्र होबा करत है। भैया बहनी, ये जो जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो के कगार में आए गए रहे हैं, सरकार यह प्रयास कर रही कि इनका सुरक्षित इकट्ठा करके चिड़िया घर बनाए जाए रहे हैं, बड़े बड़े चिड़िया घर बनाए जाए रहे हैं, वहाँ उन्हें सुरक्षित रखा जाता है और उनके खाए पिए के व्यवस्था की जाती, उनके रख रखाव खातिर ऐसा आदमी रखे जाते कि उनका सब जतन करत रहती। और भैया बहनी, जो उन्हें चिड़िया घर हैं इनमें से आमदनी के स्रोतों बन गई, ये पर्यटक स्थल बने जाए रहे, इन जो उन चिड़िया घर बनाए जाते यहाँ देखने वाले जो उन जात हैं उनसे व्यवसाय हो रहा है, वो एक व्यवसाय के रूप दीन जा रहा है। जहाँ बनाए जाते वहाँ अगल बगल दुकान रखी जाती हैं और वहाँ जाए आने वाले भैया बहनी है इनका खाए पिए के व्यवस्था, तो मतलब कहा चाहिए कि वहाँ के रहने वाले आसपास भैया बहनी है इनका रोजगारों मिला थे। और भैया बहनी देखी, हम पंचे के अब बरबत कहा बहुत भा है और चले कि अब जूनो होत लागी, तो हम अपनी सुनैया भैया बहनी इनका कार्यक्रम के पता बताओ कि हमारे भैया बहनी हरे देखी का होत है कि जौन हमारे पंचे के खातिर बनाए गए हैं चिड़िया घर या जीव जंतुअन के रहें के आवास बनाए गए हैं, उनके आवासन के सुरक्षा के खातिर हम ही पंचे का प्रयास करने का पड़ी। और देखी जब हम पंचे एक हर सुरक्षा करब तभी हमारे पंचे के देश खुशहाल रही। तो अब लिखी पता चौपाल की चिट्ठी द्वारा उप निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी सिविल लाइन रीवा मध्य प्रदेश और पिन कोड है 4800001। भैया बहनी यह पता में रही पाती के परिखाओ और अब ले थे आज्ञा चौपाल के सभी सुनैया भैया बहनी का उर्मिला बहनी के राम राम, जय जवान जय किसान।

0: विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज

0: emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
1: Thank you.
0: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में. सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है. सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
1: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है. तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था. तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए. अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे. मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी. तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे. हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ. स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई. जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं. अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%. सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ. और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली, और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में. 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है. और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था. तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
0: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चिनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन्ड दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed as suspicion.
0: Yes.
2: You are always seen as being a tax

0: इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वविद्या होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था. और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो. एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में. और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है. और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चली नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था. अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो.
1: बिल्कुल.
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में. अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया. और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के.
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है.
0: बिल्कुल. आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था. अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे. पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे. और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए. और इसके खास बात के रिफॉर्म्स अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं.
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है. जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो. एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ग्रैप जो 2015 में शुरू किया गया और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है.

0: बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, तो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
0: जी,
1: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप एनवायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करें कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
0: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
0: Yes.
2: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
0: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव,
2: जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी, हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी, तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारा RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%. तो मेरा कहने का

मिलावा ने चार ओवर में 33 रन, आयमोंगा खाका ने चार ओवर में 31 रन और नदीम डिकलाक ने दो ओवर में 16 रन। अगली गेंद और उसे खेला गया है डीप कवर्स की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन बल्लेबाजों ने चुराया और इस एक रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 153 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ग्रुप ए का ये जो अहम मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड के इस

0: और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उथरा गणेशन। और आप जानते हैं कि 159 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया है साउथ अफ्रीका को। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बैटल ऑफ वॉरियर्स है, वो वॉरियर जो 50 ओवर का जो फॉर्मेट था उस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले थे, लेकिन ये मुकाबला कुछ वैसा ही लग रहा है। सबसे पहले वैशाली आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे खुश हैं स्कोर के साथ?
1: थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं लैक हो गई है, एंड कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसके बैट से कॉन्टिन्यू स्कोर आया हो।
0: ओके,
1: एंड उसके साथ अगर देखा जाए इस मैच की बैटिंग लाइनअप के बारे में तो मोस्टली आउट एक ही वे में हुए, एंड उस पर हमें फोकस करना चाहिए।
0: वो भी समझा दीजिए किस वे में हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा मतलब,
1: हमें अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना चाहिए था, जो हम उसको कट करके खेल रहे थे वो नहीं करना था हमें। हम हमेशा लेग के साइड पे क्यों रन देखने की कोशिश करते हैं, जब हम कवर्स के ऊपर से भी हम इतना जिगरा रखते हैं कि मार सकते हैं, तो जो भी हम कर सकते थे उसको माइंड, जो भी बैटर आ रहा था, जेमिमा भी आई, तो उनको ये देखना चाहिए था कि बैटर कैसे आउट होके गया कि वो गलती हम भी ना करें।
0: एक और शख्स हमारे साथ यहाँ है रविंदर जी, लेकिन एक मोहतरमा है जिनकी आवाज बड़ी मीठी है, कोयल सी उनकी बोली है, आपके चेहरे में स्माइल कम होगी पर 159 अच्छा स्कोर होता मुझे था
2: जी, लेकिन शायद उम्मीद से कुछ कम रह गया जो हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले उम्मीद जताई थी। रविंदर, जो हम पहले बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की, कि अगर उन पर प्रेशर आया तो क्या वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आज के प्रदर्शन को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए, स्टार्ट तो अच्छा ही था, तीन पहले जो स्मृति आउट हुई 3 में 30 थे, 6 में 54 रन थे, स्टार्ट में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जब विकेट जो गई है, वो सबसे बड़ी बात है कि विकेट थोड़ा स्लो था, इतना विकेट पे जो स्लो था, उनके शॉट्स पे जो रिवर्स जो उल्टे खेल रहे थे, रिवर्स वगैरह कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा पेस चाहिए आपको बॉल के अंदर, पेस होगा तभी आप उसको शॉर्ट फाइनल लेग के ऊपर से मार सकते हैं, लेकिन अगर आप में पेस नहीं, फ्लाइटेड बॉलें उनको आप मारोगे तो फाइनल लेग पे कैच ही जाएगा। सबसे बड़ी गलती करी स्मृति ने, जो इतना बढ़िया बैटिंग करते करते 3 ओवर में ये 30 रन का स्टार्ट था, उसके बाद ये गलत शॉट खेला। 160 रन इस विकेट में मुझे कम लग रहे हैं, 180 का हमारा जो था कि 180 तो बनने चाहिए, लेकिन अब डिपेंड, विकेट स्लो है, स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो ये मैच हो सकता है कि अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करें तभी हमारे, तभी मैच में कुछ फाइट।
0: सो कमिंग टू यू उत्तरा, नो क्रेज टेकन अवे फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स मार्जिन कैप 2 for 27 in 4, शबनम इस्माइल 2 for 22 in 4, बट अपार्ट फ्रॉम दैट something which I feel did the damage for the Indian innings were the 40 dot balls, almost 40 dot balls that the Indians played.
4: I think the dot balls had a dual effect. One, of course, they kept the scoring low, and two, those dot balls were the ones that forced Indian players to go for shots which otherwise perhaps they would not have done. Like Vaishali said, there were no partnerships, and that was also because every couple of dot balls or every 3 or 4 dot balls meant they tried to go for a big shot without realizing that just swinging your bat does not bring you runs, especially when you're up.
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब निरंतर करेंगे 9:30 से। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय शामिल हैं।
7: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
6: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
7: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
7: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
7: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
8: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
6: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्री हिट 20 में। मेरा नाम है मुनीश जॉली, मेरे साथ मुदिता हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पे मौजूद हैं। वैशाली माथुर, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, रविंद्र सिंह बीसीसीआई से क्वालिफाइड कोच,

0: समाचार टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20

0: लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
1: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से 2 स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जीडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे।

0: रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किर ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर तीन मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख का फैसला कुन उंसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वजीर आजम ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के तीन जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS अग्र शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा MSMEs ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
0: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनक्द किया गया। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। NTA ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामोनिगार से।
2: इम्तिहानात के तमाम मराकज पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। CCTV निगरानी के लिए NTA हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, मुख्यालय तालीम के तहत मरकज की मामलत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमा डाक, भारतीय फजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इन इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: CBSE ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीजे मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीजे का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीजे भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताजा मालूमात के लिए सिर्फ CBSE के सरकारी जराये और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायन में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स NDRF और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला श्री जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाने के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासरा खानदानों के तई अपनी

0: तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले पांच दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने एफआईएच खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दम्बोला में तीन मुल्कों की सीरीज में आज भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारत ए ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मिथुलन, रविंद्र फर्नांडो और मनुजा सहान ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। बढ़ते मुश्तरका खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाद लाबेम शहर में मुनदा 56वीं ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का 1 तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनघास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद उबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्े में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर एफआईएच नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
2: पर्याप्त समय अपने छोर बदलने का, ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है साउथ अफ्रीका पर का 45 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, और बाकी जो 11 ओवर यानी कि 66 गेंदें बची हैं उन पर 114 रन उनको चाहिए 10.38 की औसत से। 10.36, 10.4 the required run rate. The last wicket fell when the score was 25, so these two have added 45 for the third wicket. So this is the biggest partnership so far. They've got to lick in these two, Cap and Tasman Blitz, but they can't wait for too long before upping the ante. It's only 10.4 now, so every over where you score less than 10 runs an over is going to increase that and take it to 11, 12 and 13. First ball of a fresh over from Prema Rawat, that's played over the infield, on the offside, down to the extra cover boundary for 4.
3: आभा का शो।

0: मार्जन कप के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ प्रेमा का ये गेंद था, थोड़ा सा फ्लाइटेड जरूर था लेकिन इनसाइड आउट हुई और उसे कवर बाउंड्री के ऊपर से उन्होंने चार रन के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इसीलिए इनका शुमार वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं उनमें किया जाता है, गेंदबाजी के रूप में भी और बल्लेबाजी के भी ये दोनों में सक्षम है और इसका आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी साउथ अफ्रीका की टीम को कि मार्जन कैप किस अंदाज में और कितनी देर तक बल्लेबाजी करती हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे उठाकर मारा है चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: अंपायर की तरफ से इशारा है, as you can see at the boundary at backward square leg and it was airborne for a fair length of time and magnificent attempt there but just eluding, oh that just took the fingertips and went over the boundary for a six, but one must give full credit for the attempt that was made on the square leg boundary over there. So but from South Africa's perspective, 10 runs in the first two overs, and this is what we were discussing, they'll probably go after the debutant in this particular over, Prema Rawat. Here is that's once again down the leg side and she says was it that a wide, it is a wide.
0: और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 56/2, 9.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत ने अपने पहले 50 रन बनाए थे 26 गेंदों का सामना करते हुए और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले रन बनाए 56 गेंदों का सामना करते हुए भारत साउथ अफ्रीका ने अपने 50 रन बनाए और अगली गेंद को डीप कवर्स की तरफ पुश किया गया, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन चुराने का और इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं, 3 गेंद हुई हैं और इसमें एक वाइड है 57 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, 63 बॉलों में 102 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस रन चेज को पूरा करने के लिए। अगली गेंद आगे निकलकर मारने की कोशिश लेकिन प्रेमा ने खुद फॉलो किया बैट्समैन को और मजबूर किया कि उसे रक्षात्मक तरीके से खेला जाए और खुद गेंद को फील्ड किया।
2: 32 of 25 deliveries this partnership, so they're getting into a groove, a few overs like this and you know these two have the ability. Here's the last delivery of Prema Rawat, just a trifle short, that's been pulled away down to mid wicket, halfway down to the boundary and before the return can come they're through for a single and the three boundary riders are deep square leg, deep mid wicket and long on or on the on side. And should there be anything short, the batters will try to pierce it through that gap, those two gaps that are there. As here is Prema Rawat, the last time in this over, wide of the off stump, waits for it, does by his hand cap, steers it down to the fielder, inside the 30 yard, that is Deepthi Sharma, direct hit, Richa Ghosh goes up, will the umpire refer it? And she says, no, I'm quite happy. And this over has cost India 16 runs and at the end of 10 overs, halfway mark, South Africa chasing 159 for 2, 100 needed in the remaining 10.
0: 10 ओवर में 100 रन चाहिए यानी कि 10 रन प्रति ओवर की औसत से अब साउथ अफ्रीका को ये स्कोर चेस करने के लिए रन बनाने पड़ेंगे। आखिरी ओवर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पाले में गया, 17 रन आए उस ओवर में और दोनों बल्लेबाज मार्जोना कप 17 पर खेल रही हैं और ब्रिट्स अब अपने पैर जमाती हुई, अपनी आंखें जमाती हुई पहुंच गई हैं 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर। 22 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, उसमें एक चौका शामिल है और मार्जन कैप ने अभी तक 15 गेंदों में 17 रन बनाए हैं जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है। 113.33 की औसत से वो अभी तक बल्लेबाजी कर रही हैं, 59 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद। भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, शेफाली वर्मा ने 2 ओवर्स में 9 रन दिए हैं, नंदनी शर्मा ने 1 ओवर में 5 रन, अरुंधति रेड्डी ने 2 ओवर में 14 रन, श्री चंदी ने 2 ओवर 1 मिडन 2 रन 2 विकेट्स। नंदनी अपने ओवर के साथ राइट आर्म ओवर स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, कवर्स में उसे धीरे से पुश किया, पर्याप्त समय था बल्लेबाजों को छोर बदलने के लिए और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 10.1 ओवर्स की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज अब तक कर चुके हैं, मार्जन कैप खेल रही है।

18 पर ब्रिट्स अब सामना करेंगी नंदनी के ओवर का दूसरी गेंद का जो 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है नंदनी शर्मा। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे उठाया है लॉन्ग ऑन का फील्डर। एक बार तो दिलचस्पी जरूर ले रहा था इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद उनसे काफी आगे गिरी

0: And that's why it went over the bowlers at India, but well short of Radha Yadav there. Two singles in this over so far. 98 needed of 58. Nandini Sharma. Right in the block hole, well bowled, slower through the air. And Marizan Kapp can do no more than push it back along the wicket. And Richa Ghosh from behind the stumps applauds that delivery. This is getting to be a good over. Remember, the last one was a touch expensive. This was a slow ball. Right in the block hole there. Very well bowled by Nandini Sharma. And she's happy with it. The wicketkeeper is happy with it. Just the two runs in the first three deliveries. Nandini Sharma to Marizan Kapp. And this time, she wants to go through with this stroke. And once again, very, very well bowled. So this is getting to be a very good over. And Marizan Kapp has to concede another dot ball as the ball goes through.
1: स्कोर 61 पर 61 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर दत्त शमला व चार ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और इस ओवर में एक बहुत ही अहम जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है मैरिजन कप और नंदिनी के बीच में लेग स्टंप के बाहर उसे स्कूप किया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर चार रन
2: ये लगा आभा का चौका
0: This time the experience Marizan Kapp getting better of Nandini Sharma. Picks it up from outside off and deposits it over the fielder there inside the 30-yard circle at fine leg. Well over her, soaring over her down to the fine leg boundary for four. So six runs in this over so far. Remember they need around 10.25. Can Nandini Sharma end this well? Kapp will lead the boundary. Last ball coming up and Kapp sweeps it round the corner. Will she get it down to the back of the square leg boundary? Will be cut off beautifully and they go through for two. So eight runs in this over from Nandini Sharma and 11 overs bowled. South Africa chasing 159.67 for two.
1: 67 run do khiladi ke nuksan par Marizan Kapp khel rahi hai 24 ke apne vyaktigat yog par aur तास्मिन ब्रिट्स खेल रही हैं 22 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट होने वाले दो खिलाड़ी लॉरा वॉलफार्ट 20 रन बनाकर आउट हुए थे और एनवी डक्सन ने स्कोरर्स को तकलीफ नहीं दी थी शून्य पर आउट होकर गई थी दोनों विकेट्स 25 के स्कोर पर गिनी थी और उसके बाद अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी करी है करीब करीब अभी ये पार्टनरशिप 42 रन तक पहुंच गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत अहम ये पार्टनरशिप है साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव को लेकर क्योंकि अगर इस मैच में बने रहना है दीप्ति शर्मा ने ओवर की शुरुआत करती हुई ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और उसे स्क्वेयर लेग की तरफ खेलना चाहती थी ब्रिट्स नाकामयाब हुई गेंद उनके शरीर पर लगी कोई नुकसान नहीं कोई स्कोर नहीं स्कोर 67 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 11.1 ओवर्स के बाद 53 गेंदों में 92 रन चाहिए
0: जॉन द विकेट कम्स ब्रिट्स टू द नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम दीप्ति शर्मा हॉइस्ट इट हार्ड एन आई फॉर अ सिक्स ओवर द बॉलर्स हेड
2: ये लगा आभा का छक्का
1: बेहतरीन शॉट था ये ब्रिट्स का आगे आई और बल्ले को पूरी तरह गेंद के नीचे लाकर जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक और 76 मीटर लंबा यह छक्का था ब्रिट्स के बल्ले से निकला हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 73 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर अगली गेंद मारना चाहती थी और यह अपील आउट अंपायर की तरफ से इशारा आउट का लेकिन ब्रिट्स ने थर्ड अंपायर से मदद मांगी है कि क्या ये गेंद उनके बल्ले को लगकर पैड पर गई है
0: शी सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट द मोमेंट अंपायर गिव इट आउट शी वेंट अप इमीडिएटली इफ शी इज नॉट गॉट बैट ऑन टू दैट दैट वाज डेड स्ट्रेट सो द ओनली थिंग इज शी फील शी गॉट ग्लव और बैट ऑन टू दैट As the third umpire is having a good look at that, was there an inside edge? Onto that is what the third umpire will have a look at. And that will tell us whether there was bat onto that. And it does appear that probably there was bat onto that. And the umpire will have to reverse the decision

0: So very clearly, Tasman Brits knew that there was bat onto that, and she got it spot on. 86 needed of 51. Six runs in three deliveries from Deepti Sharma so far. And this is going to be a very interesting contest, because now the South Africans will want to up it. It's around 10 runs and over. As we keep saying, they don't want to take it too high. Next delivery from Deepti Sharma down the wicket comes Brits and drives it in a controlled manner down to mid-wicket right on the boundary, and they get a couple for that. Now what the South Africans are doing to counter the Indian spinners is using their feet, trying to come to the pitch of the delivery. And good stop there right on the mid-wicket boundary by Radha Yadav, who's one of the better fielders in the Indian squad. 50 partnership of 37 deliveries. Marizan Cup getting 24 of that and 25 to Tasman Brits. Right in the block hole, drilled away down to long on, and they go through for one. With that single, 76 for 2, 83 needed of 49.
1: 11 दशमलव 5 overs की जो गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने करें उसमें 76 रन बने हैं. 49 बॉलों में 83 रन और चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए, और भारत को चाहिए 8 विकेट्स इस मैच को जीतने के लिए. हालांकि इस ओवर में एक अपील थी जिसे वापस किया गया. अगली गेंद हल्का सा पुश भर किया गया लॉन्ग ऑन पर जमीमा के पास. जब तक गेंद पहुंचे, बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले. 12 ओवर की गेम की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 77 रन, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर. मैरिजन कप खेल रही है 25 के अपने व्यक्तिगत योग पर. 21 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है. इस 25 रनों में दो चौके और एक छक्का शामिल है. और तस्मिन ब्रिट्स जो अब बहुत ही मुस्तैदी से अपनी आंखें जमा चुकी हैं और एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पारी खेल रही हैं. 31 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर हैं. 28 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं. एक चौका और एक छक्का जो उन्होंने पिछले दीप्ति शर्मा के ओवर में लगाया था उसके साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर है 31 रन. साउथ अफ्रीका का स्कोर है 77 रन, दो खिलाड़ियों के नुकसान पर. 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद 6.42 के रन रेट पर अभी बल्लेबाजी हो रही है, और 10.25 की औसत चाहिए. अगली गेंद श्री चरनी की, अच्छी गेंद वापस खेला उसे कप्तान हरमनप्रीत कौर ने. एक बार फिर से अपने जो मेन बॉलर है श्री चरनी को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया है. सिर्फ उनकी मंशा ये है कि विकेट हासिल करी जाए. अगली गेंद और उसको उठाकर मारा है, और ये एक कैच की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे. गेंद सीमा रेखा पर फील्ड करी गई, एक अच्छी फील्डिंग का मुजहरा. राधा ने गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन गेंद उनके हाथ से छटकी. दो रन चुराए बल्लेबाजों ने. एक अच्छा प्रयास जरूर था लेकिन क्रिकेट को जब आप इस लेवल पर खेलते हैं तो ऐसे कैचेस पकड़ने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने अपनी टीम को जीत के लिए अग्रसर करना हो. श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद सामने उनके मार्जन का, और इस गेंद को उन्होंने उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन.
0: वेल टॉस अप बाय श्री चरनी दिस टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप.
1: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा हुआ 83 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर. मैरिजन कप जैसे खिलाड़ी को आप अगर जीवन दान देंगे तो वो अपनी प्रतिभा का जौहर आपको जल्दी दिखाएंगी. और अगले ही गेंद पर चौका जड़ा, जिसे कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कने की बात. और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 83 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर. मैरिजन कप जो है वो अब पहुंच गई है 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर. और साउथ अफ्रीका 83 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर. श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद और उसे हल्का सा पुश भर किया डीप मिड विकेट पर. बॉल को फील्ड किया गया लेकिन बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट. दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. हालांकि जमीमा रॉड्रिक्स का जो थ्रो था वो बिल्कुल विकेट के ऊपर था लेकिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने अपने अपने छोरों को अच्छी से संभाल के रखा. और ये दो रन के साथ स्कोर पढ़कर पहुंचा 85 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर.
0: दिस इज व्हाट यू कैन अचीव इफ यू ड्रैग द बैट वेरी वेल ड्रैग्ड इन बाय टैस्मन.

0: hundreds over there, and now 85 for 2, 74 to 44. Last ball, penultimate ball of the over coming up down the leg side. That's been lofted over fine legs and down to the fine leg boundary for 4.
1: ये लगा आभा का चौका।
2: मैडिसन कप अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाती हुई, जो अभी अभी उन्हें एक जीवन दान मिला था, उसके बाद उन्होंने अपने बल्लेबाजी का जलवा और दिखाना शुरू किया और इस खूबसूरत चौके के साथ उनका स्कोर पहुंच गया 37 रन और श्रीलंका साउथ अफ्रीका बढ़ती हुई आगे तेजी से 89 for 2, 12.4 ओवर्स के बाद 43 गेंदों में 70 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच जीतने के लिए। शिचनिया अपने ओवर की आखिरी गेंद और उस गेंद को हल्का सा डीप मिड विकेट की तरफ मोड़ा और एक रन चुराया बल्लेबाजों ने, 90 पर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का स्कोर इस सिंगल के साथ। और 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका 90 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर, बाकी बचे 7 ओवर यानी कि 42 गेंदों में 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को जीतने के लिए। और भारत को अब बहुत जल्द चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका की कुछ विकेट्स इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। हालांकि पिछले ओवर में एक मौका जरूर लगा था लेकिन कैच को लपका नहीं गया और जीवन दान मिला मैरिसन कप को, और मैरिसन कप ने उस जीवन दान के बाद अपने बल्ले को घुमाना शुरू किया। 2 चौके उन्होंने उसके बाद जरूर लगाए और स्कोर भर बढ़कर पहुंचता हुआ साउथ अफ्रीका का 90 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
0: दिस पार्टनरशिप हैज बीन गुड फॉर साउथ अफ्रीका 65, कप इज 38, टेस्ट विकेट इज 31, द रिक्वायर्ड रन रेट इज 9.9 ऑलमोस्ट। Now 7 overs remain. If these two stay there for another 2 or 3 overs, then South Africa can probably think that even 10 or 11 per over is possible with wickets in hand. From India's perspective now, India would like to get a wicket or two if possible over here, because these two are well entrenched, are Marizan Cup and Tasman Bridge. Both of them are really looking good. Remember, the last over from Shree Channi was expensive. She bowled so well in her first 2 overs, and in the last over we saw her getting pummeled for boundaries as well. 69 needed of 42, and one of the reasons has been that Karp and Brits have started using the feet, not allowing the ball to grip and turn, getting to the pitch of the ball and playing ground strokes as well as lofted strokes, and also hit a couple of sixes. Shefali Verma coming in this time to Marizan Cup, short and length, and that's been hit away into the covers, and that's well fielded by Deepti Sharma. No runs on dot ball. Every dot ball will matter, every boundary will matter, and every good fielding effort will matter. Indians have said 4 to 6 runs already. Shefali Verma short and length, and that's played past Midon inside the 30-yard circle for a single. Singles are okay from India's perspective. South Africa will certainly need boundaries from here on. Karp is 31, Brits is 31, Karp is 39, partnership is 66, 10.2 the required run rate from here on. And this one is played into the covers. They want to run and they get it in the end also. Good calling, good response. But from India's perspective, Shefali has started quite well over here. Just 2 runs of 3 deliveries. She's cutting pace on the ball. 67 needed of 39 deliveries. Both the dugouts are quite tense because next 2 or 3 overs will define which way this is going. Shefali gives that ball more air. Drilled too long off. One of the things we've seen in this over is they're not giving the ball too much air, not allowing the batters to use their feet, come to the pitch of that one. She's holding it back, and after quite 3 or 4 overs, we've seen the ball being pitched short, faster through the air.
2: बिल्कुल जी, अगली गेंद और उसे धीरे से पुश भर कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए। लॉन्ग हैंडल्स का इस्तेमाल हल्का हल्का सा मैरिसन कप की तरफ से किया गया, जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए, 2 चौके लगाए, वो लॉन्ग हैंडल्स के साथ उन्होंने 2 चौके लगाए थे, और उसके साथ अब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू किया और फ्लाइट को भी कम किया, जिससे बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हुई। मैरिसन कप खेल रही है 40 के अपने व्यक्तिगत योग पर। शेफाली वर्मा के ओवर की आखिरी गेंद और एक तेज स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के खड़े फील्डर्स के पास, एक रन के लिए पर्याप्त समय था। 14 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का

0: 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर अगली 36 गेंदों में 64 रन दरकार हैं। साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए भारत ने 158 रन बनाए थे अपने पहले 20 ओवर्स में, और अब बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने अभी तक 14 ओवर्स में, बाकी 6 ओवर्स में 64 रन उन्हें बनाने हैं 10.67 की औसत से। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा पार्टनरशिप दोनों ने बिल्ड किया, अभी तक 70 रन बनाए हैं इन्होंने तीसरे विकेट के लिए। मॉरिसन कैप्स खेल रही हैं 41 पर और ब्रिट्स खेल रही हैं 33 के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, शेफाली वर्मा ने 3 ओवर किए 14 रन दिए हैं, नंदनी शर्मा ने 2 ओवर किए हैं, अरुंधति रेड्डी 2 ओवर, श्री चरनी ने 3 ओवर किए हैं, प्रेमा रावत ने 2 ओवर किए हैं जो उनका पहला मैच है, और दीप्ति शर्मा ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं। टर्मिन ब्रिट्स और मॉरिसन कैप ने दोनों के बीच में ये चौथीवां अर्धशतक की साझेदारी है, इससे पहले उन्होंने 69 रन की साझेदारी करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, 58 रन की भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 में, 96 रन की भारत के अगेंस्ट 2024 में, और आज 70 रन से ऊपर वो जोड़ चुकी हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस ग्राउंड में। एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक अहम मैच जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर खेला जा रहा है।
1: सिक्स ओवर्स लेफ्ट नाउ इन दिस इनिंग्स एंड यू नो श्री चरनी हैज गॉट वन ओवर लेफ्ट, शी विल डेफिनेटली बोल दैट। शेफाली वर्मा हैज गॉट वन, शी विल बोल दैट। नाउ आफ्टर दैट 4 ओवर्स, दीप्ति शर्मा हैज गॉट 2 ओवर्स लेफ्ट, डेफिनेटली शी विल बोल दैट। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी द रिमेनिंग 2 ओवर्स आउट ऑफ द 6, after Shefali bowls one over, Sri Chandi bowls one, Deepti bowls two more will remain, and Nandini Sharma, Arundhati Reddy and Prema Rawat, the three bowlers that we've seen apart from Shefali, Sri Chandi and Deepti, who will get the remaining 2 overs, may not be the debutant Prema Rawat. She's been expensive, can't blame her, it's her first game. It could probably be 2 overs shared between Nandini Sharma and Arundhati Reddy. That could be the way in which the remaining 6 overs could be bowled.
0: भारत ने अब जब पहले बल्लेबाजी करी थी अपने 20 ओवर में 158 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 39 डॉट बॉल्स थी, 18 चौके उसमें शामिल थे और एक छक्का भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए थे अपने 158 रन पूरा करने के लिए।
1: फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर एंड एज we'll have to wait and watch who actually starts off the bowling operations first for the first ball of a fresh over. But yes, from India's perspective, we've seen some wonderful fielding as well as just the odd catch that was dropped. One would say that was a good attempt, actually, to be very fair to Radha Yadav, rather than say that that was a drop catch. It was a wonderful effort. She's one of the better fielders India's got. So 6 overs remaining now and 10.67 the required run rate, and this partnership has yielded 70. Yes, Arundhati Reddy, we said she'll probably bowl one over. She's got the ball in her hand, and South Africa now 95 for 2, required run rate 10.67 from here on. From close to the sums, full toss. That's been clobbered away, but there is a fielder there, Jemima Rodrigues, patrolling that boundary at mid-wicket. Just the one. 63 of 35 from here on for South Africa to go through. If one were to look at it, this is even more a crucial game for South Africa than it is for India, while it's important for both, because India, if they win here, they'll be in the driver's seat. Arundhati Reddy, and that's been lofted over the bowler's head. That'll go down a couple of bounces to the side screen for 4.
2: ये लगा आभा का चौका,
0: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर साउथ अफ्रीका का पहुंचा हुआ 3 अंकों पर 100 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 14.2 ओवर्स के बाद ये स्कोर 100 पर पहुंचा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और सीधे बल्ले से उसे उठाकर मारा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर पार्ड पर लगी और भागकर 1 रन चुराया और स्कोर इस 1 रन के साथ 101 पर पहुंचा 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 14.3 ओवर्स के बाद। साउथ अफ्रीका ने अपने पहले 50 रन पूरे किए थे 56 गेंदों पर और दूसरे 50 रन

0: हमारे स्कोरर रावत जी बता रहे हैं उन्होंने 30 गेंदों में पूरे किए, इसका मतलब बल्लेबाजी अब काफी तेज हो रही है। अनुदिति रॉय अपने ओवर की अगली गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे स्कूप कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका,
2: बैड बॉल फ्रॉम अनुदिति रेरी डाउन द लेग साइड एंड ऑल दैट द बैटर हैड टू डू इज हेल्प इट्स ऑन इट्स वे, which he did so beautifully. Marizan Cup just lofting it nonchalantly down to the final leg boundary for 4, turning out to be expensive this over from Anudhati Reddy. 54 of 32 now, 14.4 overs, 5 points to go after this. Partnership is now worth 80 and the required run rate just a touch over 10.13. Remember, the last wicket fell when it was 25. Looks like a long, long time back. Anudhati Reddy. This time to Marizan Cup, who picks it up from outside the off stump and deposits it down to the mid-wicket boundary for 4 more.
1: ये लगा आभा का चौका।
0: और इस चौके के साथ मैरिजन कप का अर्धशतक पूरा, 34 गेंदों में इन्होंने अपने ये अर्धशतक पूरा किया। इन 50 रनों में 6 चौके शामिल हैं और एक खूबसूरत छक्का इस ओवर में, अनुदिति रेड्डी के ओवर में। इस ओवर में अभी तक वो 3 चौके जमा चुकी हैं, 3 चौके आ चुके हैं और मैरिजन कप दिखाती हुई अपने बल्लेबाजी का जौहर और क्यों उन्हें विश्व का सर्वोत्तम ऑलराउंडर माना जाता है, उस लिस्ट में उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है। आज साउथ अफ्रीका के लिए एक अहम पारी खेलती हुई, अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे हल्का सा पुश भर किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बड़ी मुस्तैदी से 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 52 और 111 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 15 ओवर में। मैरिजन कप की ये 6वीं अर्धशतकीय पारी थी, उनके बल्ले से आए हुए ये 6वीं अर्धशतकीय पारी थी उनके करियर की और आज इस महत्वपूर्ण और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए अभी तक 52 रन अर्जित किए हैं और अपनी टीम को मुश्किल वाली जो छोर था उसमें से बाहर निकालने की अपने पूरी कोशिश करते हुए, जो रन रेट एक समय बढ़कर 10.9 तक चला गया था वो अब घटकर 9.6 रह गया है, यानी कि बचे 5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए।
2: यस इंडीड, दिस पार्टनरशिप इज नाउ टेकिंग द मैच डाउन टू द वायर, दे आर मेकिंग अ फाइट ऑफ इट। 111 फॉर 2, कैप इज 52, डैशमैन ब्रिट्स इज 37, दिस पार्टनरशिप 86 एंड दैट्स कम एट अ वेरी गुड रन रेट एज वेल, particularly in the last 2-3 overs. The last over from Anudhati Reddy was 16 runs, very very expensive, the most expensive of this innings so far. Deepti Sharma has the ball in hand, 48 of 30 needed from outside the off stump, she wants to pummel it, does Brits, and the ball ricocheting on the onside for just a 1, should be leg byes and the impact was certainly outside off. The Indians having a thought there, but very clearly inside, very impact very clearly outside off. Now Harmanpreet Kaur has a word with Deepti Sharma, some thoughts being exchanged because these next couple of overs are going to be so important in the context of this game. If South Africa managed to get a couple of more good overs, they can take it through, but if India can squeeze South Africa in the next couple of overs, beginning from this one, from Deepti Sharma, she's got all the experience behind her, some readjustments being made in the field. One thing is get the field in place, the other is break the momentum. Remember, South Africa have got 2 good overs, so one way is to take your time and break the momentum that's been developed now by Marizan Cup and Tasman Brits. That's a good idea as well.
0: 112 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 15.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद और अब दीप्ति शर्मा बिल्कुल तैयार, राउंड स्टंप से ये गेंदबाजी कर रही है और उसे हल्का सा ग्लाइड किया स्क्वायर बाउंड्री की तरफ, डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 113 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 7 से 15 ओवर्स में भारत ने 57 रन बनाए थे 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर,

0: 16 डॉट्स खेली गई थी और इसी दौरान 7 से 15 ओवर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 86 रन बनाए हैं और 13 डॉट्स इनमें खेली गई हैं। आंकड़ों के हिसाब से अगली गेंद और बहुत स्पेस शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री को रोककर 2 रनों में तब्दील किया जेमिमा रॉड्रिक्स ने, लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 115 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 6 हाफ सेंचुरीज जो मैरिसन कप ने अभी तक बनाई है, 75 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, 60 रन श्रीलंका के खिलाफ, 57 रन भारत के खिलाफ, 56 रन पाकिस्तान के खिलाफ, आज भारत के खिलाफ अभी वो 53 रन पर खेल रही हैं और इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 52 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। स्कोर 115 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 15.3 ओवर्स में 27 गेंदों में 44 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए और भारत को जल्द जल्द कुछ विकेट्स ताकि मैच में वापसी करी जा सके।
1: 44/27 कम्स डाउन द विकेट वंस अगेन द टेस्टमैन ब्रिट्स ड्राइव्स इट इन अ कंट्रोल मैनर टू लॉन्ग ऑन 116 फॉर 2 फील्डेड देयर बाय जेमिमा रॉड्रिग्स and so this over so far no boundaries in the Deepti Sharma over. Will she end it well? 116 for 2, 43 of 26 needed from here on. Deepti Sharma so far conceding only singles in this 16th over. Round the wicket and once again ball very close to the tab lines have been driven, will be cut off by Shefali Verma. Wide of long off inside the boundary, they go through for a couple. So this is a good over, just the singles and the couple in the last ball. 41 of 25 needed now. Remember, the required run rate is now just under 10. So can she end it well, Deepti Sharma? Not concede the boundary. A single or two will do because that will then up that required run rate even further. 9.84 it is right now. From round the wicket to Madison Karp, who's drilled it. Pass extra cover to the boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
0: मैरिसन कार्प के बल्ले से यह निकला बेहतरीन शॉट कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। फुल टॉस गेंद थी, न्योता दिया गया था मैरिसन कार्प को शॉट खेलने के लिए और उस न्योते को उन्होंने स्वीकारा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। 122 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिसन कप की एक बेहतरीन पारी जो अभी तक उन्होंने खेली है 59 रनों की और साथ में उनका साथ दे रही है ब्रिक्स जिन्होंने अभी तक बनाए हैं 40 रन अपनी बल्लेबाजी में और ये 40 रन के लिए उन्होंने 35 गेंदों का इस्तेमाल किया है। मैरिसन कप जो अभी तक खेल रही है 59 के अपने व्यक्तिगत योग पर जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है 155.226 की औसत से ये बल्लेबाजी करेंगे। 122 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर पूरी तरह गिरफ्त बनाई हुई है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इस मैच पर। जो एक समय पे जो रन रेट था वो 10 से पार था, अब वो घटकर 9.25 रह गया है। अगले 24 जो गेंद है, जो 24 गेंदों में 37 रन की जरूरत है साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को अपने नाम करने के लिए और वहीं भारतीय खेमा चाहेगा कि इस पारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, इस जोड़ी को जल्द से जल्द अलग किया जाए ताकि प्रेशर वापस साउथ अफ्रीका पर डाला जाए।
1: शीशनी हैज गॉट वन ओवर, शी इज बॉल 3 for 15 विद 2 विकेट्स, सो सर्टेनली शी विल बॉल वन ओवर। 4 overs in the South African innings so far. Shefali has bowled 3 for 14, so she'll bowl one over. Those will be 2 overs for sure. Another 2 overs. Deepti Sharma has been a touch expensive today. 28 she's conceded of 3. And, but she's got all the experience and she bowls in at the death for India. So she'll probably get 1. And then there's 1 over to be bowled amongst Nandini Sharma, Arundhati Reddy and Prema Rawat. So Shefali Verma, as I expected, with the ball now to bowl what will be the 17th over, as 37 is needed of 24. Karp and Brits together 97 this partnership, close to 100. What a partnership this has been for South Africa after they lost Wolfart and Dirksen relatively early. 122 for 2 now. Indians have also bowled in a disciplined manner.

0: so far, just the three extras, and of which two have been leg by. So just the one wide. We saw South Africa bowling very disciplined manner in 20 overs. They conceded just the one wide. India also so far in 16 overs, just the one wide ball. First ball of Shefa Ali, one ball over. Lofted hard and high, taken! Taken there, right on the mid-wicket boundary. That's the wicket India wanted. Tasman Brith goes. A crucial wicket at a very important juncture.
1: 97 run ki ye bhagedari शेफाली वर्मा ने अपने हाथों से तोड़ी और एक अच्छा कैच कर लग बाउंड्री के ऊपर और ब्रिट्स आउट होकर वापस जाती हुई 40 रन का उनका योगदान रहा इस 97 रन की जो भागीदारी थी। हालांकि स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से वो एक लंबा शॉट खेलना चाह रही थी लेकिन नाकामयाब रही और एक अच्छा कैच पकड़ा गया बाउंड्री के ऊपर श्री चरनी द्वारा और तस्मीन ब्रिट्स 40 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर वापस जाती हुई 39 रनों के लिए उन्होंने 36 गेंदें खेली और वापस श्री चरनी के हाथों कैच हुई। शिफाली वर्मा ने ये एक अहम विकेट दिलवाया जिससे भारतीय टीम अब वापसी करने की कोशिश जरूर करेगी। 122 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर साउथ अफ्रीका 16.1 ओवर की समाप्ति के बाद शिफाली वर्मा अपने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक अहम भागीदारी को तोड़ने में कामयाब हुई और श्री चन्नी ने बगैर किसी गलती से उस कैच को लपका और अब नए बल्लेबाज नादीन डी क्लार्क क्रीज पर जिनके नाम पर 61 मैचेस हैं शेफाली वर्मा की अगली गेंद को खेलते हुए। अच्छी गेंद, एकदम यॉर्कर और एक अहम समय पर उनका बल्ला नीचे आया और गेंद बल्ले से लगकर शॉट थर्ड मैन के फील्डर के पास गई बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान के।
0: Right to the block wall, Shefali Verma, she started very well into Nadine de Klerk. Once again, a good ball. She can only turn it round the corner. Nadine de Klerk in such situations can be extremely dangerous, but she's not been given the opportunity of going after the bowling. She just failed two deliveries, but both those have been bowled beautifully by Shefali Verma. The first one right in the block hold, the other one also almost close out there, not allowing Nadine de Klerk to get right under it. 16.3 overs, 123 for 3, 36 now needed of 21. The required run rate is 10.3 now, gone above 10 and over. Shefali Verma short in length, that's stalked over the bowler's head. That'll go one bounce to the side screen for 4. The umpire having a look at that, she probably wants to see whether she's got the distance on that. Is it 6 or 4? So we'll wait for the final decision of 6 runs.
2: ये लगा आभा का छक्का
1: और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 129 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर मार्जन कप एक बेहतरीन पारी खेलती हुई अगली बॉल और उसे उठाकर मारने की कोशिश और ये कैच छूट गया उनके हाथ से। हालांकि कोशिश जरूर करी गई थी लेकिन एक आसान सा कैच निकलता हुआ हाथ से आज फील्डिंग में वो जान वो मुस्तैदी नहीं दिखाई देगी। ये एक सीधा कैच था, रेगुलेशन कैच, नाकामयाब रहे फील्डर और अगली गेंद उसे हल्का सा पुश भर किया कवर्स की तरफ, कोई स्कोर नहीं। मार्जन कैप 66 पर दूसरा जीवनदान उन्हें मिलता हुआ और ये कितना कीमती साबित होगा, कितना कीमती साबित होगा इस मैच के कंटेस्ट को देखते हुए। क्या साउथ अफ्रीका इस छूटे हुए कैच की बदौलत इस मैच को जीतेगी और क्या भारत वापसी करने की कोशिश करेगा। ये कैच आराम से उनके हाथ में आया था लेकिन छटक कर बाहर जाता हुआ।
0: Marzan Kapp dropped on 25 and 65 on both occasions by Radha Yadav, who's one of the better fielders in the Indian squad. So a bit of an irony there. But the first one, I would say, was a very good effort by Radha Yadav. The second one certainly should have been taken. Shree Chandni now, this time to Kapp, and Kapp has drilled it down to long after Shefali Verma for a run. This is going to be a very crucial over because Shree Chandni has bowled so well prior to this, just 15 runs, you know, 3 overs and 2 wickets. So this will be a crucial over. 28 needed of 17. If they get

समाप्ति के बाद 161 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर मार्जन कप ने बनाए 81 रन और बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और ये दो अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए।

0: और इसके साथ एक बेहद रोमांचक मुकाबले का हुआ है अंत। भारत को साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से मात दी है और सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी राह खुली रखी है। मैं हूं मुदिता, मेरे साथ है मेरे को होस्ट मुनीश जौली और एक्सपर्ट्स पैनल में है रविंदर सिंह, वैशाली माथुर और उत्तरा गणेशन। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। मुनीश,
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा और क्रिकेट इसी को कहते हैं, उलट पलट इधर उधर, और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ है वैशाली, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आई नो यू आर अपसेट कि इंडिया हार गई, बट क्रिकेट यही है, दिलचस्प था मैच
2: बिल्कुल। लेकिन फील्डिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुई है, बिल्कुल भी अच्छी फील्डिंग नहीं हुई है। जो कैचेस ड्रॉप हुए वो कैचेस अगर हम ले लेते तो ये मैच हमारे नाम जरूर हो सकता था। लेकिन वही कहते हैं ना, डिफरेंस सबसे ज्यादा मेन जो होता है वो फील्डिंग करता है। साउथ अफ्रीका की अगर हम फील्डिंग की बात करें तो वो लाख गुना बेटर थी एज कम्पेयर टू आवर फील्डिंग।
1: आपको लगता है कि उत्तराखंड, यू नो दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री वंस अगेन, वी थॉट दैट इट्स गोना बी एन इजी मील फॉर द इंडियन प्लेयर्स वंस दे गॉट द फर्स्ट 2 विकेट्स, बट देन द वे साउथ अफ्रीका केम बैक, इट्स दैट रिदम दैट दे आर इन, यू नो।
3: Exactly, and like we spoke, उनका इस टूर्नामेंट में अभी तक पहले दो मैच में the middle order was not doing really well, but like I said, India should take someone like a Cap or a Nadine de Klerk at their own risk to take them lightly, and Marizan Cap today proved why she is considered not just dangerous but also one of the most respected players over the years. The way she handled the innings, the way she managed to keep the runs coming despite the fact that dusre end pe wickets gir rahe the, and it didn't look like Cap was bothered with what was happening. Chahe unke baki players out ho rahe the, chahe Indian team ko success mil rahi thi, catches drop ho rahe the ya catches liye ja rahe the, Marizan Cap was playing her own game and she was in a zone. Jaisa sports mein aksar kaha jata hai ki आप जोन में होते हो अपने, और उस वक्त फिर आपको वहां से हिलाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, एंड इट लुक लाइक Marizan Cap वॉज इन हर ओन जोन, शी वॉज प्लेइंग हर ओन गेम एंड शी वॉज कंप्लीटली अनबॉदर्ड बाय वॉट एवर वॉज हैपनिंग अराउंड हर, एंड वी सॉ द डिफरेंस दैट इट मेड टू द फाइनल स्कोर लाइन।
0: यस, वी हैव सीन द डिफरेंस। रविंदर, Marizan Cap का अनुभव तो आज काम आया ही, लेकिन तस्मिन ब्रिज की साउथ अफ्रीकन टीम में वापसी वो भी एक बड़ा निर्णायक डिसीजन साबित हुआ है आज के मैच का।
4: बिल्कुल, देखिए ये तो कितने क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का हो गया। पहले सब लॉरा डैक्सन और क्लर्क की बारे बारे कर रहे थे जिन्होंने पहले रन किए, लेकिन ये दोनों तो इन दोनों पर किसी का ध्यान ही नहीं था और इन दोनों ने पूरे मैच को पलट के दिखा दिया। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि इंडियन टीम खुद जिम्मेदार है। पहले तो 160 रन ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस तरह 2 विकेट्स लिए इन्होंने पावर प्ले में, मैच में वापस आ गए। 10 ओवर में 100 रन चाहिए थे इनको, लेकिन सही कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग कोई प्रेशर में आ रहे हैं या मैच हमारे हाथ में आ रहा है। हमारे हाथ से बल्कि मैच हर ओवर में निकलता ही जा रहा था, और 6-7 ओवर तक तो वो लोग 10-10 रन के आराम से रन रेट उन्होंने मेंटेन कर रखी थी। और जिस प्रोफेशनल तरीके से कैप ने जो बैटिंग करी है, और खासकर जो कैचेस, जो 2-3 कैचेस छोड़े हैं, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है जब राधा यादव जब इंजर्ड थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर था जो बता रहे हैं, वो उसके बाद उसको फील्डिंग करने भेजा जा रहा है, जो कैच नहीं पकड़ पा रही जब इतनी मोटी उन्होंने बैंडेज लगा रखी है। तो और 4 फील्डर्स थे वो क्या कर रहे थे, कोचिज में 3 फील्डर्स क्या कर रहे थे, कोचिज उनको भेजना चाहिए था, जो अनफिट प्लेयर है जो फील्ड नहीं कर सकता कैसे कैच पकड़ेगा उसको, बहुत ही निराशाजनक ये हार लगी।
1: सबके मन में सवाल है कि कौन है प्लेयर ऑफ द मैच, आइए जानते
5: हैं। इंडियन इंटरनेशनल वेद कृष्णमूर्ति 2 for 27 इन 4 ओवर्स एंड एन आउटस्टैंडिंग 81 नॉट आउट और 45 डिलीवरीज, 7 fours एंड 4 mighty sixes। कंग्रेचुलेशंस Marizan, व्हाट आर योर इमीडिएट इमोशंस?
6: ओह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जीसस क्राइस्ट, दैट वाज़न्ट मी, it was

0: tough game. Playing India is always extremely tough, and yeah, I'm very proud of the team for coming back this game the way we did.
1: I have no doubt Laura's going to talk about the team. I know you don't like the limelight, but I'm going to have to put the spotlight on you. You came in with the team in early trouble, a very challenging power play. What was your approach as you came in?
0: Oh, I was just praying, to be honest. I seem to do a little bit better when I'm in earlier. I struggled those first 10, 15 balls, and eventually got my timing, and then just put my head down, and I felt like that partnership with Taz set it up beautifully for us.
1: Yeah, I was going to talk about that partnership, because you had to do some hard work, didn't you? Hit the ball hard, run those ones, turn ones into twos. At one stage, did you think, what am I doing and how am I getting across the line? Because it was tough out there.
0: Yeah, look, we said it's a tough place to bat, actually, because you can't let it get away from you too far, but you can also not lose more wickets. So we just said, if we don't let it go past 10 runs and over, we'll definitely, we've got the big hitters back, and that can clear the boundary. And yeah, we just put our heads down, and as soon as we look to be a bit more positive, it works for us.
1: Let's go to the bowling effort. India came out guns blazing. How tough was it to absorb the pressure in those opening overs?
0: Yeah, we know they always do, especially this wicket. It was a little bit flat with the ball. You're always nervous when you come up against an Indian team. I mean, they've got some wonderful players, but I feel like the way we brought it back, that probably saved us today.
1: Must-win game today, and it's a hard pressure environment. It almost felt like a home game for India. How did you keep your calm out there?
0: Again, just by praying, but I seem to like the Indian fans. It feels like they're shouting my name, so don't mind the crowd too much.
1: Congratulations, our player of the match today, Marizan Kapp.
0: Thank you.
2: मारिज़ान काप वहां पे बनी है प्लेयर ऑफ द मैच, और क्यों नहीं, 81 बनाए 45 बॉलों में और 7 चौके और साथ ही साथ 4 छक्के भी उन्होंने लगाए, तो 52 रन की जो उन्होंने क्या बन उनकी पारी में से 52 रन जो थे वो बड़े शॉट्स के साथ थे. शी केप्ट ऑन सेइंग वैशाली थैंक्स टू जीसस क्राइस्ट. स्पिरिचुअल लग रही है थोड़ा सा, ज्यादातर क्रिकेटर्स होते हैं स्पिरिचुअल.
3: वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का गेम खेलते हैं एंड आपकी फैमिली कैसा बैकग्राउंड है. एंड उसके साथ मैं ये और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका का आप बैटिंग लाइनअप तो देखा ही है हमने, उसके साथ उनकी जितनी बॉल्स उन्होंने खेली है उससे ज़्यादा उनके स्कोर्स है, आप ये देखिए. और हम वही अगर हम इंडिया टीम की बात करें, एक शेफाली वर्मा को छोड़ के जितनी बॉल्स उन्होंने खेली उससे उसी के अराउंड में उनके रन्स हैं. तो ये एक डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो यही डिफरेंस है.
4: जी बिल्कुल, यही डिफरेंस है. उतरा लॉरा और डर्क सिंह के आउट होने के बाद ताजमन ब्रेड्स और कैप ने जिस तरह संभाला पारी को, भारतीय मिडिल ऑर्डर वो नहीं कर पाया. क्या वही सबसे बड़ा फर्क था आज दोनों टीम्स के बीच में?
5: मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका वाज स्मार्टर. They played a much smarter game out there. दोनों इनिंग्स में जब वो बॉलिंग कर रहे थे तब भी उनको बहुत क्लियरली पता था कि किस एरियाज को टारगेट करना है, किस प्लेयर्स को टारगेट करना है और क्या गेम खेलनी है. हमने टॉस के टाइम पे भी सुना, बहुत क्लियर थे कि ताजमन ब्रिट्स क्यों टीम में वापस आई हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया की स्ट्रेंथ इनकी स्पिन बॉलिंग है एंड उनको ऐसा एक सीनियर प्लेयर चाहिए था जो स्पिन अच्छा खेल सके. तो उनको बहुत क्लियरली वो पूरा होमवर्क करके आए थे, किन प्लेयर्स को टारगेट करना है. उन्हें यह पता था कि अगर इंडियन टीम में अगर हम स्मृति को छोड़ दें तो ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा क्रैम्प करेंगे रन्स के लिए तो वो फ्रस्ट्रेट होके बड़ा शॉट खेलने जाएंगे. वो नहीं, पेशेंस लेवल नहीं है उतना कि आप बैठें, बॉलिंग को देखें, फील्डिंग को देखें, टाइम ले. T20 हालांकि बहुत छोटा फॉर्मेट है लेकिन टाइम इसमें भी होता है अपने आप को सेटल करने का. लेकिन उन्हें यह पता था कि अगर आप उनको नहीं देंगे, डॉट बॉल्स देंगे तो वो जाएंगे बड़े शॉट के लिए, जो हुआ. और हमने देखा कि वो नहीं खेल पाए उस तरह से. जब वो बैटिंग करने आए तो उनको बहुत क्लियर था, एक तो ताजमन ब्रिट्स को उन्होंने इंक्लूड किया, वो हमने डिफरेंस देखा, उन्होंने उनकी और कैप की जो पार्टनरशिप थी. उसके बाद हर हर एक ओवर में जैसा कि कैप ने बोला कि बहुत

0: क्लियर थे कि हमको 10 से ऊपर नहीं जाने देना है रिक्वायर्ड रन रेट किसी भी हाल में। अगर आपके एक ओवर में रन नहीं आते हैं तो आप अगले में एक दो चौके मार के उसको बराबर कर दो, बट 10 से ऊपर हम नहीं जाने देंगे टारगेट। तो चाहे वो पहला ओवर हो या दूसरा हो या दसवां ओवर हो, उनकी स्ट्रेटेजी पूरे 40 ओवर के लिए बहुत क्लियर थी, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडियन टीम लैक कर गई बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से हो, चाहे वो किस तरह की बॉल किस प्लेयर को करानी है उस पे हो। तो मुझे लगता है वही डिफरेंस था कि आपकी प्लानिंग, होमवर्क और स्मार्ट प्ले कितना ज्यादा है, और वो साउथ अफ्रीका का हमसे बहुत बेटर था।
1: राइट देन, आप सुन रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच। मेरा नाम है मुनीश जौली, मेरे साथ मुदिता है, और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, रविंद्र सिंह हैं, वैशाली माथुर हैं, उथरा गणेशन हैं। रविंद्र सिंह जी, मुझे ना कुछ साल पीछे जाने का मन कर रहा है, पन्ने पलट रहा हूँ कुछ। 1983 इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल इसी ग्राउंड पे हुआ था 22 जून को, आज 21 जून है। चेज करके भारत ने वो मैच जीता था। बहुत सारी बातें आज भी हम कर सकते हैं, टॉस जीत के आपने चेज क्यों नहीं किया, जब एक ट्रेडिशन है ओल्ड ट्राफर्ड में। बहुत सारी बातें और हम जानना भी चाहेंगे, श्रियंका पाटिल नहीं है, क्या वो एक वजह थी, राधा आई उनका इंजर्ड था हाथ। अब जब हम बात करते हैं प्रेमा रावत की, वो ज्यादा ओवर क्यों नहीं डाल पाई, लेकिन आपको क्या लगा जब 159 टारगेट दिया गया और हमने पावर प्ले में 2 विकेटें उड़ा दी, तब आप क्या सोच रहे थे और अब क्या हुआ?
2: देखिए, हारने के बाद बहुत कारण बन जाते हैं। अब अगर वो यही टीम इंडिया जीत रही होती तो सब कुछ अच्छा हो चुका होता। श्री चन्नी ने अच्छे 2 विकेट निकाल दिए, वो तीन प्लेयर थे वो कंसिस्टेंट चल नहीं रहे थे, उन तीनों को आपने आउट भी कर लिया, लेकिन ये 2 प्लेयर निकल के आ गए। देखिए, स्टार्टिंग से अब शुरू करेंगे तो पहली तो टॉस के बाद सबको लगा ही था कि शायद चेज करना चाहिए था, क्योंकि इस ग्राउंड में चेज हमेशा अच्छा होता है। चलिए, आपने बैटिंग करी, 160 रन बनाए, लेकिन फिर आप वापस आ गए गेम में। 5 ओवर के बाद आप गेम में वापस आ गए। मुझे जो लगता है टर्निंग पॉइंट इसका सिर्फ राधा यादव के जो कैचेस थे, जो वो अंदर फील्डिंग करने गई और उसको भेजने का, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी जो मैनेजमेंट है जिसने राधा को भेजा अंदर, जबकि उनके हाथ में बैंडेज था, कैच वो कैसे पकड़ पाएंगे मुझे लगता नहीं, ग्रिप कर पाएंगे। उसके बदले अगर कोई और फील्डर होता तो मुझे लगता है डिफरेंट मैच होता। मैच इंडिया ने अपने हाथ में कर भी लिया था, जो भी जैसे भी, जब बैट्समैन के कुछ भी 160 रन में मैच हार सकता था, लेकिन सिर्फ फील्डिंग की और कैचेस की वजह से ये मैच निकल गया।
1: और हम अपने श्रोताओं को बहुत जल्दी से बताना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका के लिए ये T20 क्रिकेट में उनकी बेस्ट चेज थी और एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। और खास तौर से जब हम T20 के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो T20 के इतिहास में ये तीसरी सबसे सफल चेज थी 159 रनों की।
3: जी बिल्कुल, और ये पहली बार था T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे। वैशाली, अभी हम बात कर रहे थे पावर प्ले के में जो चरणी ने जो ब्रेक थ्रू दिलाया, हमें 6 ओवर में 2 विकेट थे हमारे पास, गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के, 25 पर था स्कोर, लेकिन बाद में भारतीय टीम उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाई। कहाँ गलती हुई बाकी बोलर्स से?
4: श्री चन्नी ने काफी बेटर बॉलिंग करी और बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, लेकिन उसके बाद जब प्रेमा आई थी, वहां पर प्रेमा ने भी एक कैच उठवाया था कैप का, एंड वहां पर नंदिनी शर्मा ने एक कैच ड्रॉप करी थी जो इजीली हो सकती है। इस अगर आप इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं तो ये कैचेस आप ग्रैब करना बहुत जरूरी है। अगर ये कैचेस नहीं होंगी तो आप विन कैसे करोगे मैचेस के लिए? एंड उसके बाद जैसा सर ने बोला कि राधा यादव की कैचेस 2 ड्रॉप हुई, उन्होंने जो ड्रॉप करी है कैचेस, अगर उन्होंने 1 ड्रॉप कर दी तो उनको सामने नहीं लगाना चाहिए था, उनको कहीं और यूज करके वहां उनकी जगह पे किसी और फील्डर को यूज करना चाहिए।
1: मैं आपसे बहुत जल्दी से जानना चाहूंगा, इससे पहले कि कप्तान के जो हम व्यूज हम सुने, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि चोट लगी एक प्लेयर को, फ्रैक्चर्ड हाथ, और फिर आपने एक बहुत टफ एक प्लेस दे दी उनको कि आप यहां फील्डिंग कीजिए?
4: ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते।
1: चलिए, अब समझ आ रहा है कि हरमनप्रीत कौर तैयार हैं अपने व्यूज शेयर करने के लिए।
5: Pretty much all the way through. Well, I think we got a couple of chances in between, but unfortunately we didn't able to take those chances. But I think still we have 2 matches to go, and this is the time to stay positive and think about those matches.
6: At the halfway stage, should you back yourselves, especially with the spinners that you have?
5: Yeah, definitely. I think Shree Chani and Shefali bowled really well. They were creating chances, but unfortunately other bowler didn't support them.
6: It's hard to pinpoint 1 or 2 moments, but I guess that old cliche comes into play in a situation like this that catches when you matches.
7: Yeah, definitely. I think we always talk about, you know, we have to take opportunities at this level. But unfortunately, we were not lucky enough today. But I think still we have another two games. And now this is the time to think about those games.
6: Someone who's had so much experience, how do you try and pick your side up now for the next match?
7: The next match, I think still we have two, three more days. And we'll sit and rethink what we have to do. And accordingly, we'll pick the 11th.
6: And just a word on the opposition and the way Marizanne Kapp came out there in that second innings. I mean, she looked fiercely determined.
7: Yeah, she was brilliant today. She took the game.

0: मैचेस, 3 जीत 6 पॉइंट्स के साथ। मेरा नाम है मनीष जॉली, मुदिता मेरे साथ हैं मौजूद। मुदिता, थोड़ा सा अपसेट तो हम भी हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा मुकाबला हमने देखा।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मुकाबला देखा है, तो बने रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी है। और अगर आपके पास भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2342108 और 2342108 5। इनके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूलें। वैशाली, आज जो है श्रेयंका पाटिल की कमी क्या भारतीय टीम को खली आज?
2: जी बिल्कुल, मैं थोड़ी बहुत तो खली होगी, क्योंकि उसके अलावा हमें लगता है कि जो हमारे श्रेयंका पाटिल, अगर आप इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आपके पास एक बैकअप पॉइंट स्ट्रॉन्ग उतना ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में आपके पास उनका बैकअप नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहना भी गलत है कि उनकी कमी खल गई। ऐसा हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा था, जिसमें प्रतिकल रावल भी ऐसे ही उनको इंजरी हुई थी एंड उनकी जगह पे शेफाली वर्मा आई थी एंड वहाँ पे वो जो बैकअप था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसी तरीके का बैकअप ढूंढना चाहिए था, लेकिन वो बैकअप ढूंढा है। प्रेमा ने बॉलिंग बहुत बुरी नहीं करी है, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है और उसके साथ उन्होंने कैचेस भी, बैटर को चांसेस देने का बहुत मौका दिया है कि वो उनको कैचेस मिले, लेकिन वो ग्रैब इंडिया टीम के फील्डर्स ने नहीं किया है। ये सबसे एक निराशाजनक चीज़ हमने जो देखी है, ये गलत है तरीके से ये देखा गया है कि यहाँ पर फील्डिंग ज़्यादा मैटर करती है हमने। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, जो हमारी दीप्ति शर्मा का इतना 15 ईयर्स का वो एक्सपीरियंस ले एज अ प्लेयर उनके पास है, तो उन्होंने उस तरह की वो बॉल डाली नहीं आज, जैसे उन्होंने फर्स्ट मैच में डाला था, जो 5 विकेट अपने नाम की थी, उस तरह का बॉलिंग आज दिखा नहीं दीप्ति शर्मा की तरफ से।
0: आई थिंक उस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन आपने बैकअप की बात की ना, मेरे पास 2 बैकअप हैं। एक तो ये कि जो 50 ओवर का फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका से भारत ग्रुप गेम्स में हारा था, फिर फाइनल जीता था, पहला बैकअप। दूसरा हमारे कॉलर्स है, दूसरे बैकअप उनके पास चलते हैं। हेलो, कौन है हमारे साथ? गुड इवनिंग, जी वो लोग सुन रहे हैं आपको, पूछिए। बैकअप थे, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज गॉट एन आइडिया। रविंदर जी, आप आंसर करना चाहेंगे? सबसे पहले कह रहे हैं स्मृति अगर आउट हो जाए पहले तो पूरी टीम आउट हो जाएगी क्या?
3: देखिए, बैकअप आपके पास कुछ भी नहीं है, 15 की टीम आपकी पास गई है, उसके बाद जो बाहर बैठे हैं आप देखिए कौन कौन है, क्रांति गौड़ बाहर बैठी हुई है, राधा यारा बाहर बैठी हुई है और रेनको सिंह भी बाहर बैठे, तीनों फास्ट मीडियम पेसर्स हैं। आपके पास बैट्समैन की कोई भी एक तरह का, अगर एक भी बैट्समैन नहीं ऑफ फ्लॉप होता तो आपको बाहर से लाना पड़ता है, यही हाल उसका हुआ। तीनों आपका कोई बैकअप नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं है। वर्ल्ड कप में भी बताया उन्होंने, जब भी हमारे पास 15 में से बाहर के प्लेयर को लेके हमें लेके आना पड़ता है, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि अगर एक भी बैट्समैन फेल होता है उसके बाद दूसरा बैट्समैन कौन आएगा। आप लेके चलते हैं कि ये हमारे ये हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यही खेलेंगे, चाहे वो कुछ भी परफॉर्म करे। तो ये तो राम भरोसा चल रहा है आपका। और अगर आपको यही इसी चक्कर में राधा यादव जो इंजर्ड है फिर भी आप उसको फील्डिंग कराने के लिए भेज दीजिए, बड़ा हैरानी की बात लगी
0: मुझे। मुझे तो लग रहा है कि राधा यादव का नंबर लेके ना मुझे पाजी को देना चाहिए। और पाजी आपके नहीं, मेरे ख्याल से सभी के मन में ये सवाल है। एंड दी कॉलर ऑफ कोर्स उतरा आई जस्ट आस्क्ड यू नो द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, दे सेड दैट यू नो यू कंपेयरिंग विद साउथ अफ्रीका, बट वी कंसीडर आवरसेल्व्स एज वन ऑफ द मोस्ट प्रो साइड्स इन द वर्ल्ड नाउ, वेदर इट्स वुमेन और मेन क्रिकेट बोथ। You think that was one of the major flaws, somebody who's injured her finger and you get her in

0: place or at the most crucial places?
1: I think the key word is we consider ourselves to be pro. There's a thin line between considering yourself something and actually being something. And consider karna bahut aasan hota hai. होना आपको ग्राउंड पे ही दिखाना पड़ता है, वो बाहर से बात करके नहीं होता है. ऑन पेपर स्मृति हर मैच में सेंचुरी मार सकती है, ऑन पेपर हरमनप्रीत हर मैच जीत सकती है, बट आपको वो चीज वहां पे करनी पड़ती है. और जैसा सर ने कहा, आई कंप्लीटली एग्री. एक 15 या 16 का जब स्क्वाड अनाउंस होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है कि अगर आपके जो प्लेइंग पहले 11 हैं उनमें से आपको चेंज करना पड़े किसी भी वजह से, चाहे वो कंडीशंस की वजह से हो या इंजरी की वजह से हो या ओपोजिशन के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन देखना हो, तो जो बाकी के 4 या 5 हैं रिजर्व में आपके, उनमें से आप उनमें से आप खिला सके. अगर आपको हर इंजरी पे एक बाहर बैठा हुआ प्लेयर या किसी को फ्लाई इन कराना पड़े या हेलीकॉप्टर इन कराना पड़े, तो जो आपकी साथ में रिजर्व जा रही है वो किस लिए जा रही है? आई एम श्योर वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए आप 6 लोग एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रहे हैं टीम में.
0: बट यू नो व्हाट आई एम सॉरी, बट यहाँ मुदिता ने एक सवाल पूछना है. मुदिता, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि यू नो ये तो सब हल्की बातें हो रही है, टफ बात मैं आपसे जानना चाहूंगा. आपको नहीं लगता कि राधा यादव के लिए, उसके करियर के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा कि आप एक फ्रैक्चर्ड फिंगर लेके खेल रहे हो और कोई ऐसा शॉट आ जाए आप उसको और इंजर कर दो अपनी फिंगर को, स्पेशली जब आपने श्रियंका पाटिल को खो दिया, तो वो और घातक हो जाएगा भारतीय टीम?
2: बिल्कुल. और राधा यादव जैसी फील्डर, शी इज एन एक्सलेंट फील्डर, हमने कई मैचेस में उनका प्रदर्शन देखा है, कई बार वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आई हैं फील्ड पर और बहुत शानदार फील्डिंग उन्होंने करके दिखाई है. पर हाँ, फ्रैक्चर्ड फिंगर के साथ हम किसी खिलाड़ी को अगर ग्राउंड पर खड़ा कर रहे हैं और उससे उम्मीद रख रहे हैं कि वो कैचेस ले लेगा या बॉल्स रोक लेगा, तो ये शायद उस खिलाड़ी के साथ भी अन्याय है. अगले खिलाड़ी पे हम आना चाहेंगे वैशाली. शेफाली वर्मा, आज पहला ओवर उनसे कराया गया है और अब काफी तौर पर यह साफ हो गया है कि शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है. जो एक छठे बॉल की कमी खलती थी उन्होंने वो गैप भी भर दिया है. एंड सिंस इट हैज गिवन इंडिया एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन एंड हेंस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन टीम सिलेक्शन ऑल्सो.
3: या ऑफ कोर्स, लेकिन शेफाली वर्मा की अगर आप बॉलिंग की बात करो ना, तो उसमें आपको मैं बताऊं, 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने 11 डॉट बॉल दिए हैं जिसमें प्लेड हुई हैं वो सिर्फ. एंड उसके साथ जो मेन हमारा बॉलर है दीप्ति शर्मा, उनकी 5 ही बॉलें डॉट हुई हैं. मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना डिफरेंस है. आप एज अ पार्ट टाइम बॉल डाल रहे हैं और मेन आप ओपनर बैठे हैं और आप मेन एज अ ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं टीम में, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बॉलिंग एक्शन एंड बॉलिंग डॉट्स में भी. तो वो चीज़ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेन बॉलर इतना कम डॉट बॉल करा के और वो आप मैच जिताने की तरफ लेके जा सकते हैं.
0: इसी बात में मैं थोड़ा सा और ऐड करवाना चाहूंगा बहुत जल्दी से, और उसके बाद दीप्ति शर्मा की जो फील्ड आप देखते हैं ऑन साइड में, आपने 3 प्लेयर्स लिए, आप ब्लॉक कर रहे हो ऑन साइड बाउंड्री रविंद्र पाजी, उसके बाद बॉल आप लेग पर ही डाल रहे हो और सेट बैट्समैन को, एक अच्छी स्ट्रेटजी है.
4: देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि जैसे नंदिनी बॉल कर रही थी, दो एक डीप मिड विकेट और डीप स्कल लेग की बॉल कर रहे हो, तो आपके पास दोनों प्रोटेक्शन ऑन साइड में है, तो आपको मजबूरन मिड विकेट मिडिल और लेग में बॉल करना पड़ेगा. जो कि वही हुआ, बुलौरा में उनको छक्का भी मारा. एक स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए इनको कि प्रॉपर तरीके से आप लेग साइड के 2 लेके आप डिफेंस, आप पहले ओवर से डिफेंसिव हो चुके हो, आपको पहला काम है विकेट्स लेना, विकेट्स लेके आप अटैक कर सकते हो. वही हुआ, शेषचंदी ने आके 2 विकेट लिए तभी आप मैच में वापस आए. लेकिन जिस तरह से आप डिफेंसिव बॉलिंग शुरू करोगे तो उसमें तो आप पहले ओवर से मैच उनको देखे उनको लूज खेल रहे थे, उनको बिल्कुल प्रेशर ही नहीं था. अगर वो चरनी के 2 विकेट्स नहीं होते तो आप तो मैच 17 ओवर में हार चुके होते जिस अगर ये बैटिंग कर रहे होते.
2: उत्तरा पावर प्ले बॉलिंग में इश्यूज हैं, ये साफ दिख रहा है हमको. अगले 2 मैचेस जो हैं, पहला बांग्लादेश से 25 तारीख को और उसके बाद 28 जून को जो कहना चाहिए कि हमारे लिए नॉकआउट मैच साबित हो सकता है, वो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. क्या इतने इश्यूज लेकर के हम उन मैचेस से जीतने की उम्मीद कर पाएंगे?
1: कि इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है बल्कि बांग्लादेश देश के साथ है. और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बांग्लादेश हल्की टीम है या हम उनके साथ जीत सकते हैं या इजी रहेगा, बट साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले शायद थोड़ा सा प्रेशर इंडिया पे कम रहेगा. इसलिए भी क्योंकि उनको पता है कि वो जो एक बहुत ही थिन

0: मार्जिन होता है जो नेट रन रेट का आता है, जिस पे फाइनली चीजें अटक सकती हैं, वो अभी भी उनके फेवर में ही चल रहा है इंडिया के, डिस्पाइट द लॉस। और अगर बांग्लादेश के साथ हम अच्छा खेल जाते हैं और वो जीत जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से पहले एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडियन टीम को। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश से बेटर और कोई ओपोनेंट हो नहीं सकता था, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए। एक दो दिन है अभी इंडिया के पास रिकवर करने के लिए, रीग्रुप करने के लिए, अपनी गलतियां देखने के लिए। जैसा हरमनप्रीत ने बताया कि आप बैठ के देखेंगे कि कौन सा बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकता है, पर प्रेशर बिल्कुल रहेगा, खत्म बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज अगर ये मैच इंडिया जीत जाती तो आपको उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑलमोस्ट क्लियर कट टॉप टू में बनने हुए थे। इस मैच के बाद अब आपको बहुत सारे परम्यूटेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपना गेम नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि साउथ अफ्रीका बाकी दो मैच कैसे खेलती है। और साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं, एक तो बांग्लादेशी है, दूसरा उनका मैच जहां हमारा ऑस्ट्रेलिया है जो वर्चुअल नॉकआउट हो सकता है, उनके लिए वो मैच नेदरलैंड्स का है जिसमें वो अपना रन रेट इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस हैं, हमें अब सिर्फ अपनी दो जीत नहीं देखनी है बल्कि दूसरे की हार की भी उम्मीद करनी पड़ेगी। और ये किसी भी टीम के लिए सबसे खराब सिचुएशन होती है, क्योंकि चीजें अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। इस मैच तक पूरी तरह से इनका अपना फ्यूचर जो है वो इंडिया के कंट्रोल में था, अब आप थोड़ा उस पे से हाथ छोड़ चुके हो।
1: और वहीं पे बता दें कि 25 तारीख को साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स के साथ खेलेगी और उसके बाद आखिरी मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका का भी। लेकिन चलते चलते बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, खास तौर से उन श्रोताओं का भी जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। तो रविंद्र सिंह जी आपका, वैशाली जी आपका, और उत्तरा गणेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके एनालिसिस का। एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ वंडरफुल गेम उदिता, इजंट इट?
2: जी बिल्कुल।
1: आप कुछ अगले गेम की प्रेडिक्शन करना चाहेंगे?
2: हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने कल जिस तरह से पाकिस्तान को हराया उससे उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, कहीं वो हमारे लिए नेट रन रेट में बाधा ना बन जाए, इसका बहुत ज्यादा ध्यान शायद भारतीय टीम को रखना चाहिए।
1: जी हाँ, और हम सब यहाँ से अब विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि 25 तारीख को भी भारत का जो मुकाबला होगा उसमें हमारे तमाम श्रोता हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। हम सब की तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: प्लेयर ऑफ द मैच,
4: अभी आप आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड।
6: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे।

तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिकगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।